آخر. كل نفس بما كسبت رهينة.

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك يا

0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नासिया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड आर्ट कॉर्नर. दोस्तों, इस शो के जरिए हम आर्टिस्ट के आर्टिस्टिक जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं. आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आर्टिस्ट वफीका सुल्तान अल ईसा की. ये कतर की एक ऐसी मशहूर आर्टिस्ट है जो पेंटिंग और प्लास्टिक आर्ट में स्पेशलाइज करती है. आपकी पैदाइश बहरीन की है, लेकिन आप पूरी तरह से इस मुल्क यानी कतर को अपना चुकी हैं. आप कतर के फाइन आर्ट्स की दुनिया में एक ऐसा पायनियर हैं, जो कतर फाइन आर्ट्स एसोसिएशन की फाउंडर मेंबर्स में से भी एक हैं. आप उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, जो आर्ट्स की दुनिया में जज्बात का इजहार करना चाहते हैं. वफीका ने अपनी तालीम की शुरुआत कतर गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले स्कॉलरशिप के जरिए की थी, और फिर आप इजिप्ट का सफर तय करते हुए हेलवन यूनिवर्सिटी पहुंची, जिसे पहले कायरो यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था. वेल, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 1974 में अप्लाइड आर्ट्स में बीए की डिग्री हासिल की. अलबत्ता आपने 1972 से ही लोकल आर्ट एग्जीबिशंस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था. अल ईसा ने 1976 में यानी अपनी डिग्री लेने के एकदम ही बाद मोरक्को में हुई अरब आर्टिस्ट फेडरेशन की दूसरी एग्जीबिशन में हिस्सा लिया. यहाँ इन्हें इंटरनेशनल आर्टिस्ट के तौर पर पहचान मिली. फिर क्या था, फिर आया साल 1978. 1978 में पेरिस और लंदन में कतरी आर्ट एग्जीबिशन में भी आपने अपने काम को प्रेजेंट किया. फिर 1980 में आपने कतरी फाइन आर्ट सोसाइटी ज्वाइन की और कई एग्जीबिशंस का हिस्सा बनी. दोस्तों, आपके आर्ट का असर कतरी फोकलोर और मुल्क की नेचुरल हिस्ट्री पर भी है. आपका अंदाज भी इस्लामिक आर्ट से इंस्पायर्ड है, जो इनके कैलीग्राफिक वर्क में साफ देखा जा सकता है. आपकी पेंटिंग्स अक्सर कतरी फोक सॉन्ग्स और प्रोवर्ब्स के नाम पर ही होते हैं, और आपके काम सिंबॉलिक थीम्स को भी दिखाते हैं. जी हाँ, वफीका के साथ देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को अपने अंदर वक्त के साथ शामिल किया. जी हाँ, वक्त के साथ इनके शौक और इनके हार्ड वर्क ने इन्हें उन चैलेंजेस से आगे बढ़ने की ताकत दी जो सोसाइटी में कंजर्वेटिवनेस की वजह से पैदा हुए. आपने इन चैलेंजेस का बखूबी सामना करते हुए अपने काम से खुद को पहचानवाया. आपके काम की कतर के अमीर की तरफ से रखी गई इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी खूब तारीफ हुई. जी हाँ, 2011 में आपके आर्ट वर्क को दोहा के मताव अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में डिस्प्ले किया गया था, और आज आपका काम म्यूजियम में परमानेंटली डिस्प्ले पर है. जी हाँ, 2014 में आपको अरब वेमेंस अवार्ड में बेस्ट कतरी फीमेल आर्टिस्ट का अवार्ड मिला. 2020 में इन्होंने आर्ट वर्क का हिस्सा लिव फॉरवर्ड आर्ट एंड कल्चर इन दोहा फ्रॉम 1960 टू 2020 एग्जीबिशन में रखा गया. जिया मार्च 2022 में आपके कुछ आर्ट वर्क को फायर स्टेशन के AIR6 प्रोग्राम में फीचर किया गया. अल ईसा ने सिर्फ कतरी आर्ट की दुनिया को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि आपने अपने काम के जरिए कतर के कल्चर को भी रिप्रेजेंट किया है. आपकी मेहनत और जज्बे ने आपको यूथ के लिए एक मिसाल बना दिया. यस, शी इज अ ट्रू टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ पैशन एंड इनोवेशन. दोस्तों, कतर के दिल में जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का मेल होता है, वहीं इस मुल्क में एक ऐसी पायनियर हैं जिनका नाम है अल ईसा. रियाल ईसा ने आर्ट की दुनिया को पूरी तरह से अपनाने से पहले कतर टेलीविजन पर प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर अपनी क्रिएटिविटी को दिखाया, जहां उन्होंने कहानियों को विजुअल स्पेक्टिकल्स में तब्दील किया. आपने अपने इस एक्सपीरियंस के थ्रू कल्चर और एस्थेटिक समझ को भी गहरा किया. आपकी क्रिएटिविटी का मोल्ड और ग्राफ काफी हाई है. आपने प्राइवेट कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू किया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और डिजाइन को आर्टिस्टिक विजन के साथ ब्लेंड किया. जया वफीका देखा जाए तो महज एक आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि आप अपने आप में एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है, जो हर लम्हे यूथ को सपोर्ट मोटिवेट करने का काम बखूबी कर रही है. दोस्तों आज का सफर हमारा इतना ही। अब नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दें, अगले सफर का आगाज जल्द करेंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखें और सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: वेक अप हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 दिल से देसी
2: सामने कलम एक दिलचस्प और गहरा अरबी कहावत है حطها في رقبة عالم واظهر منها سالم यानी अगर किसी काम की शरी हैसियत पर शक हो तो उसे किसी आलिम की जिम्मेदारी पर छोड़ दो और तुम बरी जिम्मा हो जाओ ये कहावत तब कही जाती है जब कोई शख्स किसी मशकूक या गैर वाज़े अमल पर तरद्दुद में हो और फिर किसी आलिम या मुफ्ती की राय लेकर अपने जमीर को मुतमईन कर लेता है यानी अगर आलिम ने कहा है तो मैं जिम्मेदार नहीं जिम्मेदारी उसकी है ये जुमला कभी संजीदगी से भी बोला जाता है और कभी तंजन या तंजिया के तौर पर भी खासतौर पर जब लोग कमजोर दलाइल या मशकूक फतावा की बुनियाद पर जब वो अपने क्वेश्चनेबल आमाल को जवाज देने लगते हैं हमारे माशरे में इस तरह के लोग कहते हैं कि मुफ्ती ने फतवा दे दिया अब हमारी जिम्मेदारी नहीं या पंडित जी कह गए हैं मुझे तो आलिम ने कहा था सभी ने कहावत हमें यह सबक देती है कि आलिम की रहनुमाई जरूरी तो है मगर हमें भी परखना चाहिए अपने अकल नीयत और तकवा के साथ कि काम सही है या नहीं वरना हर कोई यही कहकर बरी जिम्मा हो जाएगा हुथा फी रकबत आलिम वज़हर मिन्हा सालिम यानी इस मौजू किसी आलिम के कंधे पर छोड़ दो और खुद उससे बरी जिम्मा हो जाओ याद रहे कि हर एक अपने कंधे का खुद जिम्मेदार है वला तज़िरु वाज़िरतुन वज़्रा उख़रा हर एक अपनी बोझ क़यामत के दिन अपने कंधे पर उठाएगा तो इसी हिसाब से हमें तैयारी भी लेनी है
1: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादात या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामिन किराम, आज की सुन्नत है रिश्तेदारियों को जोड़ कर रखना। अल्लाह ताला ने इंसान को अकेला पैदा नहीं किया, उसे वालिदैन दिए, बहन भाई दिए, चचा फूफी मामू खाला और दीगर रिश्तेदार दिए। इस्लाम ने रिश्तेदारियों को बरकरार रखने को इबादत करार दिया है और उनको तोड़ने को संगीन गुनाह शुमार किया है। सिला रहमी, जियारत, सदका, अच्छे बर्ताव, बीमार की मिजाज पुरसी, भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वगैरह से होती है, जबकि रिश्ते नाते को काटना कबीरा गुनाह है। सिला रहमी आम उर्फ के मुताबिक की जाएगी, उसकी नौईयत जगह वक्त और अशखास के बदलने के साथ साथ बदलती रहती है। जुबैर इब्न मुतअम रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। समीन इकराम, इसका मतलब यह है कि कतरहमी एक ऐसा

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आंखें बड़ी नेमत है। आज हम बात करेंगे आंखों की सेहत के बारे में। आंखें हमारी दुनिया की रोशनी हैं और उनकी हिफाजत करना हर उम्र के लिए बेहद जरूरी है। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या आप या हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर के सामने वक्त गुजारने के बाद अपने आंखों की वर्जिश करते हैं या नहीं। मगर सबसे पहले ये कि आंखों के लिए कौन सी ऐसी गिजाएं हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, जो बेहतरीन है, जैसे कि उसमें कैरेट्स हैं, पालक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसमें विटामिन ए शामिल होता है और जो कि हमारी आंखों के लिए बेहद ज़रूरी है। ओमेगा 3, उसमें हम मछली इस्तेमाल करेंगे और अंडे, वो अगर आप लेते हैं तो आप ओमेगा 3 ले रहे होते हैं जो कि आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह नट्स हैं या सीड्स हैं, वो आप लीजिए, उसमें विटामिन ई है जो आंखों के लिए एक बेहतरीन गिज़ा है। मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी के सामने ज़्यादा वक्त आप ना गुजारिए, मुनासिब रोशनी में अपना काम कीजिए। कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आप दूर देखिए। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट जो कि हर रोज़ 5 से 6 घंटे कंप्यूटर इस्तेमाल किया करता था, आंखों की एक्सरसाइज नहीं की तो उस स्टूडेंट की आंखें बहुत थक गईं, फिर धुंधलापन महसूस होना शुरू हो गया। मगर जब उसने वक्फे से और अपनी गजाइत का ख्याल रखा, यानी अपने खाने पीने का ख्याल रखा, आंखों की एक्सरसाइज की, तो फिर उसकी जो बिनाई है वो बेहतर होती चली गई। हमें करना ये है, कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद हर 20 मिनट पर आप थोड़ा सा वक्फा लीजिए। सब्जियां और फल जो हैं वो ज़्यादा कर दीजिए। आंखों को पानी और आराम दीजिए। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना करें या कोई भी डिवाइसेस जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। और अगर आपकी जो नज़र है, आई साइट है, वो ख़राब है तो फौरन आप जो माहिर डॉक्टर हैं उनसे रुजू कीजिए और आप उन्हें दिखाइए कि क्या मसला है, क्योंकि आंखें अगर आपकी महफूज हैं तो जिंदगी रोशन है। तो अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।

पता ही नहीं है कि यानी वो तो सोच रहा है कि भाई मुझे तो इस वे में जाना है, वो तो खाली है, अब कोई अचानक रिवर्स करके उधर अचानक आ जाए तो हादसा पेश आ सकता है।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी। Your health matters.
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शिकायत की जो जिंदगी में तकरीबन हर शख्स को कभी ना कभी होती है, और वो है जिस्म में दर्द। सर दर्द, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का या दूसरे जॉइंट्स का दर्द। दर्द की बहुत सी इकसाम है और उनकी वजूहात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। कभी दर्द ज़्यादा काम करने, एक्सरसाइज करने, गलत जो पोस्चर है जिस तरह बैठते हैं, या फिर थकन के बाद होता है और आराम के साथ वो बेहतर होता चला जाता है। लेकिन कभी दर्द हमारे जिस्म की तरफ से एक वार्निंग भी हो सकता है, इसलिए हर दर्द से घबराना नहीं चाहिए। हर दर्द को मुसलसल इग्नोर करना भी मुनासिब नहीं है। मसलन अगर आप कई घंटे कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, गर्दन झुकाव कर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, या एक ही पोजीशन में काम करते रहते हैं, तो गर्दन, कंधों और कमर में मसल स्ट्रेन हो सकता है। ऐसी सूरत में पोस्चर बेहतर करना, ब्रेक्स लेना, जेंटल स्ट्रेचिंग करना और मुनासिब फिजिकल एक्टिविटी मददगार साबित हो सकती है। एक बहुत ही आम मसला है कि हम काम में कितने मसरूफ होते हैं हमें मालूम ही नहीं होता, और कई घंटे हम अपनी पोजीशन से नहीं हिलते। इसलिए एक आसान सा उसूल अपना लीजिए, मुसलसल बैठने के बजाय दरमियान में आप उठिए, चंद कदम लें और पोजीशन तब्दील करें और जिस्म को हरकत दें। लेकिन अगर दर्द बार बार हो रहा है या ज्यादा होता जा रहा है, तो सिर्फ पेन किलर लेकर उसे दबाते रहना मुनासिब नहीं है, और उन्हें जरूरत से ज्यादा लेना या तवील अरसे तक खुद से इस्तेमाल करने पे मेडिसिन या पेन किलर्स जो हैं वो नुकसानदेह साबित होते हैं। खास तौर पर अगर किसी शख्स को स्टमक, लीवर, किडनी या कोई दूसरे हार्ट जो इश्यूज हों, या वो फिर दूसरी कोई और मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों, तो जो दर्द के लिए लेने वाली मेडिसिन हैं, वो लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। अब सवाल ये है कि किन हालात में दर्द को जो वार्निंग साइन हमें समझना है। अगर दर्द अचानक बहुत शदीद हो, चोट के बाद शदीद दर्द हो, जिस्म के किसी हिस्से में अचानक कमजोरी या फिर सुन होना शुरू हो जाए, सांस लेने में दुश्वारी हो, या सीने में दर्द के साथ कोई नई शिकायत हो, शदीद जो है उसके साथ कुछ अलामतें हों, या दर्द के साथ जो है बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो, और ये तमाम चीज़ें जो हैं इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी है और फौरन कंसल्ट करना है। ये भी याद रखिए कि दर्द की जगह हमेशा असल मसला नहीं बताती, इसलिए मुसलसल जो अनएक्सप्लेन पेन है उसको प्रॉपर मेडिकल असेसमेंट की ज़रूरत होती है। अब जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में दर्द से बचने के लिए चंद आसान सी बातें जो हैं, वो है कि अपनी सिटिंग पोस्चर हमें बेहतर बनानी है, मोबाइल को मुसलसल नीचे देखने से बचना है, काम के दौरान आप ब्रेक लीजिए, और अपनी जिस्मानी जो ताकत है और फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा वजनी चीज़ें उठाते वक्त सही टेक्निक इस्तेमाल कीजिए, और अगर कोई एक्सरसाइज आपके दर्द में इजाफा कर रही है तो उसे ज़बरदस्ती जारी ना रखिए। सामिन अपने जिस्म की आवाज़ को सुनिए, और अगर जो जिस्म कह रहा है कि आराम चाहिए तो फिर उसे आराम दीजिए। अगर दर्द मुसलसल है तो वजह ज़रूर मालूम कीजिए, और अगर दर्द अचानक शदीद या गैर मामूली अलामत के साथ हो तो फिर आप फौरन कंसल्ट कीजिए। तो आज का मैसेज कि दर्द को ना डर का सबब बनाइए और ना इसे हमेशा मामूली समझकर नज़रअंदाज कीजिए। अपने जिस्म को देखिए, लाइफस्टाइल बेहतर बनाइए, और ज़रूरत पड़ने पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा कीजिए। अपना ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए। योर हेल्थ मैटर्स। योर हेल्थ मैटर्स।
2: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। क्या हाल है जी आपके बढ़िया? कुछ तो काम आया होगा, कभी ना कभी किसी एपिसोड में तो लगा होगा यार कबीर क्या काम की चीज बताई है। ऐसी आज भी मैं काम की चीजें बताऊंगा आपको, और कुछ ऐसी खामखा चीज भी होती है जिनमें जिनसे आपका टाइम पास हो सकता है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके नाम आप नोट कर सकते हैं एंड दे आर रियली रियली रियली हेल्पफुल। एक तो मेरे साथ अभी तक जुड़ी हुई है, ये वेबसाइट बड़ी खास है। तो शुरू करते हैं वेबसाइट नंबर वन, जिसका नाम है 50languages.com 50languages.com जो इसका नाम है वैसे इसका काम है, बस 50 आपको लिखना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है 50। तो आप दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस इससे सीख सकते हैं और इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। अब ऐसा तो नहीं है आपको कभी कोई एंशियंट भाषा सीखनी तो बात दूसरी है, मगर जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं जो इंसान सीखना चाहता है, अरबिक है, उसमें स्पेनिश है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, कोई भी भाषा आपको सीखनी है, ग्रामर के साथ साथ उसके सेंटेंस फॉर्मेशंस, एक एक चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी और काफी इजी टू यूज है। इनफैक्ट मैं स्पेनिश के कुछ वर्ड्स यहाँ से सीख रहा हूँ, हालांकि मेरे आसपास कोई बोलने वाला नहीं है स्पेनिश, एमी खामखा खुद से बात करता रहता हूँ, बट काम की चीज बहुत है। तो अगर आप लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेप, क्योंकि कोई ये पैसा नहीं मांगता आपसे, फ्री फंड में बहुत सारी चीजें दे देती है वेबसाइट। सो ट्राई दिस वन आउट 50languages.com 50 फिर languages.com, ठीक है बड़े आगे बढ़े। ओके अगली वेबसाइट का नाम है doodlefonts.app यानी कि ऐप doodlefonts.com। अब ये जो है ये काम की भी हो सकती है और ये मजे के लिए भी हो सकती है, पर अब बता देता हूं आपको। चलो doodlefonts.app जो वेबसाइट है इस पे आप खुद के फॉन्ट्स बना सकते हैं। आई नो इट साउंड्स बिजार इन योर हेड राइट नाउ, ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन आप लिटरली बना सकते हैं। हालांकि आप वो क्या कहते हैं कैसे समझाऊं मैं, हाथ आपका पेंट ब्रश की तरह मूव करेगा तो बहुत बढ़िया है, और अगर आपकी राइटिंग जनरली मेरे जैसी है तो फिर तो ये वेबसाइट आपके लिए नहीं है। बट स्टिल आपकी राइटिंग खराब हो अच्छी हो जैसे भी हो, आप अपने तरीके से फॉन्ट्स डिजाइन कर सकते हैं। सोचा था कभी 20 साल पहले ऐसा कुछ आएगा दुनिया में? भाई मैंने फॉन्ट से रिलेटेड तो नहीं सोचा था। तो ये वेबसाइट बहुत कमाल की है। इफ यू वांट टू जस्ट एक्सपेरिमेंट विद फॉन्ट्स, यू नो समटाइम्स यू वांट टू शो पीपल के देखो ऐसा फॉन्ट दे गया आएगा कहीं, तो ये आपके काम आ सकती है। डूडल doodlefonts doodlefonts.app ट्राई दिस वन आउट। ओके बढ़ते हैं अगली ऐप की तरफ या वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है messenger.abito.co messenger messenger messenger.abito.co। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप लिटरली एक बहुत ही कोजी गेम खेल सकते हैं एंड इसकी ग्राफिक्स भी बढ़िया है यार। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी कोई ऐसी फ्री वेबसाइट बताता हूँ क्या उसकी ग्राफिक्स बढ़िया होंगे, देन आई जज इट एंड देन आई टेल यू। मैं सही बता रहा हूँ ये इतनी कमाल की चीज है, ये जो होने लगा है ना ये कोडिंग के थ्रू ये लोग बनाने लगे हैं ऐसे गेम्स जो आप सिंपली बस एक वेबसाइट के क्लिक पे जाके आप खेल सकते हैं, ये बहुत कमाल का है और आने वाले वक्त में आई एम प्रीटी श्योर इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोजी लिटिल गेम आराम से घूमने फिरने वाला तो ये बहुत बढ़िया है भाई। messenger.abito.co abito abito कुछ भी दिक्कत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बढ़ जाए आगे, अब न्यूज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो खबर दरअसल ऐसी है कि रिसेंटली आप देखेंगे कई सारी चीजें महंगी हो रही हैं और मैं इस बारे में बात करते रहता हूं सो दैट यू आर अवेयर ऑफ इट। अभी लैपटॉप से लेकर गैजेट्स होंगे, गेमिंग कंसोल्स हो गए, एवरीथिंग इज गोइंग टू शूट अप और ये चलता रहेगा कुछ वक्त तक। अभी रिसेंट टाइम्स में देखा होगा सोनी ने भी ये कहा है कि जो प्ले स्टेशन कंसोल है उनका उसमें वो फिजिकल डिस्क शामिल ही नहीं करेंगे बिकॉज वो एनवायरमेंटल वैसा कुछ नहीं है, खर्चा बचाने वाले सीन है क्योंकि दे नो ऑलरेडी बहुत महंगा बिक रहा है उनका, तो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। मगर एक और चीज इसमें आ गई है जो गेमर्स के लिए बुरी खबर हो सकती है। तो नाउ प्लेस्टेशन इज डूइंग समथिंग वेरी वियर्ड, उन्होंने कहा कि आप जो ऑनलाइन गेम खरीदेंगे आपने खेल लिया बहुत बढ़िया, पर अगर आपने कोई प्लेस्टेशन पे गेम खरीद लिया ठीक है और आपने इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रखा है अपने पुलिस स्टेशन का और आप कहीं घूमने फिरने चले गए। तो आप जब वापस आएंगे 30 दिन के बाद, ये मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, तो आपका गेम चला जाएगा, आपको लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं सोनी वालों से झगड़ लूंगा जाके, बट दिस इज जस्ट अ न्यूज। और तो इसका एक ही तरीका है, रेस्ट मोड में पुलिस स्टेशन को रखे। एंड फॉर नाउ दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ। ये थी टेक अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड।
0: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर, आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। Tune into FM 107, Dil Se Desi. Dil Se Desi.
4: Cricket ho.
5: And he's hooked that away. That's four runs.
4: Football ho. Goal! Ya koi aur bada sporting action. हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
6: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
4: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
6: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की,
7: स्पोर्ट्स की। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
8: Qatar's most heard radio station FM 107, FM 107, Dil Se Desi।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Scam alert. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर हर हफ्ते एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में हम बात करते हैं। और आज जिस स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं वो सिंगल्स के लिए है। क्या है ये स्कैम? ये स्कैम है मैरिज स्कैम। कैसे काम करता है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, मैरिज स्कैम एक ऐसा धोखा है जहां प्रिडेटरी स्कैमर्स स्पेशलाइज्ड मैट्रिमोनियल वेबसाइट और डेटिंग एप्लीकेशंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रॉड करने वाले लोग उन मासूम लोगों को टारगेट करते हैं जो सच में शादी या एक सीरियस लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की तलाश में होते हैं। इस मकसद के लिए वो अपनी हाईली डिटेल्ड और फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं ताकि लोग उन पर यकीन कर सकें। बात शुरू होते ही ये स्कैमर्स बहुत जल्दी गहरी मोहब्बत का इजहार करते हैं और पूरी गुफ्तगू को, पूरी बात को शादी की तरफ हल्के हल्के ले जाते हैं, जिससे विक्टिम के दिल में एक झूठा सुकून और भरोसा यानी कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो जाता है। जब विक्टिम का ट्रस्ट पूरी तरह जीत लिया जाता है तो स्कैमर अचानक झूठी और बहुत स्ट्रेसफुल इमरजेंसीज खड़ी कर देता है, जैसे कि कोई अचानक लीगल मसला हो गया है, बाहर के मुल्क में उनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया है, या उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, या उनका डेबिट कार्ड खो गया है, या फिर उनका डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, या किसी करीबी रिश्तेदार की अचानक तबीयत खराब होना। वो विक्टिम को इमोशनली ब्लैकमेल यानी कि गिल्ट ट्रिप करते हैं ताकि वो इन मसाइल को हल करने के लिए एक कोई रकम दे दे, या कोई एक थोड़े पैसे दे दे, या इमरजेंसी फंड्स दे दे। जैसे ही विक्टिम का बैंक अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाता है, स्कैमर्स हर जगह से ब्लॉक करके बिल्कुल गायब हो जाते हैं। कई बार ये आपको कोई ऐसा स्कैनर देते हैं या फिर बैंक का डिटेल देते हैं जहां पर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आपको ये कहते हैं कि हम कुछ दिन में पैसे वापस कर देंगे। पहला तरीका है कि ये पैसे लेने के बाद गायब हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये पैसे लेने के बाद आपसे बात करते हैं और ये बात थोड़ी और लंबी चलती है, ये कुछ पैसे आपको वापस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 100 रियाल लिया है इन्होंने तो उसमें से ये 20% या 20 रियाल आपको वापस भी करेंगे तो आपको यकीन हो जाता है कि हाँ, ये वापस करने वाला शख्स है। लेकिन बीच में एक बार फिर से इसी तरह की इमरजेंसीज बताई जाती हैं और दोबारा आपसे 100 रियाल लिया जाता है या 150 रियाल लिया जाता है और फिर वो गायब हो जाते हैं। ऐसे में आपका डबल नुकसान होता है और ये अपना डिटेल, अपना वो प्रोफाइल, अपना बैंक नंबर या फिर सारी जो डिटेल्स हैं वो बंद करके गायब हो जाते हैं, अपना फोन नंबर बंद करके गायब हो जाते हैं और आप इनको ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। क्या तरीके हैं इन मैरिज स्कैम से बचने का, इस पर अगर हम बात करें तो बातचीत को स्लो रखें और जल्दबाजी कभी ना करें। अगर कोई शख्स मिलते ही बहुत जल्दी शादी की बातें करता है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करता है, अचानक बहुत ज्यादा मोहब्बत का दावा करता है, तो होशियार हो जाएं, असली रिश्ते बनने में वक्त लगता है। उसके अलावा पैसे भेजने से बिल्कुल इनकार करें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम इमोशनली किसी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और जब इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हैं तो उनके रिलेटिव से, उनकी परेशानियों से भी कनेक्ट होने लगते हैं और ऐसे में उनकी मदद करते हैं, क्योंकि दिल तो आपका साफ है। लेकिन इस साफ दिल का फायदा स्कैमर्स उठाते हैं। आप उनकी परेशानी को अपना समझते हैं और कुछ पेमेंट कर देते हैं। सबसे बड़ा रूल यही है कि जिस शख्स से आप ऑनलाइन मिलते हैं और कभी फिजिकली मिले ही नहीं तो उसे किसी भी सूरत में पैसे या तोहफे ना भेजें, चाहे उनकी इमरजेंसी कितनी ही सच्ची क्यों ना हो। उसके अलावा बैकग्राउंड चेक हमेशा करें, वेरीफाई करें। उनकी दी गई फोटोज को रिवर्स इमेज सर्च के जरिए चेक करें कि कहीं वो किसी और की चोरी की हुई फोटोज तो नहीं है। इसके अलावा उनके कहे गए दावों को हमेशा फैमिली और दोस्तों के जरिए वेरीफाई करने की कोशिश करें। एक और तरीका है, जो तरीका है आपको सोशल मीडिया पे डीप एनालिसिस करने का। जिस शख्स का प्रोफाइल आप देख रहे हैं किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, उनको सोशल मीडिया पे सर्च करें, कितने लंबे वक्त से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। और अगर वो बहुत लंबे वक्त से एक्टिव हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कैमर नहीं होगा। वो कितना जेन्युइन है उससे बात करके पता चलेगा, उनके रिलेटिव के बारे में जानने को पता चलेगा। आप उनसे सामने से मुलाकात करें, उनके घर के बारे में समझें, उनको जानें, उसके अलावा उनके साथ बैठें उठें और उनके घर को भी देखें, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये बंदा स्कैमर है या नहीं है। इस तरीके के स्कैमर्स आजकल सोसाइटी में बहुत ज्यादा हैं। आपको होशियार रहने की जरूरत है और इन सॉल्यूशंस पर काम करने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते हैं FM 107 दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट, Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेनिस की दुनिया की एक ऐसी लेजेंडरी खिलाड़ी की जिन्होंने बहुत कम उम्र में दुनिया की नंबर वन रैंकिंग हासिल की और ग्रैंड स्लैम हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया, मोनिका सेलेस। मोनिका सेलेस का नाम वुमेन्स टेनिस के सबसे आउटस्टैंडिंग खिलाड़ियों में शुमार होता है। सन 1971 2 दिसंबर को नोवी साद, जो उस वक्त यूगोस्लाविया का हिस्सा था, वहां मोनिका सेलेस पैदा होती हैं और सेलेस ने बहुत ही छोटी उम्र में टेनिस शुरू कर दिया और उनकी एग्रेसिव बेसलाइन गेम ने जल्द ही दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। प्रोफेशनल टेनिस में अपना डेब्यू 1988 में किया और सिर्फ कुछ सालों में मोनिका सेलेस ने वर्ल्ड टेनिस की टॉप खिलाड़ियों में जगह बना ली। 1990 में इटालियन ओपन जीतकर उन्होंने अपना पहला मेजर WTA टाइटल हासिल किया। WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, जिसके तहत कई टूर के मैचेस होते हैं, जैसे कि मेंस टेनिस में ATP हम कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, वहीं WTA दे लुक आफ्टर द वुमेन्स प्रो टेनिस। तो इसी साल उन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता और वो ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीतने वाली सबसे कम उम्र चैंपियंस में शामिल हो गई। लेकिन सेलेस का असल गोल्डन पीरियड 1991 से 1992 के दरमियान आया। 1991 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन जीते। 1992 में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन के टाइटल्स डिफेंड किए, बाखूबी डिफेंड किए। और इस दौर में उनकी पावरफुल 200 ग्राउंड स्ट्रोक्स और यूनिक 200 स्टाइल ने ओपोनेंट्स के लिए बहुत मुश्किल पैदा की। अगर करियर की बात करूं तो कुल 9 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते हैं और इनमें 4 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 फ्रेंच ओपन और 2 US ओपन टाइटल शामिल हैं। विंबलडन में वो 1992 में रनर अप रही। उनकी सबसे अगर रिमार्केबल अचीवमेंट की अगर बात करूं तो वो आया था 1990 से 1992 तक, जहां पे उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव फ्रेंच ओपन टाइटल जीते। 1990 का फ्रेंच ओपन टाइटल उनके करियर का पहला ग्रैंड स्लैम था, जबकि 1992 में उन्होंने अपनी डोमिनेंस को मजीद मजबूत किया। मोनिका सेलेस मार्च 1991 में पहली बार WTA वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग पर पहुंची। वो उस वक्त सिर्फ 17 साल और 99 दिन की थी। उन्होंने टोटल 178 वीक्स वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग पर गुजारे। 1993 में उनके करियर को एक इंतहाई सदमा पहुंचा जब जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में एक टेनिस मैच के दौरान एक स्पेक्टेटर ने उन पर हमला किया और उन्हें पीठ में छुरा मारा। इस वाकये ने मोनिका सेलेस के करियर को गहरा मुतासिर किया और वो तकरीबन 2 साल कॉम्पिटिटिव टेनिस से दूर रही। लेकिन उन्होंने कमबैक किया 2 साल के बाद 1995 में, और कमबैक के बाद भी उन्होंने अपनी क्लास का मुजाहरा किया और 1996 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर अपना नवा और आखिरी ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल हासिल किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी सेलेस ने अपनी मुल्क की नुमाइंदगी की। उन्होंने 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी इंटरनेशनल टेनिस में हिस्सा लिया और फेड कप में अमेरिकन टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ओवरऑल प्रोफेशनल करियर में 53 WTA सिंगल्स टाइटल्स और उनकी करियर प्राइज मनी की बात करूं तो $14 million से ज्यादा रही। दोस्तों मोनिका सेलेस के नाम सिर्फ उनके ग्रैंड स्लैम टाइटल्स की वजह से याद नहीं किया जाता, बल्कि उनकी पावरफुल पर्सनालिटी, यूनिक प्लेइंग स्टाइल और मुश्किल हालात के बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी की वजह से भी वो स्पोर्ट्स हिस्ट्री का एक अहम नाम है। तो दोस्तों ये थी कहानी मोनिका सेलेस की, एक ऐसी चैंपियन जिन्होंने टीनेज

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। चावल दुनिया के बहुत से मुल्कों में खाए जाते हैं, लेकिन हर जगह उनका जायका और उनसे जुड़ी रिवायत अलग हो सकती है। कतर में चावल अक्सर एक साइड डिश नहीं, बल्कि मेहमान नवाजी, जश्न और घर की खुशियां समेटने वाला मरकजी खाना होता है। कतरी दस्तरखान पर चावल के साथ गोश्त, मछली, खुशबूदार मसाले और कहवे या शरबत की रिवायत मिलकर एक मुकम्मल तजुर्बा बनाते हैं। जब गरम देगची का ढक्कन उठता है तो जाफरान, इलायची, दारचीनी और खलीज के मशहूर खुश ब्लैक लाइम यानी लोमी की खुशबू हवा में फैल जाती है। इसी खुशबू को कतर के मशहूर चावल के खानों की पहचान समझा जाता है। सबसे नुमाया नाम मजबूस का है। इसे कतर का कौमी खाना भी कहा जाता है। इसमें चावल में गोश्त, मछली, मुर्गी या मुख्तलिफ मसालों के साथ इसको तैयार किया जाता है। अक्सर प्याज, लहसुन, टमाटर और गरम मसाले भी शामिल होते हैं। गोश्त को पहले आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है ताकि इसका जायका शोरबे में उतर आए। फिर इसी खुशबूदार शोरबे में चावल पकता है और हर दाना मुख्तलिफ जायकों को अपने अंदर समेट लेता है। मजबूस का असल हुसन सिर्फ उसके मसालों में नहीं, बल्कि इस बात में भी है कि ये आम तौर पर बांट कर खाया जाता है। बड़ी सी थाली या प्लेटर के दरमियान रखे चावल लोगों को एक दूसरे के साथ बैठने की दावत देते हैं। हर शख्स अपनी जगह से खाना खा लेता है, बातचीत करता है और खानों के साथ रिश्तों की गर्म जोशी महसूस करता है।

जब आप नियत साफ रखते हैं तो लीडरशिप खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, जहां हम पर्पस और ग्रोथ की बात करेंगे, यानी हम अपने अंदर की सलाहियतों को कैसे पहचानें या कैसे उन्हें निखारें। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं।

0: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: दोस्तों, कई लोग कहते हैं मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं। यकीन मानिए, हर शख्स के अंदर एक चमक होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ने उसे पहचान लिया होता है और कुछ लोगों ने अभी तलाश में ही उस सफर को जारी रखा हुआ होता है। चलिए कुछ डिस्कवरिंग स्किल्स और पैशन की अगर बात करें तो तीन चीजें लिखिए। पहली, कौन सा काम आपको वक्त का एहसास नहीं होने देता। दूसरी, लोग आपसे किस चीज पर मशवरा लेते हैं। तीसरी, किस काम के बाद आपको अंदर से सुकून मिलता है। अगर जवाब मुश्किल हो तो 30 दिन का स्किल स्प्रिंट कर लीजिए। हर दिन 20 मिनट एक चीज, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रॉम्प्ट्स या बेसिक डिजाइन टूल्स सीखना वगैरह, 30 दिन बाद आपको एक अंदाजा जरूर हो जाएगा। दोस्तों, सक्सेस को सिर्फ प्रमोशन से मत नापिए। सक्सेस है बेहतर आदत बनाना, बेहतर सेहत रखना, बेहतर रिश्ते, बेहतर डिसिप्लिन वगैरह वगैरह। कंपाउंड इफेक्ट सिंपल होता है, छोटे कदम मिलकर बड़ा फर्क लाते हैं। भाई, अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो प्रोमिसेस टू सेल्फ केप्ट, जो वादा खुद से करें उसे निभाइए चाहे छोटा ही हो। वहीं तीन एविडेंस पॉइंट्स लिखिए जहां आपने अच्छा परफॉर्म किया हो, उन पर फोकस रखें। सपोर्ट सर्किल की बातें करें तो तीन लोग जिनसे रवैया पॉजिटिव हो, फीडबैक साफ हो जाता है। सोशल मीडिया से कंपैरिजन का काउंटर कीजिए, कंपेयर बैकवर्ड, यानी कल के आप से आज के आप बेहतर हैं या नहीं। अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए दो लिस्ट बना लीजिए, या टू लिस्ट मेथड है, उस पे काम कर लीजिए। थिंग्स आई कैन कंट्रोल एंड थिंग्स आई कांट, एक पर एक्शन है और एक पर एक्सेप्टेंस। और वहीं ब्रीदिंग टूल 4-4-6 टेक्निक, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड एंड 6 सेकंड एक्सहेल, 3 दफा। दोस्तों, एक बात को याद रखिए, सेटबैक्स आर इक्वल्स टू फीडबैक। हर नुकसान से 3 सबक निकालना हैबिट बना दीजिए। भाई, सेल्फ ऑडिट कीजिए अपनी छुट्टी वाले दिन, एक हफ्ते में 1 घंटा, और इससे क्या होगा, गोल्स, एनर्जी ड्रेन्स, एनर्जी गेन्स, फिर शेड्यूल एडजस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, जब आप पर्पस और ग्रोथ को रोजाना की रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो लीडरशिप नेचुरली जिंदगी में जगह बनाती है, टाइटल हो या ना हो। लीडरशिप एक सीट नहीं, ये एक सर्विस है। जब आप लोगों को बेहतर बनने का मौका देते हैं, जब आप एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं जहां हर शख्स की इज्जत हो, तब आप लीडर हैं, चाहे आपके पास कोई फॉर्मल टाइटल हो या ना हो। याद रखें, टाइटल मिलने से पहले अगर आप लीडरशिप दिखा देते हैं तो टाइटल आपके पीछे आता है। अगर ना भी आए तो भी आप कायम रहते हैं, क्योंकि आपने आदत बना ली है असर डालने की, खिदमत करने की और बेहतरी की। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत कुछ कर सकते

इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
4: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियत खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए RJ A for Amita के साथ AI Unlocked पर। एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for Amita के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें।
2: आज ही राबता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
4: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
5: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
4: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
6: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन आज की दुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की, जो हमें जहालत और नादानी से बचने की तलकीन करती है। ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कही जब उनकी कौम ने गायें ज़बह करने के हुक्म के बारे में गैर जरूरी सवाल शुरू कर दिए और जिद में आ गए। उस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अन अकून मिनल जाहिलीन, के मैं जाहिलों में शुमार हो जाऊँ, यानी बेवकूफ़ी, जिद और नाफरमानी करने वालों की राह इख्तियार करूँ। इस दुआ में इस बात की तरफ इशारा है कि जहालत सिर्फ इल्म की कमी नहीं बल्कि हक वाज़ह होने के बावजूद हट धर्मी करना और अल्लाह के हकाम के सामने सरकशी करना भी जहालत है। तो यूं इस दुआ के कई अहम पहलुओं में एक तो यह है कि अल्लाह की पनाह सबसे बड़ी हिफाजत है। मजीद जहालत सिर्फ लाइल्मी नहीं बल्कि जिद, सरकशी और बिलावजह सवालात भी जहालत में शामिल हैं। इसी तरह इल्म के बावजूद दुआ ज़रूरी है, उसी तरह मुसलमान को जहालत से दूर रहना चाहिए। इस तरह ये दुआ हमें ये सबक देती है कि हमें हर हाल में अल्लाह से ये दुआ करते रहना चाहिए कि वह हमें जहालत, हट धर्मी और नाफरमानी से बचाए और इल्म, हिकमत और इताअत की राह पर कायम रखें। आइए हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन।
7: दोस्तों लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है। और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। विदारत दाखला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

पाकिस्तान के एक ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने अपनी तेज तरीन बॉलिंग और एग्रेसिव स्टाइल से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। वासिम अकरम की बात नहीं कर रहा हूँ, ना इमरान खान की बात कर रहा हूँ, ना सरफराज नवाज के बारे में बात करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट के साथ, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। तो आपने कुछ गेस किया, चलिए मैं ही बता देता हूँ, बात हो रही है सिकंदर वक्त के बारे में। सिकंदर वक्त का पूरा नाम सिकंदर वक्त जान है। वो 29 अगस्त 1957 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के उन बॉलर्स में होता है जो 1970s के आखिर और 1980s के दौर में नेशनल टीम का हिस्सा बने। सिकंदर वक्त राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर थे और उनकी बॉलिंग में पेस के साथ स्विंग भी देखने को मिलती थी। सिकंदर ने पाकिस्तान के लिए 26 टेस्ट मैचेस खेले और इन मैचेस में उन्होंने 66 विकेट हासिल किए। उनका टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 4 विकेट्स फॉर 32 रन रही। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 27 ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल्स मैचेस भी खेले और ओडीआई क्रिकेट में 22 विकेट्स अपने नाम किए। दोस्तों, उनका इंटरनेशनल करियर एक ऐसे वक्त में था जब पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स की एक ऐसी मजबूत ट्रेडिशन डेवलप हो रही थी। इमरान खान, सरफराज नवाज और बाद में वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे बॉलर्स ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग आइडेंटिटी को दुनिया भर में मशहूर किया। सिकंदर भी इसी जनरेशन का हिस्सा थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अहम मैचेस में बॉलिंग अटैक को सपोर्ट किया। अगर उनकी जर्नी के बारे में बात करूं तो शुरुआत होती है 1982 का इंग्लैंड टूर से। क्रिकेट में उनका डेब्यू तो पहले ही हो गया था। इनफैक्ट 1979 का जो इंडिया का दौरा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो उसमें सिकंदर वक्त वाज वन ऑफ द मेन बॉलर्स। उनका जर्नी का एक खास पहलू उनका 1982 का इंग्लैंड टूर था। पाकिस्तान की टीम उस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही

और सिकंदर बख्त ने भी बॉलिंग अटैक में अपना किरदार बाखूबी निभाया। उनकी एबिलिटी थी कि वो बल्लेबाज को पेस और मूवमेंट के जरिए दबाव में ला सकते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करो तो वहां पर भी सिकंदर बख्त ने अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। उनका डोमेस्टिक एक्सपीरियंस बाद में क्रिकेट एनालिसिस और कमेंट्री में भी काम आया। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सिकंदर बख्त ने क्रिकेट से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। वो टेलीविजन पर क्रिकेट एनालिस्ट और कमेंटेटर के तौर पर नजर आए और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अपनी राय देते रहे। यानी उनका एक्सपीरियंस खास तौर पर पाकिस्तान के तेज तरीन जो बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स और नेशनल टीम की परफॉर्मेंसेस पर उनका एक बड़ा अहम रोल रहा है टू डेवलप इट एज एन एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट कमेंटेटर। सिकंदर बख्त का करियर हमें दोस्तों ये बताता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं, हाँ, ही नेवर प्लेड दैट बिग इनफ लाइक वसीम अकरम और वकार यूनुस, बट अगर उनकी जो प्रोफिशिएंसी की बात करूँ, उनकी जो कैपेबिलिटी एबिलिटी एज अ फास्ट बॉलर, दैट वाज रियली आउटस्टैंडिंग। और इंडिया में तो काफ़ी वो सक्सेसफुल रहे 1979 सीरीज में। तो दोस्तों क्रिकेट में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं बल्कि एक खिलाड़ी का अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन भी अहम होता है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक ऐसे मुश्किल और कॉम्पिटिटिव दौर में फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली और नेशनल टीम को अपनी सर्विसेज दी, जहां से ये हम आसानी से कह सकते हैं कि ही वाज वन ऑफ द टॉप स्टार्स इन द पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप 1970s के आखिर और 1980s के कुछ इन द बिगिनिंग। तो दोस्तों ये थी कहानी सिकंदर बख्त की, पाकिस्तान के उन फास्ट मीडियम बॉलर्स में से एक जिन्होंने अपने दौर में नेशनल टीम की बॉलिंग को मजबूत बनाने में अपना हिस्सा डाला। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 presents Tech Update.
4: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए, मैं हर बार आपको वेबसाइट्स टूल्स के बारे में बताते रहता हूँ और इस वजह से मेरी भी जानकारी बढ़ती रहती है, नॉलेज में इजाफा होता रहता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप भी कुछ अगर ढूंढते हैं, कुछ इत्तफाकन आपके सामने आ जाता है तो क्यों ना आप मुझे बता दें, मैं भी इस मामले में मदद चाहूंगा। मेरे लिए भी फायदा है, आपके लिए फायदा है। बट एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद द अपडेट। सो तीन वेबसाइट्स मैं आपको आज देने वाला हूँ, तीनों बेहद बेहद बेहद काम की हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर वन ऑन द लिस्ट, इस वेबसाइट का नाम है poe.com, poe.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने मौजूद होंगे 400 AI टूल्स, 400, एंड कमाल की बात यह है कि इस पे बहुत सारे AI टूल्स ऐसे जिनके बारे में ना मुझे पता था और आई एम प्रीटी श्योर बाकी जनता को भी नहीं पता होगा, और वो वाले टूल्स ऐसे हैं जो बाकी बड़े बड़े AI टूल्स जो पैसे मांगते हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, और या तो सस्ते हैं या बिल्कुल फ्री हैं। ये आपके काम आएगी वेबसाइट, सच्ची बता रहा हूँ। अगर आप बैठे हैं और सोच रहे हैं कौन सा टूल किस AI पे जाऊं, इसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्या करूं, तो यहाँ पे आप जाइए। एवरी टूल हैज अ डिस्क्रिप्शन और हर टूल के बारे में आपको पता भी लगेगा, एंड यू कैन चूज आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। सो poe.com, इस पे जाइएगा, मामला हो जाएगा आसान। बढ़ते हैं आगे। अगली वेबसाइट का नाम है perchance.org, PER, पर chance, chance, perchance.org। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ये बड़ी कमाल की वेबसाइट है, ये आपको काफी कुछ देगी, जैसे कि आपको मदद करेगी इमेज क्रिएशन में, नंबर वन चीज, क्योंकि अनलिमिटेड इमेज क्रिएशन जब आपको मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कोई और वेबसाइट इतना अच्छे से दे पाएगी आपको। क्वालिटी 100% की जगह 98% अगर आपको चलती है, जो कि चलेगी आप ब्रिटिश हो, तो ये आपके लिए बेहद कमाल की वेबसाइट है और ये जनरेट भी थोड़ा जल्दी कर देती है। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, आई थिंक इट विल सूट अ लॉट ऑफ पीपल जिनका काम रहता है इमेज जनरेशन का, तो आपकी बहुत काम आ सकती है। perchance.org, जरूर जरूर जरूर जरूर ट्राई करें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगली जो वेबसाइट है इसका नाम, इसका तो नाम है, वो इसका काम है बेसिकली, नाम नोट कर लीजिएगा, promptcowboy.ai, prompt, promptt, बिना स्पेस ये, cowboy, cowboy.ai, promptcowboy.ai। यहाँ पे आप जाइएगा, ये क्या करेगा, आपको प्रॉम्प्ट लिखने में मदद करेगा। आधी दुनिया को ऐसा लगता है कि प्रॉम्प्ट लिखना तो बेहद आसान है, इसमें क्या है, मैं लिख दूंगा रिमूव माय बियर्ड, नहीं ऐसा नहीं होता ना, तो क्योंकि यू हैव टू राइट इन अ सर्टेन वे। आपका प्रॉम्प्ट जितना प्रिसाइज होगा, जितना स्पेसिफिकली आप किसी चीज को बताएंगे, उतना आपका फायदा है। कई मरतबा दिमाग में होता बहुत कुछ है पर वो उतर नहीं पाता प्रॉम्प्ट्स में, बट ये जो वेबसाइट है ये आपकी मदद करेगी। फॉर एग्जांपल, इसको आपने कहा कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूं मैं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे मैं प्रॉम्प्ट में डालूं, तो ये आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे ऐसे आएगा और ये लो जी प्रॉम्प्ट, तो आपको प्रॉम्प्ट भी बना के दे देगा, एन एडवांस्ड वर्जन देगा जो आपके बहुत काम आएगा। ब्यूटीफुली डन एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वेबसाइट। ओके, अब बढ़ते हैं जरा एक बहुत जरूरी खबर की तरफ। खबर जो है वो गेमिंग की दुनिया से है, अब रिलीज हुआ है जब से कंट्रोल रेजोनेंट, पब्लिक में हलचल मच चुकी है और इस गेम ने बहुत तो के सर घुमा दिए। एक्चुअली क्या, कुछ लोग कह रहे हैं अरे ये लोग तो क्या बना दिया इन्होंने, ऐसा सोचा भी नहीं था, कुछ लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, पर मैक्सिमम लोग तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि और भी बहुत सारे गेम्स हम डेवलप कर रहे हैं साथ साथ, जो इंडी गेम्स भी हैं उन डेवलपर्स को भी हम चांस देंगे, जो एक दो लोग मिलके बना रहे हैं, सिंगल हैंडेडली लोग तैयार कर रहे हैं ब्यूटीफुली डन, तो उनको भी चांस दिया जाएगा। गेमिंग इंडस्ट्री की एक और बड़ी खबर है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था प्लेस्टेशन की तरफ से, वैसी एक्सबॉक्स की तरफ से है। एक्सबॉक्स ने जब से हिडेओ कोजिमा को, मतलब गेमिंग इंडस्ट्री के क्रिस्टोफर नोलन को हायर किया है, हलचल मची हुई है। उनका एक गेम ओडी, जो प्राइमरीली वन ऑफ द बिगेस्ट हॉरर फ्लिक्स माना जा रहा है, गेम माना जा रहा है, आने वाला है, उसके साथ साथ

0: और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट में है, एक सरप्राइज जो लोग बता नहीं रहे, सरप्राइज करके टीज कर रहे हैं। लेट्स सी क्या ये सही टाइम है एक्सबॉक्स ले लेने का। खर्चा कराओगे यार। दीज वर दी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में। दिल से देसी
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
2: Scam alert. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम, नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं और आगाह करता हूं कि कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। वेल, आज जिस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये स्पोर्ट्स से मुताल्लिक है, यानी कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या फिर वो लोग जो स्पोर्ट्स में यू नो एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी खेल को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने फिटनेस को बेहतर करना चाहते हैं, और ये स्कैम है स्पोर्ट्स एडमिशन स्कैम। कैसे काम करता है ये स्कैम, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एडमिशन स्कैम एक ऐसी धोखेबाजी है जो स्टूडेंट्स, एथलीट्स और उनकी फैमिलीज के ख्वाबों का गलत फायदा उठाती है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स मशहूर यूनिवर्सिटीज में गारंटीड स्पोर्ट्स एडमिशन या एलीट एथलेटिक स्कॉलरशिप्स दिलवाने का झूठा वादा करते हैं। फ्रॉड करने वाले लोग खुद को बड़े टैलेंट स्काउट्स, करप्ट स्पोर्ट्स एजेंट या यूनिवर्सिटी के वेल कनेक्टेड एथलेटिक रिक्रूटर्स दिखाते हैं। वो बिल्कुल असली दिखने वाले नकली एथलेटिक डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी तैयार करते हैं ताकि लोगों को यकीन आ जाए। फिर वो विक्टिम से प्रोफाइल इवैल्यूएशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग या फास्ट ट्रैक्ड कंप्लायंस ट्रैकिंग के नाम पर बहुत बड़ी अपफ्रंट फीस मांगते हैं। जैसे ही फैमिली ये भारी रकम अदा करती है, ये फेक रिक्रूटर्स आपसे कांटेक्ट करने वाले जितने भी नंबर हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, नंबर गायब हो जाता है, आप इन्हें ट्रैक नहीं कर सकते, जिससे स्टूडेंट्स की एकेडमिक फ्यूचर और एथलेटिक ड्रीम्स पूरी तरह तबाह हो जाती हैं और फैमिली को बहुत बड़ा माली नुकसान भी होता है। एक जमाने में, मुझे पता नहीं कई लोगों को पता है या नहीं है, एक तरह का स्कैम चलता था जब असल में क्रिकेट के ट्रायल्स होते थे, किसी एक फेमस टूर्नामेंट के बारे में बात होती थी, उसको लेकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल्स होते थे, बाकायदा प्लेयर्स आते थे, वो रजिस्ट्रेशन फीस दिया करते थे, वहां पर सेलेक्टर्स बैठते थे, बैटिंग और बॉलिंग और फुटबॉल के जो ट्रायल्स हैं या फिर किसी भी तरह के जो ट्रायल्स हैं, अलग मुल्क के बारे में बात कर रहा हूँ, वहां पर ये ट्रायल्स होते थे और उसके बाद वो टूर्नामेंट कभी होता ही नहीं था, तो रजिस्ट्रेशन फीस लेकर वो भाग गए। उसके अलावा जो भी वहां पर आपको यू नो सुविधाएं दी गई हैं, जो प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट होती हैं उनके लिए फिर पैसे होते थे, पानी के लिए चार्ज किया जाता था आपको, है ना, मेडिकल के लिए चार्ज किया जाता था, तो इन सब चीजों के लिए वो आपको चार्ज करते थे और फिर उसके बाद टूर्नामेंट कभी होता ही नहीं था, सिलेक्शन कभी किसी प्लेयर का होता ही नहीं था। इस तरह के स्कैम्स भी होते रहे हैं और इस तरह के स्कैम से बचने के कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनको आपको गौर से सुनना चाहिए दोस्तों। इनके कुछ तीन आसान तरीके हैं जिससे आप इस स्पोर्ट्स के एडमिशन वाले स्कैम से बच सकते हैं। ये है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी चैनल से राब्ता करना। सबसे पहला, किसी भी स्कॉलरशिप या एडमिशन ऑफर को वेरीफाई करने के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एथलेटिक डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कॉल या ईमेल करें। किसी थर्ड पार्टी एजेंट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। उसके अलावा गारंटीड ऑफर से होशियार रहें। लेजिट स्पोर्ट्स एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स हमेशा एक सख्त और ऑफिशियल मेरिट प्रोसेस के जरिए मिलती है। अगर कोई शख्स पैसे के बदले गारंटीड सीट या स्कॉलरशिप का वादा करे तो समझ जाएं ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। उसके अलावा तीसरा तरीका है इस तरह के स्कैम से बचने का, वो है अपफ्रंट फीस देने से बचना। यूनिवर्सिटी के असली स्काउट्स या रिक्रूटर्स कभी भी एडमिशन प्रोसेस को तेज करने या फिर प्रोफाइल चेक करने के लिए अचानक चुपके से एडवांस कैश या फीस नहीं मांगते। कोई भी बड़ी पेमेंट करने से पहले हमेशा रूल्स को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ आपका हक है। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आपको इन तीन तरीकों का इस्तेमाल जरूर करना है और सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी शख्स को पेमेंट करने से पहले उसके बारे में जांच परख लें और ऑनलाइन पेमेंट से बचें, जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट से बचें। और अगर आप ऑफलाइन यानी कि सामने किसी शख्स से मिलकर पैसा देते हैं तो उससे रिसीट जरूर लें और जो रिसीट ऑफिशियल होती है उस रिसीट को एक्सेप्ट करें मोहर के साथ। उम्मीद है आपको ये स्कैम के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज, इसी के साथ मुझे यानी कि

वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नाजिया. और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारे पैसों को मैनेज करने का तरीका तेजी से बदल रही है. यानी आज का टॉपिक है मोबाइल वॉलेट्स. दोस्तों, एक वक्त था जब घर से निकलते वक्त सबसे पहले हम अपना वॉलेट चेक करते थे, कैश है कि नहीं, डेबिट कार्ड साथ है कि नहीं. लेकिन आजकल बहुत से लोगों के लिए उनका स्मार्टफोन ही वॉलेट बन चुका है. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मोबाइल वॉलेट होता क्या है. देखिए, मोबाइल वॉलेट एक डिजिटल एप्लीकेशन होती है जो आपको अपने स्मार्टफोन के जरिए पैसे भेजने, रिसीव करने, बिल्स पे करने, ऑनलाइन शॉपिंग करने और कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सहूलत देती है. सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये आपकी ट्रेडिशनल वॉलेट का डिजिटल वर्जन है. आजकल मोबाइल वॉलेट्स की पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि ये फास्ट है, कन्वीनियंट है और यूजर फ्रेंडली है. सोचिए, आप ग्रॉसरी स्टोर में हैं, रेस्टोरेंट में बिल पे करना है या किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करने हैं, कैश ढूंढना या एटीएम जाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ मोबाइल खोला और ट्रांजैक्शन कंप्लीट. यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट्स दुनिया भर में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं. मोबाइल वॉलेट्स का एक बड़ा फायदा है कन्वीनियंस. आप 24 आवर्स किसी भी वक्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना बैंक की लाइन और ना ही कैश कैरी करने का टेंशन. खास तौर पे इमरजेंसी सिचुएशंस में तो ये बहुत यूजफुल साबित होते हैं. दूसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है स्पीड. आज की इस बिजी लाइफस्टाइल में लोग फास्ट सॉल्यूशंस चाहते हैं. मोबाइल वॉलेट के जरिए पेमेंट सिर्फ चंद सेकंड्स में कंप्लीट हो सकते हैं. और तीसरा फायदा है रिकॉर्ड कीपिंग. अक्सर हम याद नहीं रख पाते कि पैसे खर्च कहाँ हुए. मोबाइल वॉलेट एप्स ट्रांजेक्शन हिस्ट्री सेव करती है जिसे आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं. ये बजटिंग और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में भी मदद करता है. लेकिन दोस्तों, जहाँ कन्वीनियंस होती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. मोबाइल वॉलेट्स यूज करते वक्त सिक्योरिटी बहुत जरूरी है. और सबसे पहले अपने फोन को पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन से सिक्योर रखिए. अगर फोन लॉक ना हो और किसी गलत शख्स के हाथ लग जाए तो फाइनेंशियल रिस्क पैदा हो सकता है. दूसरी बात, सिर्फ ऑफिशियल

वॉलेट एप्लीकेशंस ही यूज कीजिए। अननोन लिंक्स या फिर फेक एप्स डाउनलोड करने से बचिए। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर फेक एप्लीकेशंस के जरिए यूजर्स की इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। और तीसरी अहम बात, अपना ओटीपी, पिन और पासवर्ड कभी भी किसी भी सूरत में किसी के साथ शेयर ना करें। चाहे कोई खुद को बैंक रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना बताए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, मोबाइल वॉलेट सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं है। आजकल कई वॉलेट रिवॉर्ड्स, कैशबैक ऑफर, बिल रिमाइंडर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड और बजटिंग टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। इससे लोग अपनी डेली फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। स्मार्ट मनी का आज का हमारा जो पावरफुल टेक अवे है वो ये कि मोबाइल वॉलेट आपके पैसों को आपके मोबाइल तक ही लाता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। दोस्तों, आज का हमारा पावरफुल लेसन ये है कि मोबाइल वॉलेट आपके पैसों को आपके मोबाइल तक ही लाता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें और बाकी सारी अपडेट्स के लिए हमें सुनते रहे। फिलहाल मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इस सेगमेंट यानी स्मार्ट मनी से इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107। दिल से

लेकिन हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत सी मैरिजेस को डैमेज कर रहा है. जॉब खत्म हो जाना, डेट या कर्जे होना, या डिफरेंट तरह की स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और ये सारी चीजें ऑल टुगेदर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को नेगेटिव वे में ट्रिगर करती हैं. ये सब टेंशन क्रिएट करती हैं जो धीरे धीरे रिलेशनशिप को अफेक्ट करती हैं. एक और चीज यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूंगी जो डिवोर्स की बड़ी वजह बन रहा है, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. और शायद इसका लिंक आज की हमारी सोशल मीडिया की फेक लाइफ या फिर रियल लाइफ से जुड़ा है. रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है. सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप्स का एक बहुत ही फैंटेसी वर्जन क्रिएट कर दिया है. परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट हॉलीडेज, परफेक्ट लाइफ. रियलिटी में परफेक्शन जैसा कुछ नहीं है. जब एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से ज्यादा हो जाएं, तो डिसअपॉइंटमेंट पैदा होता ही होता है. वो एक और रीजन जो डिवोर्स की बड़ी वजह बन रहा है, वो है फैमिली का इंटरफेरेंस. कई मैरिजेस में इशू हस्बैंड और वाइफ के दरमियान कम और फैमिलीज के दरमियान ज्यादा होते हैं. हर रिलेशनशिप को हेल्दी बाउंड्रीज की जरूरत है. जब बाउंड्रीज वीक हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. एक और चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी और वो है इमोशनल नेग्लेक्ट. अब देखिए, कई लोग फिजिकली साथ होते हैं लेकिन इमोशनली दूर हो जाते हैं. एक वक्त आता है जब पार्टनर को महसूस होता है कि वो रिलेशनशिप में अकेला रह गया है, और इमोशनल लोनलीनेस दोस्तों बहुत पेनफुल होती है. एक और चीज जो रिश्तों को तबाह कर देती है, वो है अब्यूज और टॉक्सिक एनवायरमेंट. ये वो सिचुएशन है जहां कॉम्प्रोमाइज की एडवाइस देना ठीक नहीं होता. फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, कॉन्स्टेंट ह्यूमिलेशन, इन सिचुएशंस में सेफ्टी और डिग्निटी सबसे पहले. कभी कभी डिवोर्स एक चॉइस नहीं, आपकी और हमारी जरूरत बन जाता है. अब बात करेंगे रीजंस की, तो हमने बात कर ली, और अब बात करना चाहूंगी कि डिवोर्स का फैमिली पर क्या असर होता है. देखिए, हम सब चाहते हैं कि हम एक टॉक्सिक रिलेशन में ना रहें, उससे बाहर निकलें. जैसे मैंने कहा कि ये चॉइस नहीं, जरूरत भी बन जाता है. बहुत से लोग इस लेवल तक परेशान होते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं होती बट टू क्विट, यानी वहां से निकलना ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है, जो कि बुरा भी नहीं है, ठीक है. लेकिन इसका असर जो है वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ पर नहीं पड़ता. जब हस्बैंड और वाइफ अलग होते हैं तो सिर्फ दो लोग सेपरेट नहीं हो रहे होते हैं, पूरी फैमिली सिस्टम चेंज हो जाता है. घर का एनवायरमेंट है, रूटीन्स है, रिलेशनशिप्स है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, सब कुछ बदल जाता है. कई लोग तो कहते हैं कि हमारा डिवोर्स हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन जब बच्चे हो तो डिवोर्स सिर्फ दो लोगों का पर्सनल मैटर नहीं रहता, उसका इफेक्ट फैमिली के हर मेंबर पर पड़ता है. और इसका असर सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ता है. जब पेरेंट्स डिवोर्स का डिसीजन लेते हैं तो अडल्ट्स लॉजिकली सोच सकते हैं, लेकिन बच्चा लॉजिकली नहीं, इमोशनली सोचता है. उसको सिर्फ इतना समझ में आता है कि मेरा घर टूट गया, मम्मी और डैडी अब साथ नहीं रहते, मेरी दुनिया बदल गई, मैं शायद अकेला हूं. देखिए, बच्चों को समझाना, उन्हें समझा के चुप करा देना, ये एक सलूशन नहीं है. बच्चे जैसा महसूस करते हैं वैसा करते हैं, और वो देख कर करते हैं जो आप कर रहे हैं, जो उनके आसपास हो रहा है. बच्चा खुद को रिस्पॉन्सिबल समझे, ये हम चाहते हैं, लेकिन क्या हमारा बिहेवियर भी वैसा है? बहुत से बच्चे डिवोर्स के बाद ये सोचते हैं कि शायद ये डिवोर्स मेरी वजह से तो नहीं हुआ, मैं अच्छा बच्चा नहीं था. ये गिल्ट भी कई बार उनके अंदर बहुत ही गहरा और एक नेगेटिव असर छोड़ती है. बच्चे को स्टेबिलिटी की जरूरत होती है. जब घर का स्ट्रक्चर

उन्हें अपने फ्यूचर का डर लगने लगता है। मेरे साथ क्या होगा, मैं किसके साथ रहूंगा, मैं तो अब्बा को भी चाहता हूँ, मैं अम्मा को भी चाहता हूँ, क्या मम्मा मुझे छोड़ देगी, क्या डैडी मुझे प्यार करना छोड़ देंगे, क्या मैं दोनों से एक साथ कभी नहीं मिल पाऊंगा। और यही सवालात जो है वो बच्चों के जहन में घर कर जाते हैं। और कई बार जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो माँ बाप के डिवोर्स सेपरेशन के बाद एकदम अलग तरीके से रिएक्ट और बिहेव करते हैं। बच्चे स्कूल में फोकस करना लूज कर देते हैं, ग्रेड्स गिर जाते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि उनका दिमाग इमोशनल स्ट्रेस से भरा हुआ है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि वो विड्रॉ हो जाते हैं, कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ ज्यादा चुप रहने लगते हैं, कुछ हर वक्त गुस्सा करने लगते हैं, और हर बच्चा अपना पेन अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। कई बच्चे जो ब्रोकन फैमिलीज में ग्रो होते हैं, उनके अंदर फ्यूचर रिलेशनशिप को लेकर एक डर भी पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि शादियां हमेशा टूटती हैं, ट्रस्ट हमेशा टूटता है, और ये इम्पैक्ट अडल्टहुड तक जाता है। और कई बार इस तरह का इम्पैक्ट जो है वो उन्हें एक अलग तरीके का शख्स बनाता है, जिसे हमारी और आपकी सोसाइटी सो कॉल्ड अच्छा या सिविल ह्यूमन नहीं कह सकती। देखिए, हर डिवोर्स जो है वो बच्चों के लिए बुरा है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, माँ बाप का अलग होना हर बच्चे के लिए बहुत बुरा है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात भी हमें समझनी है, वो ये कि हर हाल में डिवोर्स जो है वो हार्मफुल है। ये जवाब मैं तो क्या पता नहीं कोई भी दे पाएगा कि नहीं, बट हाँ, शायद जो दो लोग जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं, जो ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगी कि एक अच्छा सोल्यूशन है। अगर घर में हर रोज झगड़े हैं, वॉयलेंस है, अब्यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, टॉक्सिटी है, तो ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों के लिए, उनके ब्रेन के लिए काफी डैमेजिंग है। कई दफा पीसफुल सेपरेशन ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डिवोर्स के बाद भी पेरेंट्स को पेरेंटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। एक्स स्पाउस बनना अलग बात है, एक्स पेरेंट बनना मुमकिन ही नहीं। अब यहाँ पर मैं बात करूंगी को पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस की भी। अगर डिवोर्स हो जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है को पेरेंटिंग, यानी पेरेंट्स अपने डिफरेंसेस साइड पर रखकर बच्चों के वेलबींग को प्रायोरिटी दें। बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें किसी एक पेरेंट को चूज करना है, उन्हें दोनों की मोहब्बत और सपोर्ट की जरूरत होती है। बच्चों को वेपन मत बनाइए। कई पेरेंट्स गुस्से में बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, मम्मी ऐसी है, डैडी वैसे हैं, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। ये अप्रोच बच्चे को इमोशनल बैटलफील्ड में डाल देती है, और सबसे ज्यादा नुकसान ना आपका है ना किसी और का, सबसे ज्यादा नुकसान बच्चे का है। इसीलिए शायद मैरिज को बचाना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर मैरिज बचाना इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये अगेन ऐसा सवाल है जिस पर मैं जवाब नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, माँ बाप को बचाना एक बच्चे के लिए, या माँ बाप का साथ में खड़े रहना, या एक रिश्ते में बंधे रहना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। खास करके वैसे तो बच्चे हमेशा ही बच्चे रहते हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो, लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो ये मैरिज बचाना बहुत जरूरी है। देखिए, हर मैरिज की अपनी कीमत भी होती है। हर मैरिज को हर कीमत पर कंटिन्यू करना, ये मैं नहीं कहूंगी कि जरूरी है। डिफरेंस समझना जरूरी है। आजकल लोग कभी कभी बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, माइनर सा कॉन्फ्लिक्ट या टेम्परेरी डिसएग्रीमेंट्स, इन सब को एंडिंग पॉइंट नहीं बनाना है। इन्हें मैरिज का एंडिंग पॉइंट मत बनाइए। रिलेशनशिप्स एफर्ट्स मांगती है, पेशेंस मांगती है, कॉम्प्रोमाइज मांगती है, फॉरगिवनेस मांगती है, और शायद टाइम मांगती है। तो अगर ये सारी चीजें हम देने में कामयाब हैं, तो हो सकता है जाहिरी तौर पे कुछ वक्त तक हमारा रिश्ता उतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग नजर ना आए, लेकिन यकीन मानिए वो रिश्ता वक्त के साथ धीरे धीरे और मजबूत होने लगता है। मैरिज को बच्चे के लिए बचाइए, और इसके लिए ओपन कम्युनिकेशन हो। जरूरत पड़े तो काउंसलिंग के लिए आप जो है वो झिझके नहीं, हेजिटेट ना करें। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है रिश्ते को मजबूती देने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि वक्त, हर रिश्ता वक्त चाहता है। एम्पैथी, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए उन टूल्स का इस्तेमाल करना जो बच्चों के हक में और इस रिश्ते को बचाने के हक में जरूरी हों।

कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प एक रिलेशनशिप को नई जिंदगी देती है. कितने सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर लोगों ने, आई मीन टू से पेरेंट्स ने, शायद मुझे कपल से ज्यादा पेरेंट्स कहना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि माँ बाप कभी भी जुदा ना हो. लेकिन अगर सिचुएशन वर्स्ट हो, अगर रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गई है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो, एब्यूज हो, मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही हो, तो फिर अलग होना हेल्थी डिसीजन शायद है. इस्लाम भी जुल्म में रहने की मजबूरी या जुल्म सहने के लिए नहीं कहता. अगर वाकई इस तरह की कोई मजबूरी बड़ी है तो फिर अलहदगी बेहतर है. लेकिन ये अलहदगी भी डिग्निटी और वेलबींग को मद्देनजर रख कर की जानी चाहिए. अब एक और चीज आती है, वो है सेकेंड मैरिज का ऑप्शन. कहने को तो ये टॉपिक और ये बात काफी सेंसिटिव है, और इसका जवाब मैं तो पता नहीं मैं क्या दूं, मगर मैं ये कह सकती हूँ कि शायद हर इंडिविजुअल के लिए अलग हो सकता है ना. सेकेंड मैरिज कामयाब हो सकती है और शायद नहीं भी. कई बार एक डिवोर्स फादर इमोशनली हील हो चुका होता है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, बच्चों की जिम्मेदारी भी समझने लगता है, तो सेकेंड मैरिज एक पॉजिटिव स्टेप होता है ऐसी जगह. लेकिन उसको ये समझना होगा कि बच्चे उसकी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट है. नए स्पाउस को भी ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी. और अगर आपको लगता है कि ये रियलिटी नए स्पाउस नहीं एक्सेप्ट कर सकती, तो ऐसे केस में आप खुद अकेले माँ और बाप दोनों का रोल निभाएं. वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल्स के लिए, तो सोसाइटी अक्सर डिवोर्स्ड वुमेन के लिए डबल स्टैंडर्ड भी रखती है. लेकिन रियलिटी ये है कि एक डिवोर्स्ड वुमेन भी कंपेनियनशिप, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस का उतना ही हक रखती है जितना एक मेल रखता है. अगर वो इमोशनली रेडी है, हेल्दी रिलेशनशिप चूज करती है और बच्चों के वेलबींग को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो सेकेंड मैरिज उसके लिए भी एक पॉजिटिव डिसीजन होना चाहिए. लेकिन जब बच्चे हों तो चैलेंजेस भी होते हैं. सेकेंड मैरिज सिर्फ दो लोगों की शादी तो नहीं है, अब ये दो फैमिलीज की शादी है, दो फैमिली सिस्टम का इंटीग्रेशन है. और ये प्रोसेस बिलीव मी आसान बिल्कुल भी नहीं होता. बच्चों को नए पेरेंट फिगर को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है. उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ट होने में सालों लग जाते हैं. उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप नेचुरली डेवलप हो. पर हाँ, कई बच्चे महसूस करते हैं कि अगर वो स्टेप पेरेंट से अटैच होंगे तो शायद ओरिजिनल पेरेंट हर्ट हो जाएंगे, और ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब रखती है. अब यहाँ पे एक और चीज मैं कहूंगी, वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है पेशेंस. सेकेंड मैरिज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेशेंस. प्यार हो ना हो, पेशेंस हो, एक्सेप्टेंस हो, और शायद इसी से रिश्ता ग्रो कर पाता है. वहीं सेकेंड मैरिज के लिए रिस्पेक्ट का होना फिर भी जरूरी है. ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, पेशेंस, और शायद बच्चों की इमोशनल नीड्स को भी समझना. जहां अडल्ट सिर्फ अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. और जहां फैमिली की कलेक्टिव वेलबींग प्रायोरिटी पर रखी जाती है, वहां हीलिंग स्टार्ट हो जाती है. देखिए दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एक इमोशनल इकोसिस्टम है. और जब ये इकोसिस्टम टूटता है तो उसकी आवाज सिर्फ कोर्ट रूम तक नहीं जाती, वो बच्चों के दिलों तक जाती है, पेरेंट्स के जमीर तक जाती है, और कई दफा जनरेशंस तक सुनाई देती है. डिवोर्स को जज करना हमारा काम नहीं है. हर कहानी, जैसे मैंने कहा, हर कहानी के पीछे का दर्द अलग होता है, सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, सिचुएशन अलग होती है. लेकिन एक बात जो हमें और आपको हमेशा याद रखनी है, मैरिज खत्म हो सकती है, पेरेंटिंग नहीं. हस्बैंड और वाइफ अलग हो सकते हैं, माँ बाप नहीं. हस्बैंड और वाइफ की नाराजगी बढ़ सकती है, लेकिन बच्चों की जरूरत कभी खत्म नहीं होती. आपका रिलेशनशिप चेंज हो सकता है, लेकिन बच्चे का हक नहीं. अगर मैरिज बच सकती है तो उसे 100% कोशिश करें बचाएं. कम्युनिकेशन से बचाएं, रिस्पेक्ट से बचाएं, किसी और काउंसलिंग के थ्रू बचाएं, या कोई और तीसरा चौथा बंदा इसमें काम कर सकता है. क्योंकि ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं. उन्हें अपनी जंग का हिस्सा मत बनाइए. उन्हें आपको और फादर या मदर के बीच किसी एक को चूज करने पर मजबूर मत कीजिए. उन्हें किसी एक के प्यार से महरूम मत रखिए, क्योंकि बच्चे डिवोर्स पेपर्स नहीं समझते.

0: वो सिर्फ समझते हैं तो वो है मोहब्बत और आपका साथ। और जब माँ बाप अपने डिफरेंसेस के बावजूद भी बच्चों के लिए मिलकर खड़े रहते हैं, तब बच्चे सीखते क्या है? ये कि रिलेशनशिप टूट नहीं सकते, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। इंसानियत खत्म नहीं हो सकती, जिम्मेदारी मोहब्बत कभी नहीं टूटती, चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए। और शायद यही हमारी असली टीचिंग और प्रीचिंग है। चलिए दोस्तों, मैं एक छोटा सा किस्सा और एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। स्कूल में एनुअल साइंस कंपटीशन चल रहा था। क्लास 8 के दो स्टूडेंट्स अली और समीर दोनों अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने वाले थे। अली जब स्टेज पर गया तो कॉन्फिडेंस से बोला, उसने अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, जजेस के सवालों के जवाब दिए और मुस्कुराते हुए वापस अपनी सीट पर आ गया। दूसरी तरफ था लड़का समीर, वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसका प्रोजेक्ट भी जबरदस्त था, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर गया उसके हाथ कांपने लगे। वो बार बार अपनी बात भूल रहा था और बेहद नर्वस नजर आ रहा था। कंपटीशन वो हार गया, लेकिन कंपटीशन के बाद टीचर ने दोनों को बुलाया। टीचर ने अली से पूछा, तुम इतने कॉन्फिडेंट स्टेज पर कैसे दिख रहे थे? अली मुस्कुराया और बोला, मैम जब भी मैं किसी चीज से डरता हूँ, मेरे पेरेंट्स कहते हैं, बेटा जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, और इसीलिए मुझे पता होता है कि घर जाकर मुझे तो सपोर्ट ही मिलेगा, इस वजह से मैं शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता हूँ। फिर यही सवाल टीचर ने समीर से पूछा। समीर ने हल्की सी आवाज में कहा, मैम मेरे पेरेंट्स डिवोर्स के बाद अलग हो चुके हैं, मैं जब भी कोई अच्छी या बुरी बात शेयर करना चाहता हूँ, समझ में नहीं आता किससे करूँ, घर में अक्सर टेंशन है, कभी लगता है कि कोई मेरी बात सुनने वाला ही नहीं है, कोई मेरे साथ बैठने वाला ही नहीं है, और कोई मुझे सेफ एनवायरनमेंट देने वाला नहीं है। टीचर कुछ पल के लिए खामोश रह गई। उसने देखा कि दोनों बच्चों की इंटेलिजेंस में फर्क है, समीर एक इंटेलिजेंट बच्चा होने के बावजूद कॉन्फिडेंट नहीं है। और ये सिर्फ फर्क इतना सा नहीं कि एक बच्चा जो है वो इमोशनल सिक्योरिटी के साथ है और दूसरा इमोशनल सिक्योरिटी के बगैर, ये भी है कि उसका फ्यूचर स्टेक पर है। अली को पता था कि अगर वो गिर गया तो उसे संभाल लेंगे उसके पेरेंट्स। समीर को ये डर है कि वो अकेला है, तन्हा है, और यही वजह थी कि अली का कॉन्फिडेंस उसकी बुक से नहीं, उसके घर के एनवायरमेंट से उसे मिला। और समीर की स्ट्रगल उसकी एबिलिटी की कमी नहीं है, उसके इमोशनल जख्मों की वजह से थी। बस दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हर ब्रोकन फैमिली का बच्चा कामयाब शायद होता है और शायद नहीं भी, और शायद गलत रास्ते पे भी चला जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं दावे से कहूँगी कि हर कंप्लीट फैमिली का बच्चा एक अच्छा इंसान ज़रूर बनता है। एक सच बात ये भी है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा, तालीम ये नहीं चाहिए, उन्हें इमोशनल सेफ्टी भी चाहिए। जब माँ और बाप एक दूसरे की इज्जत करते हैं, बच्चे इज्जत सीखते हैं। जब घर में मोहब्बत होती है, बच्चे मोहब्बत बांटना सीखते हैं। और जब घर में लड़ाई, नफरत और टूटे हुए रिश्ते होते हैं, तो बच्चे अक्सर उन जख्मों को बोझ समझ के सालों तक उठाते रहते हैं। यहाँ पर ये बात हमें और आपको याद रखना जरूरी है कि बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बच्चे अक्सर वो बनते हैं जो वो घर में रोज देखते हैं। इसीलिए अगर आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन फ्यूचर देना चाहते हैं, तो उन्हें सिर्फ अच्छे स्कूल में मत डालिए, बल्कि एक सेहतमंद घर, मोहब्बत भरा एनवायरमेंट और इमोशनल सिक्योरिटी भी दीजिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी की सबसे पहली यूनिवर्सिटी उनका घर है, सबसे पहला स्कूल उनका घर है, और सबसे पहले टीचर्स उनके पेरेंट्स हैं। जी हाँ, उनके पेरेंट्स यानी माँ और बाप दोनों। दोस्तों, आज जब हम बच्चों की परवरिश, हेल्दी होम और ब्रोकन फैमिलीज, डिवोर्स की बात कर रहे थे, तो एक बात बार बार दिल में आ रही थी, और वो ये कि बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए होते, बच्चों को प्रेजेंट पेरेंट्स चाहिए होते हैं, ऐसे पेरेंट्स जो उनकी बात सुन सके, जो उनकी छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर खुश हो सके, जो उनके डर को समझ सके और जो उन्हें ये एहसास दिला सके कि चाहे दुनिया बदल जाए, घर उनके लिए हमेशा एक सेफ प्लेस रहेगी।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।

पीछे अक्सर एक सपोर्ट सिस्टम होता है, क्योंकि टैलेंट कॉन्फिडेंस देता है और सपोर्ट करेज देता है, और जब टैलेंट और करेज मिल जाए तो कमाल पैदा होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आज सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की बात नहीं कर रही थी, आज मैं उस आम बच्चे की भी बात कर रही हूँ जो स्कूल से घर आता है और जैसे सिर्फ आकर ये देखना चाहता है कि उसके माँ बाप दोनों उसके साथ हैं। कभी कभी एक बच्चे की पूरी जिंदगी बदलने के लिए मिलियन डॉलर्स नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट आपकी जेन्युइन तवज्जो चाहिए होती है, सिर्फ एक हक चाहिए होता है, सिर्फ एक एहसास चाहिए होता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। आज के दौर में पेरेंट्स बच्चों के लिए सब कुछ अरेंज कर देते हैं, बेस्ट स्कूल, गैजेट्स, एक्टिविटीज, लेकिन कभी कभी बच्चे इन सबसे ज्यादा उस चीज को मिस करते हैं, और वो चीज है पेरेंट्स का वक्त। याद रखिए, कोई भी बच्चा कल ये याद नहीं रखेगा कि उसके पास कौन सा फोन था, कौन सा गैजेट था, लेकिन वो ये जरूर याद रखेगा कि उसके पेरेंट्स उसके साथ दोनों खड़े थे बुरे वक्त में कि नहीं, उसे कितना सुना जाता था, उसे कितना वैलिडेट किया जाता था, उसे कितना समझा जाता था, क्योंकि बचपन की यादें चीजों से नहीं रिश्तों से बनती हैं। और जब घर में मोहब्बत, इज्जत और इमोशनल सिक्योरिटी होती है तो बच्चा जिंदगी के तूफानों का भी सामना करना सीख जाता है, और जब घर में जंग का मैदान बन जाए और जंग का मैदान बना रहे तो बच्चे अक्सर वो जख्म लेकर जवान होते हैं जो किसी को नजर नहीं आते। और इसीलिए अगर माँ बाप नहीं या बाप नहीं या माँ नहीं तो बच्चे जो हैं वो शख्स नहीं बन पाते जो हम चाहते हैं। तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए प्रिपेयर मत कीजिए, उन्हें ऐसा आज दीजिए जैसे वो कल याद करें, फख्र महसूस करें। उनके सामने एक दूसरे की इज्जत कीजिए, उनके सामने एज अ पेरेंट मोहब्बत का इजहार कीजिए, उनके सामने मसाइल को तमीज और हिकमत से सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा आपकी बातें कम और आपका रवैया ज्यादा सीखता है। बस अब जाते जाते मुझे लगता है कि मैं अब क्या ही कहूँ। आज हमने बहुत कुछ सीखा, समझा और जाना कि कई बार मैरिजेस जो हैं वो एंड हो जाती हैं, लेकिन पेरेंटिंग ओवर नहीं होती। और जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसके पास कोई डिग्री नहीं होती, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके पास सिर्फ और सिर्फ साथ होता है माँ बाप का, भरोसा होता है, भरोसा अपने माँ बाप पर। और उस भरोसे को मजबूत बनाना या तोड़ना हमारे हाथ में है। जब आज आप अपने घर लौटे, अपने बच्चों को गले लगाइए, उनकी बात सुनिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें एहसास दिलाइए कि आप हैं उनके लिए, वो अकेला नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए एक छोटा सा मोमेंट हो, लेकिन उस बच्चे के लिए ये उसकी पूरी दुनिया हो। आखिर में सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूंगी, बच्चे वो याद नहीं रखते कि आपने उनके लिए कितना कमाया था, वो ये याद रखते हैं कि आपने उनके लिए कितना वक्त निकाला था। और शायद पेरेंटिंग की सबसे बड़ी कामयाबी भी यही है कि हम कितना वक्त दे पा रहे हैं, और क्या हम अपने आप को एज अ पेरेंट समझ पा रहे हैं, क्या हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में रख पा रहे हैं, क्या हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर पा रहे हैं। ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जब भी रिश्तों में कमजोरी आए, रिलेशनशिप्स खास करके अगर एज अ पेरेंट देखा जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, माहौल जो है वो टॉक्सिक होने लगे, तो सबसे पहले कोशिश क्या कीजिए कि आप अपने वॉलेट में एक अपने बच्चे की फ़ोटो रखें और उस फोटो को निकालें, देखें, और फिर खुद को ये तसल्ली दें कि मुझे ये रिश्ता बचाना है, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए। और ये बात मैं दोनों से कह रही हूँ, आई मीन टू से कपल से कह रही हूँ जो किसी ना किसी वजह से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार हो रहे हैं, और शायद वो वहां से वापस आ सकते हैं। और एक कड़ी जो उनको मजबूती से जोड़ के रखती है वो है बच्चे। जी हाँ, बच्चे या बच्चा आपकी वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपकी वो सबसे बड़ी, मैं कह सकती हूँ आपका सबसे बड़ा गोल होना चाहिए अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। ये नहीं कहूंगी कि अपनी जिंदगी कुर्बान कर दीजिए, अपनी खुशियां अपने बच्चों की बेहतर फ्यूचर के इर्द गिर्द ढूंढिए। और यकीन मानिए, जब इस तरह के रिश्तों को आप बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको ऊपर वाले यानी अल्लाह की तरफ से भी एक

0: हिम्मत मिलती है और आप रिश्तों को बेहतर तरीके से सवार पाते हैं, निखार पाते हैं और यही खूबसूरती है रिश्तों की। चलिए, मुझे लगता है कि आज हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ जाना, सीखा, काफ़ी इमोशनल टॉपिक भी था, डिवोर्स जैसा टॉपिक। और फिर हमने और आपने समझा कि रिश्ता तोड़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसे निभाना, बनाए रखना बड़ा मुश्किल, और जोड़ पाना तो शायद उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल। कोशिश कीजिए कि हर रिश्ते को अहमियत दी जाए, हर रिश्ते में ट्रस्ट हो, मोहब्बत हो, और वो रिश्ता कामयाब बनाने का, उस रिश्ते को कायम रखने का काम जो है वो एक का नहीं है, दोनों का है। तो बस एज ए पेरेंट मिलजुल के काम कीजिए और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाइए। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी हम दोनों को इस शो से इजाजत दें। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
2: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूव प्लेटफॉर्म पर।
3: Anytime, anywhere.
4: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और डाउनलोड the app QMC now।

0: क्योंकि कभी एक खूबसूरत लफ्ज थके हुए दिल में उम्मीद पैदा कर देता है। और आजकल बच्चों की तरबियत में भी इस सुन्नत की बड़ी जरूरत है कि अगर बच्चा हर छोटी चीज के बारे में सुनता रहे कि मनहूस है, ऐसा हुआ तो बुरा होगा, उस दिन ये काम नहीं करना, उस चीज से बदकिस्मती आती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन वहमों का शिकार हो सकता है। उसे इसके बजाय सिखाइए कि खैर और शर अल्लाह के हाथ में है, दुआ करो, एहतियात करो, सही असबाब इख्तियार करो। मोमिन वहम के साए में नहीं जीता, वो तवक्कुल के साए में जीता है। इसी तरह नाकामी को बदशगुनी न बनाइए, कभी एक बुरा तजुर्बा भी इंसान की पूरी सोच बदल देता है। एक कारोबार नाकाम हुआ तो कहने लगे कि कारोबार मेरे लिए नहीं, एक इम्तिहान में नाकामी हुई तो कहते कि मेरी किस्मत ही खराब है, एक रिश्ता कामयाब न हुआ तो ये कह बैठे कि मेरे नसीब में खुशी नहीं। याद रखिए ये एक वाकया है, ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं। मोमिन मुश्किल को देखता है मगर मुश्किल से अपनी पूरी तकदीर का फैसला नहीं करता। अल्लाह ताला हमें वहम, बदशगुनी और बेबुनियाद खौफ से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपरवर सुन्नत के आज के हल्के से तकनीकी मुआविन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Your health matters.
3: Assalamu alaikum rahmatullah. आज हम बात करेंगे कि रेगुलर जो हेल्थ चेक के बारे में, कि ये जुमला हम अक्सर सुनते हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं जो है वो चेकअप क्यों करवाऊँ। ये बात समझना ज़रूरी है कि बाज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू में वाज़े जो अलामतें हैं वो नहीं देते और सिम्टम्स भी नहीं होते, इसलिए बाज़ अफराद के लिए अप्रोप्रियट स्क्रीनिंग और जो रूटीन हेल्थ चेक्स हैं वो अहम हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो हेल्थ चेकअप है उसका मतलब क्या है। ये नहीं है कि जो ब्लड टेस्ट हैं तो वो सिर्फ वही हेल्थ चेकअप है। इसमें डॉक्टर आपकी लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री और जो हेल्थ हिस्ट्री है और रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात हो सकती है और ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। मसलन आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका वेट क्या है, ओवरऑल हेल्थ कैसी है। कुछ अफराद में कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल नहीं होते, और इसी तरह जो वैक्सीनेशन स्टेटस है वो क्या है। आंखों और दांतों की हेल्थ भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो क्या है, और उम्र क्या है आपकी, आपकी जो जिन्स है, मेल है फीमेल है, क्या है, जो इंडिविजुअल रिस्क के मुताबिक जो दूसरी रिकमेंडेड स्क्रीनिंग है वो क्या है। ये तमाम हर फर्द का अलग अलग हो सकता है और होता है, इसलिए जो हेल्थ चेकअप है हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं है। ये बात बहुत अहम है कि एक शख्स के लिए एक टेस्ट बनाया जाता है। ये बात बहुत अहम है कि हर शख्स के लिए जो टेस्ट बताया जाता है या जब बताया जाता है तो वो करवा लिया भी जाता है। ज़रूरी नहीं कि वही टेस्ट जो है वो किसी और के लिए हो। हेल्थ केयर के मुताबिक जो इंडिविजुअल रिस्क है और फैमिली हिस्ट्री है उसका फैसला उम्र, आपके जो मेल हैं फीमेल हैं उसकी स्क्रीनिंग के साथ साथ करना बेहतर है। इसी तरह में फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपके ख़ानदान में डायबिटीज़ आम है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या दिल के कोई अमराज हैं, या फिर कुछ मखसूस खुदा नहास्ता जो कैंसर हैं वो मौजूद हैं। अपनी फैमिली जो हेल्थ हिस्ट्री है जानना डॉक्टर के लिए यूज़फुल जो इंफॉर्मेशन हैं वो हो सकती हैं, और आपको बिल्कुल सही तौर पर उन्हें बताना है। अगर आपको मालूम नहीं तो फिर आप अपने घर से पूछकर जो फैमिली हिस्ट्री है बेसिक उसे लिख लीजिए, और वो डॉक्टर के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। अब ये कि वैक्सीनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपनी वैक्सीनेशन हिस्ट्री भी चेक कीजिए। बच्चों के लिए वैक्सीन्स का जो स्केड्यूल है बहुत अहम है, लेकिन एडल्ट्स को भी बाज़ हालात में वैक्सीनेशन की ज़रूरत हो सकती है। और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो हेल्थ केयर सेटिंग में काम करते हैं या कोई मखसूस हेल्थ कंडीशंस हैं तो आपको फिर जो वैक्सीन है उसकी ज़रूरत जो है मुख्तलिफ हो सकती है। इसी तरह डेंटल और जो आई हेल्थ है वो भी बहुत अहम है। अगर आपको दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट के पास क्या आप जाते हैं, क्या आपकी नज़र जो है ख़राब है तो क्या आप अपना जो आई एग्जामिनेशन है वो करवाते हैं। इसी तरह से अपनी उम्र

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए, मैं हर बार आपको वेबसाइट्स टूल्स के बारे में बताते रहता हूँ और इस वजह से मेरी भी जानकारी बढ़ती रहती है, नॉलेज में इजाफा होता रहता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप भी कुछ अगर ढूंढते हैं, कुछ इत्तफाकन आपके सामने आ जाता है, तो क्यों ना आप मुझे बता दें, मैं भी इस मामले में मदद चाहूंगा। मेरे लिए भी फायदा है, आपके लिए फायदा है। बट एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद द अपडेट। सो तीन वेबसाइट्स मैं आपको आज देने वाला हूं, तीनों बेहद बेहद बेहद काम की हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर वन ऑन द लिस्ट, इस वेबसाइट का नाम है poe.com। poe.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने मौजूद होंगे 400 AI टूल्स। 400 एंड कमाल की बात यह है कि इस पे बहुत सारे AI टूल्स ऐसे जिनके बारे में ना मुझे पता था और आई एम प्रीटी श्योर बाकी जनता को भी नहीं पता होगा। और वो वाले टूल्स ऐसे हैं जो बाकी बड़े बड़े AI टूल्स जो पैसे मांगते हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, और या तो सस्ते हैं या बिल्कुल फ्री हैं। ये आपके काम आएगी वेबसाइट, सच्ची बता रहा हूँ। अगर आप बैठे हैं और सोच रहे हैं कौन सा टूल किस AI पे जाऊं, इसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्या करूं, तो यहाँ पे आप जाइए। एवरी टूल हैज अ डिस्क्रिप्शन और हर टूल के बारे में आपको पता भी लगेगा, एंड यू कैन चूज आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। सो poe.com, इस पे जाइएगा, मामला हो जाएगा आसान। बढ़ते हैं आगे। अगली वेबसाइट का नाम है perchance.org, PER, पर chance, chance, perchance.org। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ये बड़ी कमाल की वेबसाइट है। ये आपको काफी कुछ देगी, जैसे कि आपको मदद करेगी इमेज क्रिएशन में, नंबर वन चीज, क्योंकि अनलिमिटेड इमेज क्रिएशन जब आपको मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कोई और वेबसाइट इतना अच्छे से दे पाएगी आपको। क्वालिटी 100% की जगह 98% अगर आपको चलती है, जो कि चलेगी आप ब्रिटिश हो, तो ये आपके लिए बेहद कमाल की वेबसाइट है और ये जनरेट भी थोड़ा जल्दी कर देती है। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, आई थिंक इट विल सूट अ लॉट ऑफ पीपल जिनका काम रहता है इमेज जनरेशन का, तो आपकी बहुत काम आ सकती है। perchance.org, जरूर जरूर जरूर जरूर ट्राई करें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगली जो वेबसाइट है इसका नाम, इसका जो नाम है वो इसका काम है, बेसिकली नाम नोट कर लीजिएगा, promptcowboy.ai, prompt, promptt, बिना स्पेस ये, cowboy, cowboy.ai, promptcowboy.ai। यहां पे आप जाइएगा, ये क्या करेगा, आपको प्रॉम्प्ट लिखने में मदद करेगा। आधी दुनिया को ऐसा लगता है कि प्रॉम्प्ट लिखना तो बेहद आसान है, इसमें क्या है, मैं लिख दूंगा रिमूव माय बियर्ड, नहीं ऐसा नहीं होता ना, तो क्योंकि यू हैव टू राइट इन अ सर्टेन वे। आपका प्रॉम्प्ट जितना प्रिसाइज होगा, जितना स्पेसिफिकली आप किसी चीज को बताएंगे, उतना आपका फायदा है। कई मरतबा दिमाग में होता बहुत कुछ है पर वो उतर नहीं पाता प्रॉम्प्ट्स में, बट ये जो वेबसाइट है ये आपकी मदद करेगी। फॉर एग्जांपल, इसको आपने कहा कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूं मैं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे मैं प्रॉम्प्ट में डालूं, तो ये आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे ऐसे आएगा और ये लो जी प्रॉम्प्ट, तो आपको प्रॉम्प्ट भी बना के दे देगा, एन एडवांस्ड वर्जन देगा जो आपके बहुत काम आएगा। ब्यूटीफुली डन एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वेबसाइट। ओके, अब बढ़ते हैं जरा एक बहुत जरूरी खबर की तरफ। खबर जो है वो गेमिंग की दुनिया से है। अब रिलीज हुआ है जब से कंट्रोल रेजोनेंट, पब्लिक में हलचल मच चुकी है और इस गेम ने बहुत तो के सर घुमा दिए। एक्चुअली क्या, कुछ लोग कह रहे हैं अरे ये लोग तो क्या बना दिया इन्होंने, ऐसा सोचा भी नहीं था, कुछ लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, पर मैक्सिमम लोग तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि और भी बहुत सारे गेम्स हम डेवलप कर रहे हैं साथ साथ, जो इंडी गेम्स भी हैं उन डेवलपर्स को भी हम चांस देंगे, जो एक दो लोग मिलके बना रहे हैं, सिंगल हैंडेडली लोग तैयार कर रहे हैं ब्यूटीफुली डन, तो उनको भी चांस दिया जाएगा। गेमिंग इंडस्ट्री की एक और बड़ी खबर है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था प्ले स्टेशन की तरफ से, वैसी एक्सबॉक्स की तरफ से है। एक्सबॉक्स ने जब से हिडेओ कोजिमा को, मतलब गेमिंग इंडस्ट्री के क्रिस्टोफर नोलन को हायर किया है, हलचल मची हुई है। उनका एक गेम ओडी, जो प्राइमरीली वन ऑफ द बिगेस्ट हॉरर फ्लिक्स माना जा रहा है, गेम माना जा रहा है, आने वाला है, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट में है। एक सरप्राइज जो लोग बता नहीं रहे, सरप्राइज करके टीज कर रहे हैं। लेट्स सी, क्या ये सही टाइम है एक्सबॉक्स ले लेने का, खर्चा कराओगे यार। दीज वर द अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में, जल्द से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: स्कैम अलर्ट।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं और आगाह करता हूं कि कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। वेल, आज जिस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं ये स्पोर्ट्स से मुताल्लिक है, यानी कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या फिर वो लोग जो स्पोर्ट्स में यू नो एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी खेल को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने फिटनेस को बेहतर करना चाहते हैं, और ये स्कैम है स्पोर्ट्स एडमिशन स्कैम। कैसे काम करता है ये स्कैम, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एडमिशन स्कैम एक ऐसी धोखेबाजी है जो स्टूडेंट्स एथलीट्स और उनकी फैमिलीज के ख्वाबों का गलत फायदा उठाती है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स मशहूर यूनिवर्सिटीज में गारंटीड स्पोर्ट्स एडमिशन या एलीट एथलेटिक स्कॉलरशिप्स दिलवाने का झूठा वादा करते हैं। फ्रॉड करने वाले लोग खुद को बड़े टैलेंट स्काउट्स, करप्ट स्पोर्ट्स एजेंट या यूनिवर्सिटी के वेल कनेक्टेड एथलेटिक रिक्रूटर्स दिखाते हैं। वो बिल्कुल असली दिखने वाले नकली एथलेटिक डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी तैयार करते हैं ताकि लोगों को यकीन आ जाए। फिर वो विक्टिम से प्रोफाइल इवैल्यूएशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग या फास्ट ट्रैक्ड कंप्लायंस ट्रैकिंग के नाम पर बहुत बड़ी अपफ्रंट फीस मांगते हैं। जैसे ही फैमिली ये भारी रकम अदा करती है, ये फेक रिक्रूटर्स आपसे कांटेक्ट करने वाले जितने भी नंबर हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, नंबर गायब हो जाता है, आप इन्हें ट्रैक नहीं कर सकते, जिससे स्टूडेंट्स की एकेडमिक फ्यूचर और एथलेटिक ड्रीम्स पूरी तरह तबाह हो जाती हैं और फैमिली को बहुत बड़ा माली नुकसान भी होता है। एक जमाने में, मुझे पता नहीं कई लोगों को पता है या नहीं है, एक तरह का स्कैम चलता था जब असल में क्रिकेट के ट्रायल्स होते थे, किसी एक फेमस टूर्नामेंट के बारे में बात होती थी, उसको लेकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल्स होते थे, बाकायदा प्लेयर्स आते थे, वो रजिस्ट्रेशन फीस दिया करते थे, वहां पर सेलेक्टर्स बैठते थे, बैटिंग और बॉलिंग और फुटबॉल के जो ट्रायल्स हैं या फिर किसी भी तरह के जो ट्रायल्स हैं, अलग मुल्क के बारे में बात कर रहा हूँ, वहां पर ये ट्रायल्स होते थे और उसके बाद वो टूर्नामेंट कभी होता ही नहीं था, तो रजिस्ट्रेशन फीस लेकर वो भाग गए। उसके अलावा जो भी वहां पर आपको यू नो सुविधाएं दी गई हैं, जो प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट होती हैं उनके लिए फिर पैसे होते थे, पानी के लिए चार्ज किया जाता था आपको, है ना, मेडिकल के लिए चार्ज किया जाता था, तो इन सब चीजों के लिए वो आपको चार्ज करते थे और फिर उसके बाद टूर्नामेंट कभी होता ही नहीं था, सिलेक्शन कभी किसी प्लेयर का होता ही नहीं था। इस तरह के स्कैम्स भी होते रहे हैं और इस तरह के स्कैम से बचने के कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनको आपको गौर से सुनना चाहिए दोस्तों। इनके कुछ तीन आसान

आसान तरीके हैं जिससे आप इस स्पोर्ट्स के एडमिशन वाले स्कैम से बच सकते हैं। ये है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी चैनल से राब्ता करना। सबसे पहला, किसी भी स्कॉलरशिप या एडमिशन ऑफर को वेरीफाई करने के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एथलेटिक डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कॉल या ईमेल करें। किसी थर्ड पार्टी एजेंट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। उसके अलावा गारंटीड ऑफर से होशियार रहें। लेजिट स्पोर्ट्स एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स हमेशा एक सख्त और ऑफिशियल मेरिट प्रोसेस के जरिए मिलती है। अगर कोई शख्स पैसे के बदले गारंटीड सीट या स्कॉलरशिप का वादा करे तो समझ जाएं ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। उसके अलावा तीसरा तरीका है इस तरह के स्कैम से बचने का, वो है अपफ्रंट फीस देने से बचना। यूनिवर्सिटी के असली स्काउट्स या रिक्रूटर्स कभी भी एडमिशन प्रोसेस को तेज करने या फिर प्रोफाइल चेक करने के लिए अचानक चुपके से एडवांस कैश या फीस नहीं मांगते। कोई भी बड़ी पेमेंट करने से पहले हमेशा रूल्स को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ आपका हक है। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आपको इन तीन तरीकों का इस्तेमाल जरूर करना है। और सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी शख्स को पेमेंट करने से पहले उसके बारे में जांच परख लें और ऑनलाइन पेमेंट से बचें, जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट से बचें। और अगर आप ऑफलाइन यानी कि सामने किसी शख्स से मिलकर पैसा देते हैं तो उससे रिसीट जरूर लें, और जो रिसीट ऑफिशियल होती है उस रिसीट को एक्सेप्ट करें मोहर के साथ। उम्मीद है आपको ये स्कैम के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।

पाकिस्तान के एक ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने अपनी तेज तरीन बॉलिंग और एग्रेसिव स्टाइल से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। वासिम अकरम की बात नहीं कर रहा हूँ, ना इमरान खान की बात कर रहा हूँ, ना सरफराज नवाज के बारे में बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट के साथ, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। तो आपने कुछ गेस किया, चलिए मैं ही बता देता हूँ, बात हो रही है सिकंदर वक्त के बारे में। सिकंदर वक्त का पूरा नाम सिकंदर वक्त जान है। वो 29 अगस्त 1957 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के उन बॉलर्स में होता है जो 1970s के आखिर और 1980s के दौर में नेशनल टीम का हिस्सा बने। सिकंदर वक्त राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर थे और उनकी बॉलिंग में पेस के साथ स्विंग भी देखने को मिलती थी। सिकंदर ने पाकिस्तान के लिए 26 टेस्ट मैचेस खेले और इन मैचेस में उन्होंने 66 विकेट हासिल किए। उनका टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 4 विकेट्स फॉर 32 रन्स रही। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 27 ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल्स मैचेस भी खेले और ओडीआई क्रिकेट में 22 विकेट्स अपने नाम किए। दोस्तों, उनका इंटरनेशनल करियर एक ऐसे वक्त में था जब पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स की एक ऐसी मजबूत ट्रेडिशन डेवलप हो रही थी। इमरान खान, सरफराज नवाज और बाद में वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे बॉलर्स ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग आइडेंटिटी को दुनिया भर में मशहूर किया। सिकंदर भी इसी जनरेशन का हिस्सा थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अहम मैचेस में बॉलिंग अटैक को सपोर्ट किया। अगर उनकी जर्नी के बारे में बात करूं तो शुरुआत होती है 1982 का इंग्लैंड टूर से। क्रिकेट में उनका डेब्यू तो पहले ही हो गया था। इनफैक्ट 1979 का जो इंडिया का दौरा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो उसमें सिकंदर वक्त वाज वन ऑफ द मेन बॉलर्स। उनका जर्नी का एक खास पहलू उनका 1982 का इंग्लैंड टूर था। पाकिस्तान की टीम उस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही थी और सिकंदर वक्त ने भी बॉलिंग अटैक में अपना किरदार बाखूबी निभाया। उनकी एबिलिटी थी कि वो बल्लेबाज को पेस और मूवमेंट के जरिए दबाव में ला सकते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करो तो वहां पर भी सिकंदर वक्त ने अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। उनका डोमेस्टिक एक्सपीरियंस बाद में क्रिकेट एनालिसिस और कमेंट्री में भी काम आया। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सिकंदर वक्त ने क्रिकेट से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। वो टेलीविजन पर क्रिकेट एनालिस्ट और कमेंटेटर के तौर पर नजर आए और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अपनी राय देते रहे। यानी उनका एक्सपीरियंस खास तौर पर पाकिस्तान के तेज तरीन जो बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स और नेशनल टीम की परफॉर्मेंसेस पर उनका एक बड़ा अहम रोल रहा है टू डेवलप इट एज एन एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट कमेंटेटर। सिकंदर वक्त का करियर हमें दोस्तों ये बताता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं, हाँ, ही नेवर प्लेड दैट बिग इनफ लाइक वसीम अकरम और वकार यूनुस, बट अगर उनकी जो प्रोफिशिएंसी की बात करूँ, उनकी जो कैपेबिलिटी एबिलिटी एज अ फास्ट बॉलर, दैट वाज रियली आउटस्टैंडिंग। और इंडिया में तो काफ़ी वो सक्सेसफुल रहे 1979 सीरीज में। तो दोस्तों, क्रिकेट में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं बल्कि एक खिलाड़ी का अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन भी अहम होता है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक ऐसे मुश्किल और कॉम्पिटिटिव दौर में फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली और नेशनल टीम को अपनी सर्विसेज दी, जहां से ये हम आसानी से कह सकते हैं कि ही वाज वन ऑफ द टॉप स्टार्स इन द पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप द 1970s

के आखिर और 1980s के कुछ नो इन द बिगिनिंग। तो दोस्तों ये थी कहानी सिकंदर बख्त की, पाकिस्तान के उन फास्ट मीडियम बॉलर्स में से एक जिन्होंने अपने दौर में नेशनल टीम की बॉलिंग को मजबूत बनाने में अपना हिस्सा डाला। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

करें और इस वर्षे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कल हमने कतरी चावल के खानों का तारुफ हासिल किया था, आज हम एक ऐसे खाने की कहानी जानेंगे जो कतर के घरों, शादियों और जश्नों में खास मकाम रखता है। मजबूज, जिसे मजबूज भी कहा जाता है, चावल और गोश्त मुर्गी या मछली से तैयार किया जाने वाला खुशबूदार खाना है। कतर की वजारत सकाफत के मुताबिक ये रोजमर्रा के खानों के साथ साथ छुट्टियों, खास मौके और शादियों में भी तैयार किया जाता है। इस डिश की जान इसका मसाला है। हल्दी, इलायची, दालचीनी, जीरा और लौंग जैसे मसाले चावल और गोश्त में धीरे धीरे अपना जायका उतारते हैं। सबसे खास जो होता है वो इसका सूखा हुआ काला नींबू है, कि हल्का खट्टा और पूर खुशबू जायका पेश करता है, जिसे गर्ल्स के खानों की खास अलामत समझा जाता है। मजबूस बनाने में सब्र की जरूरत होती है। गोश्त को पहले मसालों और शोरबे के साथ पकाया जाता है ताकि वो नरम हो जाए। फिर चावल इसी खुशबूदार शोरबे में पकते हैं। इस तरह चावल का हर दाना गोश्त, मसालों और लुवमे यानी खट्टे नींबू का जायका अपने अंदर जज कर लेता है। इस डिश की खूबसूरती यह है कि इसके कई अंदाज हैं। किसी घर में लैम्प मजबूस मशहूर होता है, किसी के घर में चिकन, जबकि कतर के साहिली आबादियों में मछली वाला मजबूस भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। कुछ मशहूर किस्मों में अलबदवी, अलखबसा, अलबैदा यानी वाइट खबसा भी शामिल है। मजबूस सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि मिल बैठने का एक तरीका भी है। अक्सर इसे एक बड़ी थाली में पेश किया जाता है और दस्तखान के दरमियान में रख दिया जाता है। घर वाले या मेहमान इसके गिर्द बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं और वक्त साथ गुजारते हैं। कतरी कल्चर में मेहमान के लिए ज्यादा खाना तैयार करना इज्जत और करम की निशानी समझा जाता है, इसलिए मजबूस को फरागी से पेश किया जाता है। बड़ी थाली सिर्फ ज्यादा खाने की अलामत नहीं होती बल्कि ये पैगाम देती है कि जगह और मोहब्बत सबके लिए है। कहा जाता है कि इस खाने की कहानी कतर की समंदरी और तिजारती तारीख से भी जुड़ी हुई है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मसाले तिजारत के जरिए इस इलाके तक पहुंचे। यहाँ के लोगों ने इन मसालों को अपने मकामी गोश्त, मछली और चावल के साथ मिलाकर एक ऐसा जायका पैदा किया जो वक्त के साथ कतरी पहचान का हिस्सा बन गया। हर घर का मजबूस थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। किसी के घर में लोमी की खटास ज्यादा होती है, कोई जाफरान की खुशबू को नुमाया करता है और कोई गरम मसालों को हल्का रखता है। ये फर्क इस बात का सबूत है कि रिवायती खाना जिंदा रहता है क्योंकि लोग उसे अपनी पसंद और अपनी यादों के साथ आगे लेकर चलते हैं। आज भी मजबूस कतर में रेस्टोरेंट्स, घरों और कल्चरल इवेंट्स में नजर आता है। नई नस्ल इसे बनाना भी सीख रही है और नए अंदाज में पेश भी कर रही है, लेकिन इसकी बुनियादी रूह यानी साझा करना और मेहमान का एहतराम करना बदलती नहीं। तो अगली बार जब आप मजबूस देखें तो सिर्फ रंग बिरंगे चावल और नरम गोश्त ना देखें, इसमें कतर के बाजारों की मसालों वाली खुशबू, समंदर से मिला रिश्ता, घर के बुजुर्गों की महारत और मेहमान के लिए दिल की वसत भी शामिल करें। आज के कल्चर मोमेंट का खुलासा ये है कि मजबूस कतर का एक पसंदीदा खाना ही नहीं बल्कि एक ऐसी रिवायत है जो खानों को रिश्तों, यादों और मेहमान नवाजी से जोड़ देती है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJ A for अमिता के साथ AI Unlocked पर एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI Unlocked RJ A for अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: Assalamualaikum, मरहबा। मैं हूँ अमिता आपके साथ ऑन FM 107 पर और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो AI Unlocked। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक सिंपल से सवाल से, और वो ये है कि क्या आपने कभी कोई गाना सुना और सोचा कि इसे लिखा किसने होगा? या इंटरनेट पर कोई बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क देखा और सोचा इसके पीछे का फनकार कौन है या इसके पीछे आर्टिस्ट कौन है? हाँ, या कोई ब्लॉग, कोई इश्तिहार या किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते हुए उस इमेजिनेशन के बारे में सोचा जिसने उसे क्रिएट किया या जिंदा किया? अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर पता चले आपको कि इनमें से कुछ भी किसी इंसान ने बनाया ही नहीं तो आप क्या कहेंगे? गाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंपोज किया, पेंटिंग सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से कुछ ही सेकंड्स में तैयार, आर्टिकल एक AI असिस्टेंट ने लिखा, यकीन नहीं होता है ना? लेकिन यही आज की टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ नंबर्स गिनने, डेटा खंगालने या सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहा। आज AI म्यूजिक बना सकता है, इलस्ट्रेशंस बना सकता है, लोगो डिजाइन कर सकता है, कहानियां लिख सकता है और फिल्म बनाने में भी मदद कर सकता है। तो ये सब जानने के बाद एक सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या AI आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस की जगह ले सकता है, या क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो हमेशा सिर्फ इंसानों की ही रहेगी? बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज हम जानेंगे कि AI क्रिएटिव इकोनॉमी को कैसे बदल रहा है और क्रिएटर्स, बिजनेसेस और ऑडियंसेस के लिए इसका मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। और हाँ, अपने व्यूज, अपनी राय भी आप हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं 6622107 पर अपने नाम के साथ। तो चलिए आज के इस अमेजिंग टॉपिक को अनलॉक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिविटी इंसान की पहचान। देखो, सदियों से ना क्रिएटिविटी इंसान की सबसे बड़ी पहचान रही है, ये सब हम पहले से जानते हैं। गुफाओं की दीवारों पर बने पहले चित्रों से लेकर आज की बड़ी फिल्मों तक हर दौर में इंसान ने अपनी कहानी कहने का रास्ता ढूंढ ही लिया है। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग्स, नॉवेल्स, गाने और फिल्में सब इंसान की कल्पना, इमेजिनेशन है, उसके जज्बात और उसके तजुर्बे से जन्मी है। एक पेंटर अपना अलग अंदाज बनाने में बरसों लगा देता है, कभी एक रंग को सही जगह लगाने के लिए रातों तक जागता है। एक नॉवलिस्ट अपनी यादें और अपने ऑब्जर्वेशंस कहानियों में भर देता है, किसी का बचपन, किसी का शहर, किसी की जुदाई, सब कुछ पन्ने पर उतार देता है। और एक म्यूजिशियन अपनी जिंदगी के तजुर्बे को ऐसी धुन में ढाल देता है जो लाखों दिलों तक पहुँचती है। हमारी अपनी तहजीब को ही देख लीजिए, अरबी कैलीग्राफी हो, गजल हो या कहानी सुनाने की पुरानी परंपरा, इनमें सिर्फ हुनर नहीं होता, इनमें एक पूरी ट्रेडिशन सांस लेती है। पहले क्रिएटिव के लिए हुनर चाहिए था, वक्त चाहिए था और अक्सर बरसों का रियाज चाहिए था। फिर आया जेनरेटिव AI। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, AI का आना और दरवाजे खुल जाना। सोचिए कि आज एक स्टूडेंट बस इतना टाइप करता है, एक फ्यूचरिस्टिक अरबिक स्टाइल का मूवी पोस्टर बनाओ और कुछ ही सेकंड्स में पोस्टर आपके सामने होता है। एक मार्केटिंग मैनेजर AI असिस्टेंट से कहता है, मुझे 10 एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स चाहिए, और चाय का पहला घूंट खत्म होने से पहले लिस्ट तैयार हो जाती है। एक कॉन्टेंट क्रिएटर कुछ ही मिनट्स में सोशल मीडिया कैप्शन, वीडियो के कॉन्सेप्ट और विजुअल डिजाइन बना लेता है, जो काम पहले पूरी टीम और पूरे हफ्ते मांगता था। वो अब एक शाम में हो सकता है। इससे क्रिएटिव काम में आने की राह बहुत आसान हो गई है कि नहीं? जिनके पास प्रोफेशनल डिजाइन, राइटिंग या म्यूजिक प्रोडक्शन का हुनर नहीं था, वो भी अब AI टूल्स की मदद से अपने आइडियाज को शक्ल दे सकते हैं। एक छोटे से शहर का लड़का हो या घर से काम करती कोई लड़की, अब सबके पास एक जैसे क्रिएटिव टूल किट है। यस, ये सच में एक बहुत बड़ी बदलाव की बात है। इट्स अ ह्यूज रेवोल्यूशन। पर इन सब के बाद, इन सारी सहूलियतों के बाद, एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है कि क्या कंटेंट जनरेटिव करना और क्रिएटिव होना एक ही बात है? ये सवाल थोड़ा ना रुक कर सोचने लायक है। चलिए इसे एक एक करके अब हम समझते हैं। म्यूजिक जहां दिल बोलता है वहां बन जाती है, यानी कि सबसे पहले म्यूजिक की बात करते हैं। एक AI सिस्टम लाखों गानों को एनालाइज कर सकता है, वो रिदम, मेलोडी और स्ट्रक्चर के पैटर्न्स पहचान सकता है और उन्हीं पैटर्न्स के आधार पर बिल्कुल नया म्यूजिक कंपोज कर सकता है। और सच कहूं तो रिजल्ट शायद बहुत ही इम्प्रेसिव लगे। सुर सही, ताल सही, अरेंजमेंट भी साफ सुथरा। लेकिन एक चीज है जो AI के पास बिल्कुल नहीं है। AI ने कभी टूटे दिल को महसूस नहीं किया, उस दर्द को महसूस नहीं किया, उसने कभी कामयाबी का जश्न नहीं मनाया, उसे कभी घर की याद नहीं सताई और उसे कभी मोहब्बत नहीं हुई। यस, एक गाना जो आपको अचानक पुरानी यादों में ले जाता है या जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आती हैं, उसके पीछे अक्सर एक सच्ची कहानी होती है, किसी इंसान का जिया हुआ दर्द या जी हुई खुशी। इंसानी फनकार अपने तजुर्बों, अपने जज्बात और अपनी तहजीब के यादों से काम करते हैं और यही जिए हुए एहसास और सच्चाई को जन्म देते हैं जिसे ऑडियंस जुड़ जाती है। AI धुन बना सकता है, लेकिन उस धुन में कहानी कहां से लाएगा? मेरे हिसाब से यही फर्क है। म्यूजिक की तकनीक मशीन सीख सकती है, म्यूजिक का दिल वो अभी तक इंसान के पास ही है। तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो कि आर्टिस्ट की जगह आखिर कोई भी नहीं ले सकता। अब बात करते हैं राइटिंग और शब्दों की गहराई की, ठीक है? तो ये बात राइटिंग पर भी लागू होती है। AI आर्टिकल्स, स्क्रिप्ट्स और कहानियां बहुत तेजी से सीख लेता है, ठीक है? वो अलग अलग स्टाइल्स और स्ट्रक्चर्स की नकल भी कर सकता है। अब आप कहेंगे कि एक रोमांटिक स्टाइल में लिखो तो वो लिख देगा, एक सीरियस न्यूज टोन में लिखो तो वैसा भी कर देगा, लेकिन एक इंसानी राइटर अपनी तहजीब, अपनी शख्सियत और अपनी जाती तजुर्बे से जो गहराई लाता है ना, वो अलग ही होती है और उसकी बात अलग होती है। एक राइटर जब किसी बुजुर्ग की झुर्रियों के बारे में लिख रहा होता है तो शायद उसे अपने दादाजी का चेहरा याद आ जाता है या घर में जो भी ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, वो एक छोटी सी याद उसकी लिखाई को या उसके लेख को जिंदा कर देती है। नकल सीख ही जा सकती है, लेकिन अपनी जिंदगी की छाप नहीं छोड़ सकती। अब बात करेंगे कोलैबोरेटर, रिप्लेसमेंट नहीं। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि AI को क्रिएटिव रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि क्रिएटिव कोलैबोरेटर यानी साथी की तरह देखा जाना चाहिए। और दुनिया भर में ऐसा हो भी रहा है। ग्राफिक डिजाइनर्स शुरुआती कॉन्सेप्ट्स पहले से ज्यादा तेजी से बना सकते हैं। जहां पहले एक आइडिया का स्केच बनाने में घंटों लग जाते थे, अब कुछ ही मिनट्स में कई ऑप्शन सामने होते हैं। राइटर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिसर्च में AI की मदद ले रहे हैं, जैसे कोई दोस्त साथ बैठकर आइडियाज उछाल रहा है या यूं कहें आइडियाज के बारे में डिस्कशन कर रहा है। फिल्म मेकर्स एडिटिंग और विजुअल इफेक्ट्स के काम को तेज करने के लिए AI टूल्स अपना रहे हैं। और म्यूजिशियंस AI से बने नए साउंड्स और रिदम्स के साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ऐसी आवाजें, ऐसा म्यूजिकल अरेंजमेंट जो शायद उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यानी AI क्रिएटिविटी को खत्म नहीं कर रहा, वो क्रिएटर्स को दोहराने वाले कामों से बचा रहा है ताकि वो अपना वक्त असली क्रिएटिव फैसलों में लगा सके। कौन सा रंग चुनना है, कहानी का अंत क्या होना चाहिए, गाने में कौन सा जज्बात उभारना है, ये फैसले आज भी इंसान ही ले रहा है। अब बातें होंगी थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस की, लेकिन सच ये भी है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ विवाद भी जुड़े हैं, यानी कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स, कुछ कंट्रोवर्सीज, और उन्हें नजरअंदाज करना ठीक भी नहीं होगा, है कि नहीं? बहुत से आर्टिस्ट कॉपीराइट को लेकर चिंतित रहते हैं, बहुत वरिड रहते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या AI सिस्टम्स को मौजूदा आर्टवर्क, किताबों और म्यूजिक पर बिना इजाजत ट्रेन करना सही है, और उन आर्टिस्ट की मेहनत का क्या जिनका काम इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन गया है। क्रिएटिव प्रोफेशनल्स ये भी पूछ रहे हैं कि AI से बने कंटेंट का मालिक कौन है। क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, और जब मशीन कम खर्च में मिलता जुलता काम बना सकती है तो आर्टिस्ट को मुनासिब सैलरी या यूं कहें उनकी पेमेंट्स कैसे मिलेगी। ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है, ये इंसाफ के सवाल है, जस्टिस के लिए सवाल है। वेल, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी कंपनीज और क्रिएटिव संस्थाएं यानी कि इंस्टीट्यूशन सभी इस पर सक्रिय रूप से, सभी इस पर काफी चर्चाएं कर रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकाला जा सके। अभी हर सवाल का जवाब तय नहीं हुआ है, लेकिन एक बात साफ है, इस बहस में क्रिएटर्स की आवाज शामिल होनी चाहिए। अब बात करेंगे पार्टनरशिप का फ्यूचर, तो आगे क्या होगा। एक बात धीरे धीरे साफ हो रही है, आने वाला वक्त जो है वो शायद इंसान और मशीन के मुकाबले का नहीं होगा, वो एक पार्टनरशिप का हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जब कैमरा आया तो कहा जाता था कि ये जो पेंटर्स हैं अब उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, उनका कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन कैमरा ने पेंटर्स की जगह नहीं ली, पेंटिंग ने नए रास्ते खोजे। जब कंप्यूटर आया तो राइटर्स को डर लगने लगा कि, लेकिन कंप्यूटर ने राइटर्स की जगह नहीं ली, उसने लिखने को और भी ज्यादा आसान बना दिया। वैसे ही AI भी शायद एक और ताकतवर टूल बनाएगा जो इंसानी क्रिएटिविटी को खत्म नहीं बल्कि और उसे डिटेल्ड करेगी और डेवलप करेगी। आने वाले कल के सबसे कामयाब क्रिएटर्स शायद वो होंगे जो अपनी कल्पना या यूं कहें इमेजिनेशन, स्टोरी टेलिंग या फिर अपने ट्रेडिशन और जज्बात को AI की रफ्तार और एफिशिएंसी के साथ जोड़ सकेंगे। टेक्नोलॉजी कंटेंट बना सकती है, लेकिन मतलब आज भी इंसान ही देता है, और क्रिएटिव इकोनॉमी में मतलब की कीमत कभी कम नहीं होगी। अब आपसे एक सवाल है कि अगर AI आपके साथ बैठकर काम करे तो आप सबसे पहले उससे क्या बनवाना चाहेंगे? हमें जरूर बताइए मैसेज करके 6662107 पर, या फिर आप हमारे FM 107 के सोशल मीडिया चैनल्स पर भी जुड़ सकते हैं। अब बात करेंगे AI अराउंड द वर्ल्ड के बारे में, तो चलिए नजर डालते हैं कि दुनिया भर में जो AI की दुनिया है उसमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यूनेस्को जैसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें जहां क्रिएटिव इंडस्ट्रीज पर जेनरेटिव AI के असर का लगातार स्टडी किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है, और लेटेस्ट डिस्कशंस पर ये निकल कर आया कि जब AI इमेजेस, म्यूजिक और रिटन कंटेंट इतनी तेजी से बना सकता है तो आर्टिस्ट की सुरक्षा कैसे होगी, उसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी। इसका मकसद इनोवेशन को रोकना नहीं है, मकसद ये है कि क्रिएटर्स को सही पहचान और डिजिटल इकोनॉमी में मुनासिब मौके मिल सके। दूसरी बड़ी बात आ रही है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से, वहाँ के रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं कि लोग AI से बने म्यूजिक को इंसानों के बने म्यूजिक के मुकाबले कैसे देखते हैं। हाँ, काफी डिस्कशंस के बाद ये समझ में आया कि AI कन्विंसिंग म्यूजिक बना सकता है और क्रिएटिव प्रोसेस में मदद भी कर सकता है, लेकिन ऑडियंस आज भी इंसानी क्रिएटर्स की ओरिजिनलिटी और जज्बाती गहराइयों को ज्यादा अहमियत देती है। ये रिसर्च एक जरूरी बात हमें बताती है कि टेक्निकल क्वालिटी और इंसानी क्रिएटिविटी हमेशा एक जैसी चीज नहीं हो सकती। और आखिर में दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज और क्रिएटिव इंस्टीट्यूशंस अब आर्ट्स की शिक्षा, यूं कहें अब आर्ट्स की एजुकेशन के साथ AI ट्रेनिंग को भी जोड़ रही हैं। डिजाइन, मीडिया, म्यूजिक और कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट्स सीख रहे हैं कि AI को अपने क्रिएटिव वर्कफ्लो का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो गोल सिर्फ अपने हुनर को बढ़ाना नहीं है, लेकिन गोल है कि आने वाले क्रिएटर्स को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करना जहां क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी साथ चलती है, यानी कि एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक और एडवर्टाइजिंग से लेकर डिजिटल मीडिया तक AI अब कई इंडस्ट्रीज में एक अहम क्रिएटिव साथी बनते जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो मुझे बहुत पसंद है, एंड दैट इज टूल ऑफ द वीक, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो आज की स्पॉटलाइट है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। हाँ जी, तो बहुत से लोग कोपायलट को सिर्फ एक और चैटबॉट समझते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा मैं भी समझती थी इससे पहले कि मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन ये एक जबरदस्त क्रिएटिव असिस्टेंट भी बन सकता है। राइटर्स इससे आर्टिकल्स के नए आइडियाज निकाल सकते हैं, प्रेजेंटर शो के आउटलाइंस और इंटरव्यूज के सवाल बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स सोशल मीडिया के लिए नए कॉन्सेप्ट्स तैयार कर सकते हैं, और डिजाइन टीम्स कैंपेन्स के आइडियाज और क्रिएटिव डायरेक्शंस एक्सप्लोर कर सकती है। इसे असरदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, इसी चीज का हमें ख्याल रखना है। तो जब प्रॉम्प्टिंग की बात आती है तो अक्सर लोग लिखते हैं कि गिव मी आइडियाज फॉर अ कैंपेन, अब ये ट्राई कीजिए, ठीक है? मतलब सिर्फ एक लाइन की जगह अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो शायद काम और भी ज्यादा असरदार होगा, यानी कि रिजल्ट्स बड़े असरदार मिलेंगे. तो एक्ट एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, जनरेट 5 सोशल मीडिया कैंपेन आइडियाज प्रमोटिंग सस्टेनेबल लिविंग अमंग यंग एडल्ट्स इन कतर, यूज एन इंस्पायरिंग एंड पॉजिटिव टोन. और फिर फर्क देखिए कि हमने पहले सिर्फ एक लाइन लिखी थी और उसके बाद जब हमने प्रॉपर तरीके से एआई को उसका काम बताया और हमें क्या चाहिए वो बताया, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे. आप जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देंगे ना, रिजल्ट उतना ही बेहतर मिलेगा. अब चलिए मेरी प्रो प्रॉम्प्टिंग टिप पर आते हैं. तो आज की टिप है कि CAP फ्रेमवर्क, यानी कि कैप. सी से होता है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सिचुएशन को आपको समझाना है. ए से ऑडियंस, बताइए कि आप किसके लिए बना रहे हैं. एंड पी से पर्पस, बताइए कि आपको नतीजा क्या चाहिए. चलिए आपको एग्जांपल देते हैं. कॉन्टेक्स्ट ले लीजिए कि रेडियो शो अबाउट टेक्नोलॉजी, तो ऑडियंस क्या होगी? यंग एडल्ट्स इन कतर. पर्पस क्या होगा? जनरेट एंगेजिंग डिस्कशन क्वेश्चंस अबाउट एआई एंड क्रिएटिविटी. अब ये छोटा सा फ्रेमवर्क एआई से मिलने वाले कंटेंट की क्वालिटी को काफी बेहतर बना सकता है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए. और इसी के साथ अब हम पहुंचते हैं आज के AI Unlocked के इस एपिसोड के अंत में. तो आज हमने एक बहुत दिलचस्प सवाल पर थोड़ी सी चर्चा की, एंड दैट वाज कि क्या AI आर्टिस्ट, राइटर और म्यूजिशियंस की जगह ले सकता है. जवाब शायद हाँ या ना से कहीं ज्यादा गहरा है. AI पहले से कहीं तेजी से कंटेंट बना सकता है, वो क्रिएटिव वर्कफ्लोस में मदद भी कर सकता है, नए आइडियाज दे सकता है और क्रिएटिव टूल्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है. लेकिन क्रिएटिविटी सिर्फ कंटेंट बनाने का नाम नहीं है, ये इंसानी तजुर्बे, जज्बात, इमेजिनेशंस और कहानी कहने की कला या आर्ट का नाम है. और ये तकनीकें जो है ना, आज भी पूरी तरह से हमारे, यानी कि हम इंसानों के पास हैं. शायद क्रिएटिव इकोनॉमी का फ्यूचर ये नहीं है कि इंसान AI से मुकाबला करे, शायद ये है कि इंसान AI के साथ मिलकर वही रचे, वही क्रिएट करे जो दोनों अकेले कभी सोच ही नहीं सकते थे. वेल, अगले हफ्ते AI अनलॉक्ड में कुछ और भी कमाल की बातें होंगी जिसका जिक्र हम करेंगे, तो आप हमें सुनना ना भूलें, सेम टाइम सेम प्लेस. और हाँ, इस दौरान अगर आपको हमसे कुछ कहना है, देन 666-22-107 ये हमारा नंबर है, इसके जरिए आप हमसे बातें, अपने दिल की बातें, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FM 107 से जुड़ सकते हैं. और अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत, अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते. तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी.
0: RJA फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी. आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@

0: qmc.qa.
1: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थियोरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में. सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मैं हूं दोहा वाले कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम टू जूनियर साइंटिस्ट. अब मैं वैसे तो बात करनी चाहता हूँ वेलकम टू जूनियर साइंटिस्ट बच्चों, क्योंकि बच्चे आजकल बच्चे नहीं है, हर बच्चे के अंदर एक साइंटिस्ट है भाई साहब. दुनिया भर में वो जहाँ पूरे जाम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. ये खास करके शो है जूनियर साइंटिस्ट के लिए ही, पर हम बड़ों के लिए भी, क्योंकि हमें ही उनके साथ रह के एक्सपेरिमेंट करना है एक सेफ एनवायरनमेंट में. एंड ये शो का मकसद ही है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में रहकर उन्हें ये बता सकें कि साइंस हर जगह है हमारे इर्द गिर्द, और हो सकता है कि आपके घर में उस जूनियर में एक साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी पैदा हो और वो आगे जाके साइंस में कुछ करना चाहे. यू नेवर नो, ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं. तो हम हर रोज इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं शो में, हर हफ्ते इनफैक्ट. एंड उसके बाद हमारी कोशिश रहती है कि इससे कुछ नया सीखने को मिल जाए. ज्ञान व्यान कुछ नहीं, ईजी एक्सपेरिमेंट है, और मैं आपको समझाऊंगा भी, ऐसे आपको लगेगा हाँ भाई अपना कोई समझा रहा है, मेरा बड़ा भाई है. तो वैसे ही कोशिश है हमारी. तो आज हम जानेंगे कि जो आइस क्यूब है ये हमारे जैसे क्यों है. मैं बताता हूँ क्या कहने का मतलब है. आइस क्यूब बिल्कुल हमारे जैसी है. हमें एक बढ़िया कंपनी चाहिए होती है तभी हम पिघलते हैं भाई. हर किसी के सामने हमारे हम नहीं पिघल सकते. एक एक अच्छा दोस्त हो तो आप उसके साथ बैठ के घंटों पर बातें कर सकते हैं, और बात ना भी करें तो चाय पी के आपके दिल को आराम आ जाता है, उसे पिघलना कहते हैं. आइस के साथ भी ऐसा ही है. आइस हर किसी के साथ ऐसा मेल्ट नहीं होती, और आज का एक्सपेरिमेंट यही बताएगा कि सबसे ज्यादा तेजी से आइस को क्या मेल्ट कर सकता है. क्या सॉल्ट में वो बात है कि आइस को पूरी तरह से मेल्ट कर सके, या वो बात शुगर में है, या गर्म गुनगुने पानी में है? कौन ज्यादा आइस को पसंद करता है, या आइस उसको पसंद करती है? दैट इज द क्वेश्चन. तो आज इसी बारे में बात करेंगे. तो आइस क्या है बेसिकली? सबसे पहला फंडा तो ये, आइस इज नथिंग बट फ्रोजन वाटर, सॉलिड और बहुत ठंडा. अब आइस को मेल्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, जैसे आपकी दोस्ती. अगर आपके अंदर थोड़ी जान डालनी है, आपका लेजीनेस तोड़ना है, तो कोई एक मैसेज चाहिए कि भाई मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, खेलने चले क्या, चाय पीने चले क्या? एंड दैट एड्स एन एनर्जी. बस आइस को वही एनर्जी चाहिए टू मेल्ट, और ये एनर्जी आती है हीट से और फ्रॉम सब्सटेंसेस जो कि आइस के मेल्टिंग पॉइंट को चेंज करते हैं. और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं. वी विल एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स के डिफरेंट मटेरियल इफेक्ट्स करते हैं उस रफ्तार को जो आइस को मेल्ट करता है. इस बारे में बात शुरू करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे. जूनियर साइंटिस्ट शो का नाम है, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे. आइस क्यूब के साथ अगर आप भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारी बातें करने वाला हूँ. पर जाने से पहले ना, एक ब्रेक पे जाने से पहले मैं जरा बता दूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे. इसमें हमें एक आइस क्यूब चाहिए, फ्रोजन वाटर बेसिकली. जैसे अब आइस क्यूब शेप क्या बताऊँ मैं आपके सामने, क्यूब देख लो यार बढ़िया से. आजकल तो बहुत सारे केसेस आ चुके हैं जिसमें अलग अलग साइजेस होते हैं, गोल गोल भी आती है. सॉल्ट चाहिए आपको ताकि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको लोअर किया जा सके. शुगर चाहिए, एक स्वीट सब्सटेंस ताकि कंपैरिजन हो सके कि सॉल्ट के मुकाबले क्या हिम्मत है, हिमाकत कर सकता है कि शुगर. और गर्म पानी चाहिए, एक वार्म एनर्जी फॉर मेल्टिंग. और 3 प्लेट या कंटेनर सेपरेट अलग अलग टेस्टिंग के लिए. ये सब तैयारी के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. मगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट आपके जहन में, या आप बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंट्स किया करते हैं तो बताइएगा 666-22-107 पर, 666-22-107 पर. लौट के आता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे. आई फील लाइक आई एम इन अ केमिस्ट्री लैब राइट नाउ. ये फील जाननी चाहिए. स्टे ट्यून्ड है.

वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड दिस इज जूनियर साइंटिस्ट और मैं जी दुहा वाला कबीर जूनियर। तो आज हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आज के शो में कि आइस क्यूब कैसे मेल्ट हो सकते हैं, उसकी रफ्तार को कौन कौन से मटेरियल से, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सीधा सीधा एग्जांपल दिया कि आइस की क्यूब को यूँ समझिए कि वो आप हैं और बाकी सब्सटेंसेस वो एक किस्म की दोस्ती है। किसी से दोस्ती गहरी होती है, किसी से बहुत कम होती है, लेकिन बस होती है, और किसी से बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है। आइस के साथ भी ऐसे ही है। जैसे आपके साथ है ना, आपको हर कोई पिघला नहीं सकता भाई, आपका बेस्ट फ्रेंड ही पिघला सके है, वैसी आइस के साथ है कि आइस को पिघलाने के लिए बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, लेकिन आज हम उन्हीं का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा, आपको आइस क्यूब चाहिए, सॉल्ट चाहिए टू लोअर द आइस इज मेल्टिंग पॉइंट, उसके अलावा शुगर चाहिए, एक स्वीट सब्सटेंस ताकि कंपैरिजन हो सके, हॉट वाटर चाहिए ताकि एक वार्म एनर्जी पैदा हो सके, एंड 3 प्लेट या कंटेनर्स चाहिए आपको सेपरेट सेपरेट टेस्टिंग के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम 3 कॉमन चीज़ें यूज कर रहे हैं, हॉट वाटर, सॉल्ट, शुगर। हर कोई अलग अलग रिश्ता रखता है आइस से, इस आइस के क्यूब से। सॉल्ट की खासियत यह है कि वो आइस को मेल्ट कर सकता है बहुत तेजी से, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट वो गिरा सकता है। हाँ, तो सॉल्ट जो है आपका बेस्टेस्ट फ्रेंड हो गया भाई साहब, आपका बेस्ट फ्रेंड है आइस। और शुगर की बात करें तो शुगर भी इंटरेक्ट करता है आइस से। शुगर वैसा है जैसे ऑफिस के कुछ होते हैं, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, मगर वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं कर पाते। शुगर वैसे ही है, ये इंटरेक्ट करता है आइस के साथ मगर डिफरेंटली। पर जैसे हॉट वाटर ऐड कर दिया जाए, हीट एनर्जी पैदा होती है, तो वो इसको मेल्ट कर सकती है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं, इजी है। तो आइस जो है मेल्ट कैसे हो रही है फास्टर, क्यों ऐसा हो रहा है? आइस इसलिए फास्ट मेल्ट होती है क्योंकि वो एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू हो जाती है। जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उसको, उतनी ज्यादा वो जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगी। अब गर्म पानी जो है वो यही कर रहा है, वो डायरेक्टली एनर्जी दे रहा है थ्रू हीट। सॉल्ट जो है वो जब मिलता है आइस से तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल में हलचल पैदा करता है। यानी ये समझ लीजिए कि आपकी दोस्ती जो है अगर बहुत गहरी है तो आपके दिल में घुड़क होती है, भाई चलो भाई चाय पीने चलते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ हम निकल जाते हैं या खेलने निकल जाते हैं जूनियर्स के लिए। और इसलिए आइस का मॉलिक्यूल जब सॉल्ट से मिलता है तो उसमें उथल पुथल हो जाती है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, टेम्परेचर जो है वो गिरने लगता है। इसके बाद बहुत अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। शुगर ऑन दी अदर हैंड, शुगर के साथ कहानी अलग है, ये लोअर पॉइंट पे नहीं ले जाता मेल्टिंग पॉइंट को, सॉल्ट के मुकाबले थोड़ा सा हल्का हाथ रखता है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि एक्सपेरिमेंट करें तो बहुत ज़्यादा आसान है, मगर जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे जूनियर्स के साथ, और जूनियर्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो अपने आप से सवाल पूछिएगा कि कौन सी चीज़ है जो आइस को जल्दी से मेल्ट कर सकती है, तो आप उसके हिसाब से फिर एक्सपेरिमेंट करें और बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करें। इट इज़ एवरीवेयर। सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, कंपेयर कीजिए कौन सा क्या, और उसके बाद डिस्कशन जारी रखें कि कौन सी चीज जल्दी से मेल्ट कर पाती है। साइंस इज ऑल अबाउट प्रेडिक्टिंग। आपने प्रेडिक्ट किया, उसके बाद आपने देखा, ऑब्जर्वेशन आया आपका, और फिर आपने कंपेयर करना शुरू किया, फिर आपकी थ्योरी आई और साथ साथ प्रैक्टिकल तो चल ही रहा है। तो अलग अलग चीजों की बात हो गई। एनालॉजी के ऊपर बात कर लेते हैं। एनालॉजी बड़ी सिंपल है। आइस को आप एक तरीके से ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आइस जो है

वो कैसे बताऊं, हाँ ग्रुप ऑफ डांसर समझ लीजिए, एक डांसिंग ग्रुप है पूरा का पूरा, और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और बढ़िया डांस चल रहा है, लेकिन हॉट वाटर जैसे उसके टच में आएगा, एनर्जी जब आएगी तो वो उन सबको अलग कर देगा, उसकी जो वॉर्म्थ है विल मेक देम रिलीज द होल्ड, और वो होल्ड जैसे ही कमजोर पड़ेगा वैसे की वैसी हाइट वो वैसे वैसी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो गिर जाएगा। सॉल्ट जो है इज लाइक विस्पर्स टू द डांसर्स, जैसे वो कानों में कह रही हो इट्स ओके टू लेट गो, लोअर द टेम्परेचर, कोई नहीं है, चिल एकदम, डोंट डू, जस्ट चिल, वही सॉल्ट करता है आइस क्यूब के साथ, एज इफ लाइक कान में बोल रहा हो। दैट्स व्हाई कुछ आइस जो होती है वो मेल्ट ज्यादा करती है बाकियों के मुकाबले, ये भी एक चीज है। सॉल्ट लोअर कर देता है फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट को, जिसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी कहा जाता है, और हॉट वाटर सीधा सीधा डायरेक्टली, उसने कोई बातचीत नहीं करनी, उसने सीधा एनर्जी ऐड कर देनी है, और शुगर का इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है आइस की मेल्टिंग में, क्योंकि वो इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है सॉल्ट की आइस। सो दैट्स हाउ इट इज, कहानी के जरिए बता रहा हूं आपको, आई होप इट हेल्प्स। सो सॉल्ट ने टच किया आइस, सॉल्यूशन पैदा हुआ, उसने मेल्ट किया नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर्स को, जैसे प्रोसेस मैंने बताया आपको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हॉट वाटर आइस पे जब गिरा हीट निकली, एनर्जी बनी और हो गया जी काम, आइस को टाटा बाय बाय हो गया। शुगर जो है वो थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, मगर वो मेल्टिंग पॉइंट में वैसा वाला असर नहीं लेके आता जैसे बाकी के प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। आप सिंपल सिंपल स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कुछ देर में, लेकिन जूनियर साइंटिस्ट को आप सुनते रहिए, और मैं अभी तो बच्चा ही हूँ, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे जाने का नहीं, स्टे ट्यून्ड।

अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड आज जूनियर साइंटिस्ट से हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आइस क्यूब्स वो अलग अलग सब्सटेंस के साथ मिलकर अलग अलग रिएक्शन देता है। तो मकसद ये जानना कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कब आता है, कौन जल्दी पिघला सकता है इसको। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए, जितने भी जूनियर्स मुझे सुन रहे हैं, कौन सा वो आपका दोस्त है जो आपकी मिजाज को पूरी तरह से बदल सकता है। बस वैसे ही आइस क्यूब है, उसके मिजाज को बदलने के लिए अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, लेकिन हम आज तीन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ।

0: सबसे पहले आपको तीन आइस क्यूब लेनी है और तीनों अलग अलग प्लेट्स में रखना है, तीनों को। एक के ऊपर आपने छिड़क देना है थोड़ा सा नमक, एक के ऊपर छिड़कना है आपको चीनी मतलब शुगर, और तीसरे पे आपको सीधा डाल देना जी गर्म पानी। अब आप देखिए टाइमर सेट कर दीजिए कि कौन सी वाली आइस क्यूब सबसे पहले मेल्ट होती है दूसरे या तीसरे के मुकाबले। जब आप उसे बहुत गौर से देखेंगे डिफरेंस सीधा आपके सामने होगा। आइस क्यूब मेल्ट करती है जब वो सॉल्ट से मिलती है, शुगर से मिलती है, हॉट वाटर से, लेकिन टाइमिंग सबकी अलग अलग है। अलग अलग स्पीड के साथ हमने जाना कि आइस किस तरीके से मेल्ट होती है, डिपेंड करता है कि आप उसको किससे मिलवा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे ही फन एक्सपेरिमेंट्स के साथ अगले बार मिलेंगे। लेकिन ये जो एनालॉजी मैंने खींची कि आप आइस क्यूब हैं तो ऐसे से याद करना मुश्किल है। और अगर एक्सपेरिमेंट घर पे करें तो प्लीज प्लीज बताइएगा, 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। डू लेट मी नो इफ यू आर अबाउट टू ट्राई दिस। एंड ऑल्दो इतना कुछ सेफ एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, बट प्लीज बी सेफ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स हैं एंड ये बोलने में भी फैंसी लगता है। प्लीज डू इट इन अ सेफ एनवायरनमेंट। जूनियर साइंटिस्ट के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। साइंस इज एवरीवेयर और आजकल तो कबीर भी इज एवरीवेयर। बस अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मास्सलाम।
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर

दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए।

0: फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामने किराम, कभी ज़िंदगी में हालात हमारे मुताबिक नहीं होते। किसी काम का नतीजा मालूम नहीं, किसी सफ़र पर निकलना है, किसी नए मरहले का आगाज़ है, किसी जवाब का इंतज़ार है, दिल में सवाल होता है कि आगे क्या होगा। ऐसे में इंसान दो रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार कर सकता है। एक रास्ता है हर चीज़ से बुरा मतलब निकालना, सुबह ये हो गया, आज का दिन अच्छा नहीं होगा, रास्ते में ये चीज़ नज़र आ गई, शायद कोई मुसीबत आने वाली है। और दूसरा रास्ता है असबाब इख्तियार करना, अल्लाह पर भरोसा करना और दिल में खैर की उम्मीद रखना कि मेरा रब खैर पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही मुसबत रवैया पसंद था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी फाल पसंद थी और आप बदशगुनी को नापसंद फरमाते थे। अब यहाँ दो रवैये हमारे सामने हैं, अल-फ़अलुल हसन अच्छी फाल खैर की उम्मीद, और अत्तियारा यानी बदशगुनी, एक दिल को अल्लाह की तरफ उम्मीद के साथ आगे बढ़ाता है और दूसरा इंसान को बेबुनियाद खौफ और वहम में कैद कर देता है। अब नेक फाल क्या है? नेक फाल का मतलब ये नहीं कि इंसान हर इत्तेफाक को मुस्तकबिल की यकीनी खबर समझने लगे। मसलन किसी काम के लिए निकलते हुए कोई अच्छा लफ्ज़ सुन लिया तो उसे अच्छा लगा, दिल में उम्मीद पैदा हुई, अल्लाह से खैर की तवक्को बढ़ी, ये अच्छी फाल है। लेकिन वो ये अकीदा नहीं बनाता कि ये लफ्ज़ सुन लिया है अब लाजमन यही होगा। बात ऐसी नहीं, मुस्तकबिल तो अल्लाह के हाथ में है। कोई लफ्ज़ मुस्तकबिल नहीं बनाता, कोई नाम तकदीर नहीं बदलता, कोई इत्तेफाक गैब की यकीनी खबर नहीं देता। अच्छी फाल सिर्फ दिल में खैर की उम्मीद पैदा करती है और दिल को अल्लाह से जोड़ती है। अब बदशगुनी क्या करती है? बदशगुनी उसके बरक्स है। इंसान ऐसी चीज़ों से नताइज निकालने लगता है जिन्हें अल्लाह ने नताइज का सबब ही नहीं बनाया। कोई ख़ास परिंदा देखा तो कहने लगा कुछ बुरा होगा, किसी ख़ास आवाज़ को सुना तो कहने लगा कि सफ़र ठीक नहीं होगा, किसी ख़ास दिन को मनहूस समझ लिया, किसी आदत को बदकिस्मती से जोड़ दिया, किसी शख्स के आने को नुकसान की अलामत समझ दिया। फिर उन्हीं वहमों की बुनियाद पर इंसान अपने फैसले बदलने लगता है। असबाब इख्तियार करें, दिल अल्लाह से जोड़ें और नतीजा उसी के हवाले कर दें। अजीज सामिने किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लफ्ज़ पसंद था क्योंकि कभी एक खूबसूरत लफ्ज़ थके हुए दिल में उम्मीद पैदा कर देता है। और आजकल बच्चों की तरबियत में भी इस सुन्नत की बड़ी ज़रूरत है कि अगर बच्चा हर छोटी चीज़ के बारे में सुनता रहे कि मनहूस है, ऐसा हुआ तो बुरा होगा, उस दिन ये काम नहीं करना, उस चीज़ से बदकिस्मती आती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन वहमों का शिकार हो सकता है। उसे इसके बजाय सिखाइए कि खैर और शर अल्लाह के हाथ में है, दुआ करो, एहतियात करो, सही असबाब इख्तियार करो। मोमिन वहम के साय में नहीं जीता, वो तवक्कुल के साय में जीता है। इसी तरह नाकामी को बदशगुनी न बनाइए, कभी एक बुरा तजुर्बा भी इंसान की पूरी सोच बदल देता है। एक कारोबार नाकाम हुआ तो कहने लगे कि कारोबार मेरे लिए

ये नहीं, एक इम्तिहान में नाकामी हुई तो कहते कि मेरी किस्मत ही खराब है, एक रिश्ता कामयाब ना हुआ तो ये कह बैठे कि मेरे नसीब में खुशी नहीं। याद रखिए कि एक वाकया है, ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं। मोमिन मुश्किल को देखता है मगर मुश्किल से अपनी पूरी तकदीर का फैसला नहीं करता। अल्लाह ताला हमें वह हम बदशगुनी और बेबुनियाद खौफ से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के इस हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफ जमान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

पाकिस्तान के एक ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने अपनी तेज तरीन बॉलिंग और एग्रेसिव स्टाइल से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। वासिम अकरम की बात नहीं कर रहा हूँ, ना इमरान खान की बात कर रहा हूँ, ना सरफराज नवाज के बारे में बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट के साथ, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। तो आपने कुछ गेस किया, चलिए मैं ही बता देता हूँ, बात हो रही है सिकंदर वक्त के बारे में। सिकंदर वक्त का पूरा नाम सिकंदर वक्त जान है। वो 29 अगस्त 1957 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के उन बॉलर्स में होता है जो 1970s के आखिर और 1980s के दौर में नेशनल टीम का हिस्सा बने। सिकंदर वक्त राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर थे और उनकी बॉलिंग में पेस के साथ स्विंग भी देखने को मिलती थी। सिकंदर ने पाकिस्तान के लिए 26 टेस्ट मैचेस खेले और इन मैचेस में उन्होंने 66 विकेट हासिल किए। उनका टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 4 विकेट्स फॉर 32 रन्स रही। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 27 ओडिया यानी वन डे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले और ओडिया क्रिकेट में 22 विकेट्स अपने नाम किए। दोस्तों, उनका इंटरनेशनल करियर एक ऐसे वक्त में था जब पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स की एक ऐसी मजबूत ट्रेडिशन डेवलप हो रही थी। इमरान खान, सरफराज नवाज और बाद में वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे बॉलर्स ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग आइडेंटिटी को दुनिया भर में मशहूर किया। सिकंदर भी इसी जनरेशन का हिस्सा थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अहम मैचेस में बॉलिंग अटैक को सपोर्ट किया। अगर उनकी जर्नी के बारे में बात करूं तो शुरुआत होती है 1982 का इंग्लैंड टूर से। क्रिकेट में उनका डेब्यू तो पहले ही हो गया था। इनफैक्ट 1979 का जो इंडिया का दौरा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसमें सिकंदर वक्त वाज वन ऑफ द मेन बॉलर्स। उनका जर्नी का एक खास पहलू उनका 1982 का इंग्लैंड टूर था। पाकिस्तान की टीम उस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही थी और सिकंदर वक्त ने भी बॉलिंग अटैक में अपना किरदार बाखूबी निभाया। उनकी एबिलिटी थी कि वो बल्लेबाज को पेस और मूवमेंट के जरिए दबाव में ला सकते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करो तो वहां पर भी सिकंदर वक्त ने अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। उनका डोमेस्टिक एक्सपीरियंस बाद में क्रिकेट एनालिसिस और कॉमेंट्री में भी काम आया। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सिकंदर वक्त ने क्रिकेट से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। वो टेलीविजन पर क्रिकेट एनालिस्ट और कमेंटेटर के तौर पर नजर आए और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अपनी राय देते रहे। यानी उनका एक्सपीरियंस खास तौर पर पाकिस्तान के तेज तरीन जो बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स और नेशनल टीम की परफॉर्मेंसेस पर उनका एक बड़ा अहम रोल रहा है टू डेवलप इट एज एन एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट कमेंटेटर। सिकंदर वक्त का करियर हमें दोस्तों ये बताता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं, हाँ, ही नेवर प्लेड दैट बिग एनफ लाइक वसीम अकरम और वकार यूनुस, बट अगर उनकी जो प्रोफिशिएंसी की बात करूँ, उनकी जो कैपेबिलिटी एबिलिटी एज अ फास्ट बॉलर, दैट वाज रियली आउटस्टैंडिंग। और इंडिया में तो काफ़ी वो सक्सेसफुल रहे 1979 सीरीज में। तो दोस्तों, क्रिकेट में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं बल्कि एक खिलाड़ी का अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन भी अहम होता है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक ऐसे मुश्किल और कॉम्पिटिटिव दौर में फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली और नेशनल टीम को अपनी सर्विसेज दी, जहां से ये हम आसानी से कह सकते हैं कि ही वाज वन ऑफ द टॉप स्टार्स इन द पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप 1970s के आखिर और 1980s के कुछ इन द बिगिनिंग। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिकंदर वक्त की, पाकिस्तान के उन फास्ट मीडियम बॉलर्स में से एक जिन्होंने अपने दौर में नेशनल टीम की बॉलिंग को मजबूत बनाने में अपना हिस्सा डाला। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए, मैं हर बार आपको वेबसाइट्स टूल्स के बारे में बताते रहता हूँ और इस वजह से मेरी भी जानकारी बढ़ती रहती है, नॉलेज में इजाफा होता रहता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप भी कुछ अगर ढूंढते हैं, कुछ इत्तफाकन आपके सामने आ जाता है तो क्यों ना आप मुझे बता दें, मैं भी इस मामले में मदद चाहूंगा। मेरे लिए भी फायदा है, आपके लिए फायदा है। बट एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद द अपडेट। सो तीन वेबसाइट्स मैं आपको आज देने वाला हूँ, तीनों बेहद बेहद बेहद काम की हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर वन ऑन द लिस्ट, इस वेबसाइट का नाम है poe.com। पो ही बोलेंगे इसको, poe.com, poe.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने मौजूद होंगे 400 AI टूल्स, 400 एंड कमाल की बात यह है कि इस पे बहुत सारे AI टूल्स ऐसे जिनके बारे में ना मुझे पता था और आई एम प्रीटी श्योर बाकी जनता को भी नहीं पता होगा, और वो वाले टूल्स ऐसे हैं जो बाकी बड़े बड़े AI टूल्स जो पैसे मांगते हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं और या तो सस्ते हैं या बिल्कुल फ्री हैं। ये आपके काम आएगी वेबसाइट, सच्ची बता रहा हूँ। अगर आप बैठे हैं और सोच रहे हैं कौन सा टूल किस AI पे जाऊं, इसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्या करूं, तो यहाँ पे आप जाइए। एवरी टूल हैज अ डिस्क्रिप्शन और हर टूल के बारे में आपको पता भी लगेगा एंड यू कैन चूज आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। सो poe.com, इस पे जाइएगा, मामला हो जाएगा आसान। बढ़ते हैं आगे। अगली वेबसाइट का नाम है perchance.org, PER, पर chance, chance, perchance.org। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ये बड़ी कमाल की वेबसाइट है, ये आपको काफी कुछ देगी, जैसे कि आपको मदद करेगी इमेज क्रिएशन में, नंबर वन चीज, क्योंकि अनलिमिटेड इमेज क्रिएशन जब आपको मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कोई और वेबसाइट इतना अच्छे से दे पाएगी आपको। क्वालिटी 100% की जगह 98% अगर आपको चलती है, जो कि चलेगी ब्रिटिश और, तो ये आपके लिए बेहद कमाल की वेबसाइट है और ये जनरेट भी थोड़ा जल्दी कर देती है। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, आई थिंक इट विल सूट अ लॉट ऑफ पीपल जिनका काम रहता है इमेज जनरेशन का, तो आपकी बहुत काम आ सकती है। perchance.org, जरूर जरूर जरूर जरूर ट्राई करें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगली जो वेबसाइट है इसका नाम, इसका जो नाम है वो इसका काम है बेसिकली, नाम नोट कर लीजिएगा, promptcowboy.ai, prompt promptcowboy, बिना स्पेस ये cowboy, cowboy.ai, promptcowboy.ai। यहाँ पे आप जाइएगा, ये क्या करेगा, आपको प्रॉम्प्ट लिखने में मदद करेगा। आधी दुनिया को ऐसा लगता है कि प्रॉम्प्ट लिखना तो बेहद आसान है, इसमें क्या है, मैं लिख दूंगा रिमूव माय बियर्ड, नहीं ऐसा नहीं होता ना, तो क्योंकि यू हैव टू राइट इन अ सर्टेन वे। आपका प्रॉम्प्ट जितना प्रिसाइज होगा, जितना स्पेसिफिकली आप किसी चीज को बताएंगे, उतना आपका फायदा है। कई मरतबा दिमाग में होता बहुत कुछ है पर वो उतर नहीं पाता प्रॉम्प्ट्स में, बट ये जो वेबसाइट है ये आपकी मदद करेगी। फॉर एग्जांपल, इसको आपने कहा कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूं मैं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे मैं प्रॉम्प्ट में डालूं, तो ये आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे ऐसे आएगा और ये लो जी प्रॉम्प्ट, तो आपको प्रॉम्प्ट भी बना के दे देगा, एन एडवांस्ड वर्जन देगा जो आपके बहुत काम आएगा। ब्यूटीफुली डन एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वेबसाइट। ओके, अब बढ़ते हैं जरा एक बहुत जरूरी खबर की तरफ। खबर जो है वो गेमिंग की दुनिया से है, अब रिलीज हुआ है जब से कंट्रोल रेजोनेंट पब्लिक

0: में हलचल मच चुकी है और इस गेम ने बहुत तो के सर घुमा दिए। एक्चुअली क्या कुछ लोग कह रहे हैं, अरे ये लोग तो क्या बना दिया इन्होंने, ऐसा सोचा भी नहीं था। कुछ लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, पर मैक्सिमम लोग तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि और भी बहुत सारे गेम्स हम डेवलप कर रहे हैं, साथ साथ जो इंडी गेम्स भी हैं उन डेवलपर्स को भी हम चांस देंगे। जो एक दो लोग मिलके बना रहे हैं, सिंगल हैंडेडली लोग तैयार कर रहे हैं ब्यूटीफुली डन, तो उनको भी चांस दिया जाएगा। गेमिंग इंडस्ट्री की एक और बड़ी खबर है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था प्लेस्टेशन की तरफ से, वैसी एक्सबॉक्स की तरफ से है। एक्सबॉक्स ने जब से हिडेओ कोजिमा को, मतलब गेमिंग इंडस्ट्री के क्रिस्टोफर नोलन को हायर किया है, हलचल मची हुई है। उनका एक गेम ओडी, जो प्राइमरीली वन ऑफ द बिगेस्ट हॉरर फ्लिक्स माना जा रहा है, गेम माना जा रहा है, आने वाला है, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट में है। एक सरप्राइज जो लोग बता नहीं रहे, सरप्राइज करके टीज कर रहे हैं। लेट्स सी, क्या ही सही टाइम है एक्सबॉक्स ले लेने का, खर्चा कराओगे यार। दीज वर दी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में, जल्द से देसी टेक अपडेट। टेक अपडेट 107
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम, नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं और आगाह करता हूं कि कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं। वेल, आज जिस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये स्पोर्ट्स से मुताल्लिक है, यानी कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो स्पोर्ट्स में यू नो एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी खेल को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने फिटनेस को बेहतर करना चाहते हैं, और ये स्कैम है स्पोर्ट्स एडमिशन स्कैम। कैसे काम करता है ये स्कैम, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एडमिशन स्कैम एक ऐसी धोखेबाजी है जो स्टूडेंट्स, एथलीट्स और उनकी फैमिलीज के ख्वाबों का गलत फायदा उठाती है। इस फ्रॉड में स्कैमर्स मशहूर यूनिवर्सिटीज में गारंटीड स्पोर्ट्स एडमिशन या एलीट एथलेटिक स्कॉलरशिप्स दिलवाने का झूठा वादा करते हैं। फ्रॉड करने वाले लोग खुद को बड़े टैलेंट स्काउट्स, करप्ट स्पोर्ट्स एजेंट या यूनिवर्सिटी के वेल कनेक्टेड एथलेटिक रिक्रूटर्स दिखाते हैं। वो बिल्कुल असली दिखने वाले नकली एथलेटिक डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी तैयार करते हैं ताकि लोगों को यकीन आ जाए। फिर वो विक्टिम से प्रोफाइल इवैल्यूएशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग या फास्ट ट्रैक्ड कंप्लायंस ट्रैकिंग के नाम पर बहुत बड़ी अपफ्रंट फीस मांगते हैं। जैसे ही फैमिली ये भारी रकम अदा करती है, ये फेक रिक्रूटर्स आपसे कांटेक्ट करने वाले जितने भी नंबर हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, नंबर गायब हो जाता है, आप इन्हें ट्रैक नहीं कर सकते, जिससे स्टूडेंट्स की एकेडमिक फ्यूचर और एथलेटिक ड्रीम्स पूरी तरह तबाह हो जाती हैं और फैमिली को बहुत बड़ा माली नुकसान भी होता है। एक जमाने में, मुझे पता नहीं कई लोगों को पता है या नहीं है, एक तरह का स्कैम चलता था जब असल में क्रिकेट के ट्रायल्स होते थे, किसी एक फेमस टूर्नामेंट के बारे में बात होती थी, उसको लेकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल्स होते थे, बाकायदा प्लेयर्स आते थे, वो रजिस्ट्रेशन फीस दिया करते थे, वहां पर सेलेक्टर्स बैठते थे, बैटिंग और बॉलिंग और फुटबॉल के जो ट्रायल्स हैं या फिर किसी भी तरह के जो ट्रायल्स हैं, अलग मुल्क के बारे में बात कर रहा हूँ, वहां पर ये ट्रायल्स होते थे और उसके बाद वो टूर्नामेंट कभी होता ही नहीं था, तो रजिस्ट्रेशन फीस लेकर वो भाग गए। उसके अलावा जो भी वहां पर आपको यू नो सुविधाएं दी गई हैं, जो प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट होती हैं उनके लिए फिर पैसे होते थे, पानी के लिए चार्ज किया जाता था आपको, है ना, मेडिकल के लिए चार्ज किया जाता था, तो इन सब चीजों के लिए वो आपको चार्ज करते थे और फिर उसके बाद टूर्नामेंट कभी होता ही नहीं था, सिलेक्शन कभी किसी प्लेयर का होता ही नहीं था। इस तरह के स्कैम्स भी होते रहे हैं और इस तरह के स्कैम से बचने के कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनको आपको गौर से सुनना चाहिए दोस्तों। इनके कुछ तीन आसान तरीके हैं जिससे आप इस स्पोर्ट्स के एडमिशन वाले स्कैम से बच सकते हैं। ये है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी चैनल से राब्ता करना। सबसे पहला, किसी भी स्कॉलरशिप या एडमिशन ऑफर को वेरीफाई करने के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एथलेटिक डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कॉल या ईमेल करें। किसी थर्ड पार्टी एजेंट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। उसके अलावा गारंटीड ऑफर से होशियार रहें। लेजिट स्पोर्ट्स एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स हमेशा एक सख्त और ऑफिशियल मेरिट प्रोसेस के जरिए मिलती है। अगर कोई शख्स पैसे के बदले गारंटीड सीट या स्कॉलरशिप का वादा करे तो समझ जाएं ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। उसके अलावा तीसरा तरीका है इस तरह के स्कैम से बचने का, वो है अपफ्रंट फीस देने से बचना। यूनिवर्सिटी के असली स्काउट्स या रिक्रूटर्स कभी भी एडमिशन प्रोसेस को तेज करने या

0: फिर प्रोफाइल चेक करने के लिए अचानक चुपके से एडवांस कैश या फीस नहीं मांगते हैं। कोई भी बड़ी पेमेंट करने से पहले हमेशा रूल्स को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ आपका हक है। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आपको इन तीन तरीकों का इस्तेमाल जरूर करना है। और सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी शख्स को पेमेंट करने से पहले उसके बारे में जांच परख लें और ऑनलाइन पेमेंट से बचें, जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट से बचें। और अगर आप ऑफलाइन यानी कि सामने किसी शख्स से मिलकर पैसा देते हैं तो उससे रिसीट जरूर लें और जो रिसीट ऑफिशियल होती है उस रिसीट को एक्सेप्ट करें मोहर के साथ। उम्मीद है आपको ये स्कैम के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट अलर्ट।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारे पैसों को मैनेज करने का तरीका तेजी से बदल रही है. यानी आज का टॉपिक है मोबाइल वॉलेट्स. दोस्तों, एक वक्त था जब

सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये आपकी ट्रेडिशनल वॉलेट का डिजिटल वर्जन है। आजकल मोबाइल वॉलेट्स की पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि ये फास्ट है, कन्वीनियंट है और यूजर फ्रेंडली है। सोचिए आप ग्रोसरी स्टोर में हैं, रेस्टोरेंट में बिल पे करना है या किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करने हैं, कैश ढूंढना या एटीएम जाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ मोबाइल खोला और ट्रांजैक्शन कंप्लीट। यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट्स दुनिया भर में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। मोबाइल वॉलेट्स का एक बड़ा फायदा है कन्वीनियंस। आप 24 आवर्स किसी भी वक्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना बैंक की लाइन और ना ही कैश कैरी करने का टेंशन। खास तौर पे इमरजेंसी सिचुएशंस में तो ये बहुत यूजफुल साबित होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है स्पीड। आज की इस बिजी लाइफस्टाइल में लोग फास्ट सॉल्यूशंस चाहते हैं। मोबाइल वॉलेट के जरिए पेमेंट सिर्फ चंद सेकंड्स में कंप्लीट हो सकते हैं। और तीसरा फायदा है रिकॉर्ड कीपिंग। अक्सर हम याद नहीं रख पाते कि पैसे खर्च कहाँ हुए। मोबाइल वॉलेट एप्स ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सेव करती है जिसे आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। ये बजटिंग और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में भी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ कन्वीनियंस होती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मोबाइल वॉलेट्स यूज करते वक्त सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और सबसे पहले अपने फोन को पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन से सिक्योर रखिए। अगर फोन लॉक ना हो और किसी गलत शख्स के हाथ लग जाए तो फाइनेंशियल रिस्क पैदा हो सकता है। दूसरी बात, सिर्फ ऑफिशियल और ट्रस्टेड मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशंस ही यूज कीजिए। अननोन लिंक्स या फिर फेक एप्स डाउनलोड करने से बचिए। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर फेक एप्लीकेशंस के जरिए यूजर्स की इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। और तीसरी अहम बात, अपना OTP, पिन और पासवर्ड कभी भी किसी भी सूरत में किसी के साथ शेयर ना करें। चाहे कोई खुद को बैंक रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना बताए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, मोबाइल वॉलेट सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं है। आजकल कई वॉलेट रिवॉर्ड्स, कैशबैक ऑफर, बिल रिमाइंडर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड और बजटिंग टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। इससे लोग अपने डेली फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। स्मार्ट मनी का आज का हमारा जो पावरफुल टेक अवे है वो ये कि मोबाइल वॉलेट आपके पैसों को आपके मोबाइल तक ही लाता है, लेकिन उस सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। दोस्तों, आज का हमारा पावरफुल लेसन ये है कि मोबाइल वॉलेट आपके पैसों को आपके मोबाइल तक ही लाता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें और बाकी सारी अपडेट्स के लिए हमें सुनते रहे। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इस सेगमेंट यानी स्मार्ट मनी से इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देश।

0: टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: मॉडर्न लाइफ फास्ट है लेकिन साथ ही है जहनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आरजे महवेश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रही हैं एफएम 107, शो है इस्लामिक मॉडर्न लाइफ और मैं हूं आपके साथ आपके आरजे महवेश खान। आप सबको एक दफा फिर से इस्लामिक मॉडर्न लाइफ में खुश आमदेद। हमने पिछले एपिसोड में एक साथ ये सफर तय किया है कि मसरूफ जिंदगी में ईमान को कैसे जिंदा रखा जाए, काम और इबादत में तवाजुन कैसे हो, जहनी सेहत की अहमियत क्या है और डिजिटल डिसिप्लिन के जरिए दिल और वक्त को कैसे महफूज बनाया जाए। आज हम एक ऐसे मौजू की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो दिल को छुएगा, जिसके बगैर जिंदगी अधूरी लगती है और जिसकी कामयाबी या नाकामी हमारी खुशी, सुकून, हत्ता के ईमान पर भी असर डालती है, और वो है ताल्लुकात, मोहब्बत, एतमाद, गुफ्तगू, रफाकत, कुर्बानी, बर्दाश्त। ये सब वो धागे हैं जो हमारी जिंदगी की चादर बुनते हैं। चाहे आप शादीशुदा हो, शादी के मुंतजर हो, या वालिदैन, भाई बहन, रिश्तेदारों के ताल्लुकात निभा रहे हो, हम सब ऐसे रिश्ते चाहते हैं जो सुकून दें, हमें थकाए नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आज की मॉडर्न लाइफ में जहाँ तवक्कात भी ज़्यादा हैं और आजमाइशें भी, हम ऐसे ताल्लुकात कैसे बनाएं जो हमारे दीन की खूबसूरती की अक्कासी करें। इंशाल्लाह आज हम मॉडर्न रिलेशंस को इस्लामिक दार की रोशनी में देखेंगे, नरमी, मोहब्बत और रहमत के साथ। आज के दौर में ताल्लुकात का मसला कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं, बल्कि ये खामोश बहरान है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों, दिलों और सोचों में दाखिल हो चुका है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं, मगर हकीकत में वो पहले से ज्यादा दूर हो चुके हैं। एक ही कमरे में बैठे अफराद मोबाइल में गुम, स्क्रीन से जुड़े, मगर एक दूसरे के दिल से कटे हुए। हम बात करते हैं मगर सुनते नहीं, हम देखते हैं मगर समझते नहीं, हम साथ रहते हैं मगर महसूस नहीं करते। यही वो मकाम है जहां से ताल्लुकात कमजोर होना शुरू होते हैं। जिस पर सोशल मीडिया ने हमें एक नई दुनिया दिखाई है, ऐसी दुनिया जहां हर शख्स खुश नजर आता है, हर रिश्ता कामिल लगता है, हर तस्वीर में मुस्कुराहट है। लेकिन ये मुस्कुराहटें अक्सर फिल्टर्स के पीछे छुपी होती हैं। हम रोजाना देखते हैं जबरदस्त कपल्स, सरप्राइज गिफ्ट्स, कुछ रोमांटिक कैप्शंस, परफेक्ट मैरिज गोल्स, और फिर हमारा दिल सवाल करने लगता है हमारे रिश्ते में क्या कमी है, मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत क्यों नहीं है। ये कंपैरिजन दिल में शिकवे पैदा करता है, कनाद खत्म करता है और नेमत को जहमत बना देता है। हालांकि इस्लाम हमें सिखाता है कि बरकत मवाजने में नहीं, शुक्र में है। आज बहुत से ताल्लुकात बज़ाहिर कायम हैं, मगंदर से खाली हो चुके हैं। अगर हम बात करें शोहर बीवी की, तो एक ही छत के नीचे मगर अलग अलग दुनियाओं में। वालदैन और बच्चे एक ही घर में, मगर बात करने का वक्त ही नहीं है। वजह, मसरूफियत, थकन और मुसलसल स्क्रीन टाइम। हम दिन भर दुनिया से बात करते हैं, मगर रात को अपने करीबी लोगों से बात

0: दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है। याद रखिए, अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। Stories of Prophets, Stories of Prophets, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल

क्या वो किसी ऐसी चीज का एहतराम कर सकते हैं जिसे अल्लाह ने एक निशानी करार दिया है? क्या वो ये कबूल कर सकते हैं कि दुनिया की हर चीज सिर्फ इंसान की मलकियत नहीं? ये वाक्या हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है। एक शख्स के पास दौलत हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज खरीद सकता है। किसी के पास ताकत हो तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के हुकूक छीन सकता है। किसी ग्रोह के पास इख्तियार हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर लोगों को नजरअंदाज कर दे। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है, लेकिन इस इख्तियार के साथ जिम्मेदारी भी दी है। ऊटनी ने कौम समूद के अंदर मौजूद हकीकत को जाहिर कर दिया। जो लोग ईमान रखते थे उन्होंने हजरत सौले अलैहिस्सलाम की बात कबूल की, लेकिन मुतकब्बिर लोग मुखालफत पे कायम रहे। यहाँ एक बहुत अहम सबक सामने आता है। बाज़ औक़ात इंसान कहता है कि अगर मुझे वाज़े दलील मिल जाए तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन जब दलील सामने आ जाती है तो वो कोई नई वजह तलाश कर लेता है, फिर कहता है कि ये काफी नहीं, फिर एक और सवाल, फिर एक और एतराज और फिर एक और बहाना। इसका मतलब ये है कि हमेशा मसला हमारा दलील की कमी नहीं होता, कभी मसला दिल का तकब्बुर होता है। अगर इंसान सच कबूल करने के लिए तैयार ना हो तो हजार दलीलें देखकर भी इनकार कर सकता है। कौम समूद के लिए ऊटनी एक निशानी थी, लेकिन उसके साथ एक हुक्म भी था। यही हुक्म उनके किरदार का इम्तिहान बन गया। कौम समूद के मुतकब्बिर लोगों ने उन अहले ईमान से सवाल किया जो हजरत सौले अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम वाकई जानते हो सौले अपने रब की तरफ से भेजे गए रसूल हैं? ये सवाल सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए नहीं था, इसमें शक और तमस्कुर का अंदाज भी था। वो चाहते थे कि अहले ईमान अपने ईमान से पीछे हट जाएं, लेकिन अहले ईमान ने वाज़े जवाब दिया कि वो हजरत सौले अलैहिस्सलाम के जरिए भेजे गए पैगाम पर ईमान रखते हैं। मुतकब्बिर लोगों ने इसके जवाब में इनकार किया। ये वाकया हमें बताता है कि एक ही माशरे में रहने वाले लोग, एक ही बात सुनने वाले लोग और एक ही निशानी देखने वाले लोग भी मुख्तलिफ फैसले कर सकते हैं। एक शख्स ईमान ले आता है, दूसरा इनकार कर देता है। फर्क सिर्फ मालूमात का नहीं होता, फर्क दिल के रवैये का भी होता है। इंसान सच को कबूल करने के लिए कितना तैयार है? क्या वो अपनी गलती मान सकता है? क्या वो अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका सकता है? यही असल इम्तिहान है। इस वाज़े हुक्म के बावजूद कौम समूद के कुछ लोगों ने ऊटनी को नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। कुरान करीम उनके इस अमल को अल्लाह के हुक्म से बगावत और सरकशी के तौर पर बयान करता है। ये सिर्फ एक जानवर को नुकसान पहुंचाने का वाकया नहीं था, यह अल्लाह ताला की वाज़े निशानी को रद्द करने का अमल था। यह अल्लाह के हुक्म को जानबूझकर चैलेंज करने का अमल था। वो जानते थे उन्हें क्या हुक्म दिया गया है, इसके बावजूद उन्होंने नाफरमानी की। यहाँ एक और अहम सबक मिलता है। किसी माशरे में सिर्फ एक शख्स की बुराई ही मसला नहीं बनती। अगर एक शख्स गलत काम करे और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करें तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अगर लोग गलत काम को देखें, उसे कबूल करें, उसकी हौसला अफजाई करें तो उसे रोकने की सलाहियत रखने के बावजूद वो खामोश रहें तो फसाद बढ़ जाता है। जब गलत काम मामूल बन जाए तो उसके असरात पूरी कौम को मुतासिर कर सकते हैं। ऊटनी को नुकसान पहुंचाने के बाद कौम समूद के लोगों ने हजरत सौले अलैहिस्सलाम से कहा, अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो जिस अजाब से आप हमें डराते हैं उसे ले आइए। यह उनका आखिरी चैलेंज था। वो अजाब की वार्निंग को संजीदगी से लेने के बजाय उसे एक मजाक और चैलेंज के तौर पर देख रहे थे। लेकिन यहां एक बात वाज़े रहना चाहिए, नबी अल्लाह के हुक्म पहुंचाने वाले होते हैं, वो अपनी मर्जी से अजाब नहीं ला सकते। अजाब और फैसला अल्लाह के अख्तियार में। हज़रत सौले अलैहिस्सलाम ने अपना

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: दोस्तों अपने पर्सनल डेटा को फिशिंग से बचाने के लिए इन टिप्स पर अमल कीजिए। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देने को अवॉइड कीजिए। कभी भी जाती मालूमात या डेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मत कीजिए। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की आइडेंटिटीज को वेरीफाई करें और सिर्फ उन लोगों से बातचीत करें जिन्हें आप जानते हैं। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आपकी फैमिलीज के नौजवान यूजर्स के लिए कंटेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन, आज की दुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की, जो हमें जहालत और नादानी से बचने की तलकीन करती है। ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कही जब उनकी कौम ने गायें ज़बह करने के हुक्म के बारे में गैर जरूरी सवाल शुरू कर दिए और जिद में आ गए। उस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में शुमार हो जाऊँ, यानी बेवकूफ़ी, जिद और नाफरमानी करने वालों की राह इख्तियार करूँ। इस दुआ में इस बात की तरफ इशारा है कि जहालत सिर्फ इल्म की कमी नहीं बल्कि हक वाज़ह होने के बावजूद हट धर्मी करना और अल्लाह के हकाम के सामने सरकशी करना भी जहालत है। तो यूं इस दुआ के कई अहम पहलुओं में एक तो ये है कि अल्लाह की पनाह सबसे बड़ी हिफाजत है। मजीद, जहालत सिर्फ लाइल्मी नहीं बल्कि जिद, सरकशी और बिलावजह सवालात भी जहालत में शामिल हैं। इसी तरह इल्म के बावजूद दुआ ज़रूरी है। उसी तरह मुसलमान को जहालत से दूर रहना चाहिए। इस तरह ये दुआ हमें ये सबक देती है कि हमें हर हाल में अल्लाह से ये दुआ करते रहना चाहिए कि वह हमें जहालत, हट धर्मी और नाफरमानी से बचाए और इल्म, हिकमत और इताअत की राह पर कायम रखें। आइए हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन।

Assalamualaikum, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए मैं हर बार आपको वेबसाइट टूल्स के बारे में बताते रहता हूँ और इस वजह से मेरी भी जानकारी बढ़ती रहती है, नॉलेज में इजाफा होता रहता है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप भी कुछ अगर ढूंढते हैं, कुछ इत्तफाकन आपके सामने आ जाता है तो क्यों ना आप मुझे बता दें, मैं भी इस मामले में मदद चाहूंगा। मेरे लिए भी फायदा है, आपके लिए फायदा है। बट एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद द अपडेट। सो तीन वेबसाइट्स मैं आपको आज देने वाला हूँ, तीनों बेहद बेहद बेहद काम किए। स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर वन ऑन द लिस्ट, इस वेबसाइट का नाम है poe.com। poe.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने मौजूद होंगे 400 AI टूल्स। 400 एंड कमाल की बात यह है कि इस पे बहुत सारे AI टूल्स ऐसे जिनके बारे में ना मुझे पता था और आई एम प्रीटी श्योर बाकी जनता को भी नहीं पता होगा। और वो वाले टूल्स ऐसे हैं जो बाकी बड़े बड़े AI टूल्स जो पैसे मांगते हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं और या तो सस्ते हैं या बिल्कुल फ्री हैं। यह आपके काम आएगी वेबसाइट, सच्ची बता रहा हूँ। अगर आप बैठे हैं सोच रहे हैं कौन सा टूल किस AI पे जाऊं, इसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्या करूं, तो यहाँ पे आप जाइए। एवरी टूल हैज अ डिस्क्रिप्शन और हर टूल के बारे में आपको पता भी लगेगा एंड यू कैन चूज आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। सो poe.com, इस पे जाइएगा, मामला हो जाएगा आसान। बढ़ते हैं आगे। अगली वेबसाइट का नाम है perchance.org, perchance, perchance.org। इस वेब

वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ये बड़ी कमाल की वेबसाइट है, ये आपको काफी कुछ देगी, जैसे कि आपको मदद करेगी इमेज क्रिएशन में, नंबर वन चीज, क्योंकि अनलिमिटेड इमेज क्रिएशन जब आपको मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कोई और वेबसाइट इतना अच्छे से दे पाएगी आपको क्वालिटी 100% की जगह 98% अगर आपको चलती है, जो कि चलेगी ब्रिटिश हो, तो ये आपके लिए बेहद कमाल की वेबसाइट है और ये जनरेट भी थोड़ा जल्दी कर देती है। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, आई थिंक इट विल सूट अ लॉट ऑफ पीपल जिनका काम रहता है इमेज जनरेशन का, तो आपकी बहुत काम आ सकती है। perchance.org जरूर जरूर जरूर जरूर ट्राई करें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगली जो वेबसाइट है इसका नाम, इसका जो नाम है वो इसका काम है, बेसिकली नाम नोट कर लीजिएगा, promptcowboy.ai, prompt promptcowboy बिना स्पेस ये cowboy cowboy.ai promptcowboy.ai। यहां पे आप जाइएगा, ये क्या करेगा, आपको प्रॉम्प्ट लिखने में मदद करेगा। आधी दुनिया को ऐसा लगता है कि प्रॉम्प्ट लिखना तो बेहद आसान है, इसमें क्या है, मैं लिख दूंगा रिमूव माय बियर्ड, नहीं ऐसा नहीं होता ना, तो क्योंकि यू हैव टू राइट इन अ सर्टेन वे। आपका प्रॉम्प्ट जितना प्रिसाइज होगा, जितना स्पेसिफिकली आप किसी चीज को बताएंगे, उतना आपका फायदा है। कई मरतबा दिमाग में होता बहुत कुछ है पर वो उतर नहीं पाता प्रॉम्प्ट्स में, बट ये जो वेबसाइट है ये आपकी मदद करेगी। फॉर एग्जांपल इसको आपने कहा कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूं मैं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे मैं प्रॉम्प्ट में डालूं, तो ये आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे ऐसे आएगा और ये लो जी प्रॉम्प्ट, तो आपको प्रॉम्प्ट भी बना के दे देगा, एन एडवांस्ड वर्जन देगा जो आपके बहुत काम आएगा। ब्यूटीफुली डन एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वेबसाइट। ओके, अब बढ़ते हैं जरा एक बहुत जरूरी खबर की तरफ। खबर जो है वो गेमिंग की दुनिया से है, रिलीज हुआ है जब से कंट्रोल रेजोनेंट, पब्लिक में हलचल मच चुकी है और इस गेम ने बहुत तो के सर घुमा दिए। एक्चुअली क्या कुछ लोग कह रहे हैं, अरे ये लोग तो क्या बना दिया इन्होंने, ऐसा सोचा भी नहीं था, कुछ लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, पर मैक्सिमम लोग तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि और भी बहुत सारे गेम्स हम डेवलप कर रहे हैं साथ साथ, जो इंडी गेम्स भी हैं उन डेवलपर्स को भी हम चांस देंगे, जो एक दो लोग मिलके बना रहे हैं, सिंगल हैंडेडली लोग तैयार कर रहे हैं ब्यूटीफुली डन, तो उनको भी चांस दिया जाएगा। गेमिंग इंडस्ट्री की एक और बड़ी खबर है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था प्ले स्टेशन की तरफ से, वैसी एक्सबॉक्स की तरफ से है। एक्सबॉक्स ने जब से हिडियो कोजिमा को, मतलब गेमिंग इंडस्ट्री के क्रिस्टोफर नोलन को हायर किया है, हलचल मची हुई है। उनका एक गेम ओडी, जो प्राइमरीली वन ऑफ द बिगेस्ट हॉरर फ्लिक्स माना जा रहा है, गेम माना जा रहा है, आने वाला है, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट में है। एक सरप्राइज जो लोग बता नहीं रहे, सरप्राइज करके टीज कर रहे हैं। लेट्स सी, क्या ये सही टाइम है एक्सबॉक्स ले लेने का, खर्चा कराओगे। दीज वर दी अपडेट्स, मिलते हैं अगली वाली में, दिल से देसी टेक।

0: में है, कोई लफ्ज़ मुस्तकबिल नहीं बनाता, कोई नाम तकदीर नहीं बदलता, कोई इत्तेफाक गैब की यकीनी खबर नहीं देता। अच्छी फाल सिर्फ दिल में खैर की उम्मीद पैदा करती है और दिल को अल्लाह से जोड़ती है। अब बदशगुनी क्या करती है? बदशगुनी उसके बरक्स है। इंसान ऐसी चीजों से नताइज निकालने लगता है जिन्हें अल्लाह ने नताइज का सबब ही नहीं बनाया। कोई खास परिंदा देखा तो कहने लगा कुछ बुरा होगा, किसी खास आवाज को सुना तो कहने लगा कि सफर ठीक नहीं होगा, किसी खास दिन को मनहूस समझ लिया, किसी आदत को बदकिस्मती से जोड़ दिया, किसी शख्स के आने को नुकसान की अलामत समझ दिया। फिर उन्हीं वहमों की बुनियाद पर इंसान अपने फैसले बदलने लगता है। असबाब इख्तियार करें, दिल अल्लाह से जोड़ें और नतीजा उसी के हवाले कर दें। अजीज सामिने किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लफ्ज पसंद था क्योंकि कभी एक खूबसूरत लफ्ज थके हुए दिल में उम्मीद पैदा कर देता है। और आजकल बच्चों की तरबियत में भी इस सुन्नत की बड़ी जरूरत है कि अगर बच्चा हर छोटी चीज के बारे में सुनता रहे कि मनहूस है, ऐसा हुआ तो बुरा होगा, उस दिन ये काम नहीं करना, उस चीज से बदकिस्मती आती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन वहमों का शिकार हो सकता है। उसे इसके बजाय सिखाइए कि खैर और शर अल्लाह के हाथ में है, दुआ करो, एहतियात करो, सही असबाब इख्तियार करो। मोमिन वहम के साए में नहीं जीता, वो तवक्कुल के साए में जीता है। इसी तरह नाकामी को बदशगुनी न बनाइए, कभी एक बुरा तजुर्बा भी इंसान की पूरी सोच बदल देता है। एक कारोबार नाकाम हुआ तो कहने लगे कि कारोबार मेरे लिए नहीं, एक इम्तिहान में नाकामी हुई तो कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, एक रिश्ता कामयाब न हुआ तो ये कह बैठे कि मेरे नसीब में खुशी नहीं। याद रखिए कि एक वाकया है, ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं। मोमिन मुश्किल को देखता है मगर मुश्किल से अपनी पूरी तकदीर का फैसला नहीं करता। अल्लाह ताला हमें वो अहम बदशगुनी और बेबुनियाद खौफ से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपरवर सुन्नत के आज के इस हल्के से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारे पैसों को मैनेज करने का तरीका तेजी से बदल रही है, यानी आज का टॉपिक है मोबाइल वॉलेट्स। दोस्तों, एक वक्त था जब घर से निकलते वक्त सबसे पहले हम अपना वॉलेट चेक करते थे, कैश है कि नहीं, डेबिट कार्ड साथ है कि नहीं। लेकिन आजकल बहुत से लोगों के लिए उनका स्मार्टफोन ही वॉलेट बन चुका है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मोबाइल वॉलेट होता क्या है। देखिए, मोबाइल वॉलेट एक डिजिटल एप्लीकेशन होती है जो आपको अपने स्मार्टफोन के जरिए पैसे भेजने, रिसीव करने, बिल्स पे करने, ऑनलाइन शॉपिंग करने और कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सहूलत देती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये आपकी ट्रेडिशनल वॉलेट का डिजिटल वर्जन है। आजकल मोबाइल वॉलेट्स की पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि ये फास्ट है, कन्वीनियंट है और यूजर फ्रेंडली है। सोचिए, आप ग्रोसरी स्टोर में हैं, रेस्टोरेंट में बिल पे करना है या किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करने हैं, कैश ढूंढना या एटीएम जाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ मोबाइल खोला और ट्रांजैक्शन कंप्लीट। यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट्स दुनिया भर में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। मोबाइल वॉलेट्स का एक बड़ा फायदा है कन्वीनियंस। आप 24 आवर्स किसी भी वक्त ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना बैंक की लाइन और ना ही कैश कैरी करने का टेंशन। खास तौर पे इमरजेंसी सिचुएशंस में तो ये बहुत यूजफुल साबित होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है स्पीड। आज की इस बिजी लाइफस्टाइल में लोग फास्ट सॉल्यूशंस चाहते हैं। मोबाइल वॉलेट के जरिए पेमेंट सिर्फ चंद सेकंड्स में कंप्लीट हो सकते हैं। और तीसरा फायदा है रिकॉर्ड कीपिंग। अक्सर हम याद नहीं रख पाते कि पैसे खर्च कहाँ हुए। मोबाइल वॉलेट एप्स ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सेव करती है जिसे आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। ये बजटिंग और पर्सनल फाइनेंस

0: भी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, जहां कन्वीनियंस होती है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मोबाइल वॉलेट्स यूज करते वक्त सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, और सबसे पहले अपने फोन को पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन से सिक्योर रखिए। अगर फोन लॉक ना हो और किसी गलत शख्स के हाथ लग जाए तो फाइनेंशियल रिस्क पैदा हो सकता है। दूसरी बात, सिर्फ ऑफिशियल और ट्रस्टेड मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशंस ही यूज कीजिए। अननोन लिंक्स या फिर फेक एप्स डाउनलोड करने से बचिए। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर फेक एप्लीकेशंस के जरिए यूजर्स की इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। और तीसरी अहम बात, अपना OTP, पिन और पासवर्ड कभी भी किसी भी सूरत में किसी के साथ शेयर ना करें। चाहे कोई खुद को बैंक रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना बताए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, मोबाइल वॉलेट सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं है। आजकल कई वॉलेट रिवॉर्ड्स, कैशबैक ऑफर, बिल रिमाइंडर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड और बजटिंग टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। इससे लोग अपने डेली फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। स्मार्ट मनी का आज का हमारा जो पावरफुल टेक अवे है वो ये कि मोबाइल वॉलेट आपके पैसों को आपके मोबाइल तक ही लाता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। दोस्तों, आज का हमारा पावरफुल लेसन ये है कि मोबाइल वॉलेट आपके पैसों को आपके मोबाइल तक ही लाता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें, और बाकी सारी अपडेट्स के लिए हमें सुनते रहे। फिलहाल मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इस सेगमेंट यानी स्मार्ट मनी से इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

Scam Alert. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए स्कैम नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं और आगाह करता हूं कि कैसे आप इन फ्रॉड से बच सकते हैं. वेल, आज जिस फ्रॉड के बारे में हम बात करने वाले हैं ये स्पोर्ट्स से मुताल्लिक है, यानी कि वो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या फिर वो लोग जो स्पोर्ट्स में यू नो एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी खेल को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने फिटनेस को बेहतर करना चाहते हैं, और ये स्कैम है स्पोर्ट्स एडमिशन स्कैम. कैसे काम करता है ये स्कैम, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. स्पोर्ट्स एडमिशन स्कैम एक ऐसी धोखेबाजी है जो स्टूडेंट्स एथलीट्स और उनकी फैमिलीज के ख्वाबों का गलत फायदा उठाती हैं. इस फ्रॉड में स्कैमर्स मशहूर यूनिवर्सिटीज में गारंटीड स्पोर्ट्स एडमिशन या एलीट एथलेटिक स्कॉलरशिप्स दिलवाने का झूठा वादा करते हैं. फ्रॉड करने वाले लोग खुद को बड़े टैलेंट स्काउट्स, करप्ट स्पोर्ट्स एजेंट या यूनिवर्सिटी के वेल कनेक्टेड एथलेटिक रिक्रूटर्स दिखाते हैं.

सकते हैं वो बिल्कुल असली दिखने वाले नकली एथलेटिक डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी तैयार करते हैं ताकि लोगों को यकीन आ जाए फिर वो विक्टिम से प्रोफाइल इवैल्यूएशंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग या फास्ट ट्रैक्ड कंप्लायंस ट्रैकिंग के नाम पर बहुत बड़ी अपफ्रंट फीस मांगते हैं जैसे ही फैमिली ये भारी रकम अदा करती है ये फेक रिक्रूटर्स आपसे कांटेक्ट करने वाले जितने भी नंबर हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं आपको ब्लॉक कर देते हैं नंबर गायब हो जाता है आप इन्हें ट्रैक नहीं कर सकते जिससे स्टूडेंट्स की एकेडमिक फ्यूचर और एथलेटिक ड्रीम्स पूरी तरह तबाह हो जाती हैं और फैमिली को बहुत बड़ा माली नुकसान भी होता है एक जमाने में मुझे पता नहीं कई लोगों को पता है या नहीं है एक तरह का स्कैम चलता था जब असल में क्रिकेट के ट्रायल्स होते थे किसी एक फेमस टूर्नामेंट के बारे में बात होती थी उसको लेकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल्स होते थे बाकायदा प्लेयर्स आते थे वो रजिस्ट्रेशन फीस दिया करते थे वहां पर सेलेक्टर्स बैठते थे बैटिंग और बॉलिंग और फुटबॉल के जो ट्रायल्स हैं या फिर किसी भी तरह के जो ट्रायल्स हैं अलग मुल्क के बारे में बात कर रहा हूं वहां पर ये ट्रायल्स होते थे और उसके बाद वो टूर्नामेंट कभी होता ही नहीं था तो रजिस्ट्रेशन फीस लेकर वो भाग गए उसके अलावा जो भी वहां पर आपको सुविधाएं दी गई हैं जो प्रॉब्लम्स वहां क्रिएट होती हैं उनके लिए फिर पैसे होते थे पानी के लिए चार्ज किया जाता था आपको है ना मेडिकल के लिए चार्ज किया जाता था तो इन सब चीजों के लिए वो आपको चार्ज करते थे और फिर उसके बाद टूर्नामेंट कभी होता ही नहीं था सिलेक्शन कभी किसी प्लेयर का होता ही नहीं था इस तरह के स्कैम्स भी होते रहे हैं और इस तरह के स्कैम से बचने के कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनको आपको गौर से सुनना चाहिए दोस्तों इनके कुछ तीन आसान तरीके हैं जिससे आप इस स्पोर्ट्स के एडमिशन वाले स्कैम से बच सकते हैं ये है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी चैनल से राब्ता करना सबसे पहला किसी भी स्कॉलरशिप या एडमिशन ऑफर को वेरीफाई करने के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एथलेटिक डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कॉल या ईमेल करें किसी थर्ड पार्टी एजेंट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें उसके अलावा गारंटीड ऑफर से होशियार रहें लेजिट स्पोर्ट्स एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स हमेशा एक सख्त और ऑफिशियल मेरिट प्रोसेस के जरिए मिलती है अगर कोई शख्स पैसे के बदले गारंटीड सीट या स्कॉलरशिप का वादा करे तो समझ जाएं ये फ्रॉड है ये स्कैम है उसके अलावा तीसरा तरीका है इस तरह के स्कैम से बचने का वो है अपफ्रंट फीस देने से बचना यूनिवर्सिटी के असली स्काउट्स या रिक्रूटर्स कभी भी एडमिशन प्रोसेस को तेज करने या फिर प्रोफाइल चेक करने के लिए अचानक चुपके से एडवांस कैश या फीस नहीं मांगते कोई भी बड़ी पेमेंट करने से पहले हमेशा रूल्स को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ आपका हक है इस तरह के स्कैम से बचने के लिए आपको इन तीन तरीकों का इस्तेमाल जरूर करना है और सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी शख्स को पेमेंट करने से पहले उसके बारे में जांच परख लें और ऑनलाइन पेमेंट से बचें जितना हो सके ऑनलाइन पेमेंट से बचें और अगर आप ऑफलाइन यानी कि सामने किसी शख्स से मिलकर पैसा देते हैं तो उससे रिसीट जरूर लें और जो रिसीट ऑफिशियल होती है उस रिसीट को एक्सेप्ट करें मोहर के साथ उम्मीद है आपको ये स्कैम के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए और आपको आगाह करते हुए सुनते रहे FM 107 दिल से देसी स्कैम अलर्ट

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इंक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: जब नई सोच और नए जज्बात टकराते हैं तो बनता है एक नया नजरिया, द डिबेटेबल टेबल, एक ऐसा शो जहां यंग डिबेटर्स अपने पर्सपेक्टिव से इंस्पायर करते हैं और हर डिस्कशन बन जाता है एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी। द डिबेटेबल टेबल, आरजे फजील और आरजे कबीर के साथ, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, एफएम 107 पे फजील के साथ हैं आप। इस्तकबाल आप सभी का इस शो में एक बार फिर से, जिसका नाम है द डिबेटेबल शो। तो एक बार फिर से हमारे साथ कटघरे में दो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनसे हम सवाल करेंगे, उस सवाल पे दोनों की अपने मुख्तलिफ जवाब होंगे। जज आप हैं और मैं हूँ, जहाँ पर हम इन दोनों को जज करेंगे कि क्या इनके जवाब सही हैं या नहीं। जो मुद्दा है, तो ये मुद्दा जब शुरू होगा, कटघरे में दोनों को खड़े किए जाएंगे, दोनों अपने अपने पॉइंट्स लेंगे और देखेंगे कि क्या इनके पॉइंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम इन दोनों के साथ हो सकते हैं या नहीं। ये शो जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल, जहां पर हम एक ऐसे थॉट प्रोवोकिंग बात को या टॉपिक को लेकर आते हैं जिस पर दो स्टूडेंट्स बात करते हैं। और आज हमारे साथ ऐसे ही दो स्टूडेंट्स हैं और बड़े ही कमाल के स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम है जुनैरा और एक का नाम है मरियम। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा और मरियम, कैसी हैं आप?
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: वाह, दोनों ने रिदम में बोला, ये जुड़वा नहीं है दोस्तों, अलग अलग।

0: कॉलेज से हैं, अलग अलग स्कूल से हैं। मरियम आप किस स्कूल से हैं?
1: हम ऑरिक्स इंटरनेशनल स्कूल से हैं।
0: बहुत ही जबरदस्त। और आप?
2: मैं बिरला पब्लिक स्कूल से हूँ।
0: ओके, आगे बढ़ते हुए मैं आज का सवाल आप दोनों के सामने रखता हूँ, ठीक है? और इस सवाल पे जो आपने अपना टॉपिक चुना है उस पे सबसे पहले आपको एक एक मिनट तक बोलना है, ठीक है? तो आज का सवाल है, विच इज स्केरियर, फॉरगेटिंग योर फोन एट होम और फेलिंग अ सरप्राइज टेस्ट। तो मरियम आपने कौन सा टॉपिक लिया है?
1: हमने फेलिंग अ सरप्राइज टेस्ट लिया है।
0: ओके, तो अगर एक मिनट तक अगर आपको बोलना हो तो आप क्या कहेंगे इस पे?
1: हम कहेंगे कि सरप्राइज टेस्ट फेल करना और डरावना है, बिकॉज़ वो एक ऐसा रिग्रेट और गिल्ट आता है जैसे तुम है ना, ऐसे वो बोलते हैं ना कि अगर मैंने थोड़ा लेक्चर में ध्यान दी होती या घर पे आके पढ़ाई की होती तो ये होता ही नहीं।
0: हाँ।
1: फिर हम लोग के पेरेंट्स और टीचर्स के डिसअपॉइंटमेंट भी फेस करना पड़ता है कि अब टीचर बोले कि उसने सही से पढ़ाई नहीं की, पेरेंट्स बोले टीचर ने पढ़ाई नहीं की।
0: हाँ।
1: लेकिन हम लोग भी ब्लेम कर रहे हैं ओके कि हम लोगों ने ज्यादा एफर्ट नहीं डाले।
0: नहीं डाला।
1: हाँ। और लाइक अपना एकेडमिक और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, और लाइक वो कॉन्फिडेंस लेवल जब डाउन हो जाता है तो हम सोचा हम अपने बड़े एग्जाम्स कैसे लेंगे वो टॉपिक पे।
0: अगर एक ऐसा छोटा एग्जाम अगर नहीं ले पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर बड़े एग्जाम कैसे लेंगे।
1: फिर अगर एक इजी टॉपिक है, जैसे मेरे लिए एक इजी टॉपिक साइंस है।
0: हाँ।
1: ओके, और उसके अंदर मैंने केमिस्ट्री में फेल कर दी।
0: हाँ।
1: वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, 5 to 15 ऐसा कुछ ले ली।
0: हाँ।
1: तो हमें भी कितना डिसअपॉइंटमेंट होएगा कि हमें आता था ये।
0: हाँ।
1: लेकिन हुआ ही नहीं।
0: ओके, तो सुनहरा अब ये आपका पार्ट है, आपने जो यानी कि आप अगर मरियम ने एक पार्ट लिया तो दूसरा पार्ट यानी कि आपको लेना पड़ेगा विच इज फॉरगेटिंग योर फोन एट होम। तो एक मिनट के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें, एक मिनट से कम भी हो सकता है, क्या होगा वो?
2: Forgetting your phone at home ज़्यादा डरावना होता है failing a surprise test से।
0: Okay.
2: क्योंकि अगर surprise test हम लोग ने देखे fail कर दिया तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हम लोग like disturbed होंगे।
0: Correct.
2: लेकिन अगर मोबाइल घर पे भूल गए तो पूरा दिन हम लोग को टेंशन रहेगी कि अरे यार मेरा मोबाइल घर पे मैं छोड़ गई, अब क्या होगा, मैं ना तो मुझे डायरेक्शंस भी नहीं आते, अगर मुझे भूख लगी तो खाना भी नहीं ऑर्डर कर सकती, अरे क्या हुआ अगर मेरे like फैमिली को कुछ
0: इम्पोर्टेंट कॉल करनी हुई
2: या इमरजेंसी कुछ हो गई।
0: हाँ।
2: अब मेरे हाथ में मोबाइल ही नहीं है, मैं क्या करूँ, अब पता नहीं मैंने घर पे छोड़ा कहाँ मोबाइल, क्या अनलॉक है अनलॉक नहीं है।
0: हाँ।
2: पता नहीं कौन खोल के मेरे लाइक इन्फॉर्मेशन देख सकता है।
0: करेक्ट।
2: तो मतलब पूरा दिन ऐसे दिमाग हम लोग का चलता रहता है और हम लोग सीधा नहीं सोच पाते हैं।
0: हाँ। तो मतलब ये कि वो एक दिन हमेशा के लिए याद रहेगा अगर फोन भूल गए, लेकिन अगर एग्जाम्स भूल गया तो चलेगा, एग्जाम्स छूट गया तो चलेगा। ये मेरा पॉइंट तो मुझे लगता है कि ज्यादा मुझे तो आज भी सपने आते हैं कि मैंने अपना कोई यू नो एग्जाम जो है वो छोड़ दिया है, छूट गया है मुझसे और मैं पहुंच नहीं पाया, मैं कहीं बहुत दूर और मैं फेल हो गया हूं, और फिर मैं अपने फादर साहब से सुताई हो रही है मेरी, कुटाई हो रही है। ओके, तो हम आगे बढ़े, इससे पहले हम एक दूसरे के बारे में जरा जान लेते हैं। तो मरियम आप कहाँ से?
1: हम इंडिया मुंबई में से।
0: अरे वाह, मुंबई में किस जगह से?
1: जोगेश्वरी वेस्ट।
0: ओके, तो वैसे आप साल में कितने बार जाते हैं वहाँ पर?
1: 2-3 बार अराउंड।
0: 2-3 बार।
1: हाँ।
0: तो कौन सा बेस्ट वक्त होता है आपको जब इंडिया जाना पसंद है, मुंबई जाना पसंद है?
1: ईद अल अधा।
0: ईद अल अधा। ओके, तो आपको कतर की ईद अच्छी लगती है या फिर अपने मुल्क की, इंडिया की?
1: इंडिया की ऑफ कोर्स।
0: क्यों?
1: बिकॉज उधर जो है ना मेरे फ्रेंड्स रहते हैं, अगर फ्रेंड्स नहीं भी होते तो भी ऐसे मजा आते नानी और सब लोग के घर पे जाने।
0: हाँ।
1: और
0: दोस्त यार वहाँ पर ज्यादा अच्छे हैं। ओके, जुनैरा आप जाते हो? आप लखनऊ से? वैसे आपको बता दूं दोस्तों, जुनैरा लखनऊ से, मैंने पहले ही पता कर लिया है। तो आपको कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, कतर या लखनऊ?
2: मुझे कतर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि कतर साफ़ सुथरा और ज़्यादा शांत ऐसा होता है। इंडिया भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ग्रीनरी, मेरी सारी फैमिली इंडिया में है।
0: हाँ।
2: लेकिन कतर की अब आदत पड़ गई है, कतर इतना सुंदर है, हर तरफ जाओ हर तरफ सिक्योरिटी, हर तरफ सेफ्टी है।
0: हाँ।
2: इंडिया में अकेले जाने में भी कहीं में तो डर लगता है, लेकिन कतर में जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हैं।
0: वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि आपको क्या लगता है कि एक तो कानपुर से हूँ मैं और जुनैरा लखनऊ से है, एक फाइट होती है बिरयानी की, तो आपको बिरयानी पसंद है? जनरल, इन जनरल
2: ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक ठाक है।
0: ठीक ठाक है। आपने कभी ट्राई की है लखनऊ की बिरयानी?
2: मैं जानती नहीं लखनऊ की कैसी होती है, खाई है बहुत सारी बिरयानी.
0: अच्छा तो लेकिन चलिए इस पर्सपेक्टिव पे डालते हैं कि कतर का खाना अच्छा है या लखनऊ का, क्या एक अगर आपको जवाब देना हो, क्योंकि इससे पहले अभी मैंने पूछा कि लखनऊ अच्छा है या कतर अच्छा है, इन्होंने बहुत घुमा के जवाब दिया है.
2: मुझे दोनों के खाने बहुत अच्छे लगते हैं, चूज करने में डिफिकल्ट है.
0: एक किसी मुल्क का खाना आपको चूज करना हो, ताउम्र.
2: वैसे तो मैं लखनऊ का चूज करूंगी क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के खाने होते हैं.
0: हाँ.
2: बहुत सारे मीठे के खाने होते हैं, बहुत नमकीन, तो लखनऊ का मुझे ले प्रेफर करूंगी ज्यादा.
0: ओके तो वैसे हम सब भी इसीलिए पसंद करते हैं ना लखनऊ और अपने मुल्क का खाना, थोड़ा सा चटकारे वाला जरा होता है, मिर्च मसाला होता है और मिर्च मसाला हमारे जबान पे है. तो दोस्तों इसी पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक के अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में. एक छोटा सा ब्रेक, FM 107 पे जुनैरा और मरियम हमारे साथ बने रहेंगे इस खास शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल. सुनते हैं FM 107, दिल से दही सी.

0: एक बार फिर से इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का FM 107 पे, और ये शो है द डिबेटेबल टेबल, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं मरियम और जुनैरा से। और आज का जो टॉपिक है वो है विच इज स्केरियर, फॉरगेटिंग योर फोन एट होम और फेलिंग अ सरप्राइज टेस्ट। तो अब हम अलग पर्सपेक्टिव पे बात करने वाले हैं, एकेडमिक पर्सपेक्टिव पे। तो अगर ऐसा हो मरियम के आप सरप्राइज टेस्ट जो है वो फेल हो जाएं, तो एकेडमिक पर्सपेक्टिव पे आपका क्या कहना है?
1: एकेडमिक पर्सपेक्टिव पे ऐसा लगता है कि जब एग्जाम नहीं कर पाते तो अपना ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, तो अपने स्कोर्स भी कम हो जाते हैं। अब स्कोर्स कम हो जाते हैं तो ऑफकोर्स पेरेंट्स और टीचर्स काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हम लोग पे ध्यान देना कम कर देते हैं, और फिर आगे जाके और थोड़े ऐसा एक एनजाइटी रहता है, एक स्ट्रेस रहता है कि अगर एक और सरप्राइज टेस्ट हो गया और हम रेडी नहीं हैं तो। और फिर वो अपने अगर रिपोर्ट कार्ड में भी अगर आएगा उसको तो फिर वो काफी गंदा रहेगा।
0: हाँ, रिजल्ट्स भी क्या कहते हैं खराब नहीं होने चाहिए, ये बड़ा दुख हो जाता है। पापा की उम्मीदें, पेरेंट्स की उम्मीदें और जो फ्यूचर है उस पे भी इफेक्ट पड़ता है।
1: हाँ, फ्यूचर पे भी इफेक्ट पड़ता है।
0: ओके, तो हम एकेडमिक पर्सपेक्टिव से पूछे तो फोन अगर हम कहीं भूल जाए तो उस पर क्या असर पड़ेगा, उस बात पे क्या असर पड़ेगा? सुनहरा क्या कहती है?
1: फ़ोन में हम लोग बहुत सारा AI का यूज़ करते हैं, AI हम लोग की बहुत मदद करता है, जैसे स्टडीज़ में, टेस्ट की प्रिपरेशन करने में, कोई लेक्चर समझ ना आए तो AI हम लोग को लेक्चर को ब्रेक डाउन कर देता है टॉपिक्स में और हम लोग को समझा देता है।
0: करेक्ट।
1: तो बहुत सारे लोग आजकल AI के बिना अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग घर पर फोन भूल गए और हम लोग को कुछ अगर टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी और हम लोग का लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है तो हम लोग पैनिक करने लगेंगे, अरे मैंने तो प्रिपरेशन भी नहीं करी, अब मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है कि मैं AI या गूगल से कुछ सर्च कर लूं। तो हम लोग को समझ नहीं आएगा उससे, और भी हम लोग का टेस्ट खराब हो सकता है, उससे हम लोग की पढ़ाई में इफेक्ट हो सकता है क्योंकि आजकल AI बहुत सारे काम करवाता है हम लोग का।
0: अच्छा, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ जुनैरा, कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने किसी सवाल को आप सॉल्व नहीं कर पा रही, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हैं, या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपने AI की हेल्प ली है?
1: हाँ, मैंने हिस्ट्री में ज्यादा लाइक स्मार्ट नहीं हूँ।
0: मरियम, आपने कभी हेल्प ली है?
1: हम ज्यादा तो नहीं रहते हैं, हम मोस्टली बुक्स के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं। As a person who doesn't have a phone or any link to AI.
0: ओके, तो ये यानी कि दोनों ने टॉपिक अपने अपने मतलब का चुना है, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हुए हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करना चाहते हैं, एंड लेट्स सी कि क्या दोनों के जवाब होते हैं। दोस्तों, एक एक करके इन दोनों से पूछते हैं कि क्या साइकोलॉजिकल असर पड़ता है जब हम फोन अगर अपना कहीं पर भूल जाएं तो। सबसे पहले मैं जुनैरा से पूछना चाहूंगा, क्या असर पड़ता है इस पर?
1: हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फोन से इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं।
0: हाँ, मेरे साथ भी वैसे सुनहरा ही है। मैं अगर फोन ना लू दिन में मुझे 10 बार तो फोन इसलिए चाहिए कि सिर्फ देखना है कोई मैसेज है या नहीं है।
1: हम लोग अपने फोन बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं और एक पर्पस होता है हम लोग अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो। और अगर हम लोग कहीं फोन भूल गए तो हम लोग अपने फ्रेंड से कनेक्ट नहीं हो पाते और एज अ वे ऐसा फील होता है हम लोग को कि हम लोग से दुनिया छीन गई, हम लोग को कहीं पकड़ के लॉकअप कर दिया क्योंकि हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो हम लोग को ऐसा ट्रैप्ड फील होता है उससे और हम लोग का दिमाग सही नहीं चलता है तो उससे हम लोग और परेशान हो जाते हैं।
0: ओके, अच्छा वैसे आप मरियम मोबाइल का इस्तेमाल कम करते हैं या ज्यादा करते हैं?
1: हमारे पास तो मोबाइल है ही नहीं, हम एक आईपैड किड है।
0: आईपैड किड है। ओके, तो यानी कि आपने जो अपना टॉपिक चुना है बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो क्या थॉट है आपका, साइकोलॉजिकल क्या असर पड़ता है?
1: तो उसके अंदर एक गिल्ट फील होता है कि हम लोग पढ़ाई की है तो हम लोग पास हो जाते हैं, फिर एक ऐसा स्ट्रेस आता है कि हम लोग आगे बेटर कर पाएंगे कि नहीं, फिर ऐसे एक डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि अगर ये इजी टॉपिक था और उसके ऊपर फेल हो गए तो काफी ऐसा स्ट्रेस आता है और डिसअपॉइंटमेंट आता है। और पीयर प्रेशर भी आता है, इमेजिन यू आर अ टॉपर और तुम्हारे को एक सरप्राइज टेस्ट में कम मार्क आ जाए तो वो पीयर प्रेशर जो सब लोग तुम्हारे को देखते कि अच्छी अच्छी लड़की पढ़ाई के अंदर ऐसे सरप्राइज टेस्ट फेल कर रही है तो बहुत अजीब लगता है।
0: और फिर उसके बाद जो यू नो रिश्तेदार भी आपको ऐसे देखते हैं, क्या पढ़ाई कर रही तेरी लड़की
1: और क्या।
0: ओके, तो दोस्तों इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे FM 107 पे और फिर हम वापस आएंगे और भी जो थॉट हैं उस थॉट पर हम बात करेंगे, क्या पर्सपेक्टिव है, अलग अलग एंगल पे बात करेंगे इस खास टॉपिक पे इस शो में जिसका नाम है द डिबेटेबल टेबल. और हम आज इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं कि क्या ज्यादा डरावना है कि सरप्राइज टेस्ट भूल जाए या फिर मोबाइल कहीं पर भूल जाए. सरप्राइज टेस्ट में फेल हो जाए ये ज्यादा डरावना है या फिर अपना मोबाइल कहीं पर भूल जाए ये ज्यादा डरावना है. जुनैरा और मरियम अपने अपने नजरिए से बात करते हुए एफ एम 107 पे. एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे कुछ देर में. सुनते रहे एफ एम 107, दिल से दही सी.

0: तो जज साहब क्या सोचा है आपने, क्या ज्यादा डरावना है, सरप्राइज टेस्ट फेल हो जाना या फिर मोबाइल भूल जाना कहीं पर? अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 पे मैं हूं फजील इस्तकबाल आप सभी का, और जज साहब इंतजार कर रहे हैं आपके जवाब का। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6662217, जहां पर आप जवाब दे सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ द डिबेटेबल टेबल में बैठे हुए हैं दो महान कलाकार, ये आर्टिस्ट है भाई साहब। आपको मैं अभी कुछ देर में बताऊंगा, एक सवाल करूंगा जिसमें मरियम जवाब देंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मरियम और जुनैरा मिले कैसे और कैसे ये एक आर्ट है ना। तो मेरा ये सवाल होने वाला है कि आप दोनों मिले कैसे, मरियम और जुनैरा?
1: तो हम जो है ना,
0: हाँ,
1: हम पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन स्पेलिंग में इतने अच्छे नहीं थे।
0: okay.
1: तो एक बार एक ऐसा सरप्राइज टेस्ट हुए, हमारे को याद नहीं इतने अच्छे से कि क्या वर्ड्स है उसके अंदर, उसमें से हमने आधे से ज्यादा हमने गलत कर दिए थे।
0: okay.
1: तो इसको 10 out of 10 मिला था जुनैरा को।
0: हाँ.
1: तो टीचर ने मुझे उसके पास भेज दी, बोली वो डिसिप्लिन लड़की है तो वो सिखाएंगी तो मैम।
0: वाह भाई वाह।
1: तो मैं गई और फिर उसने सिखाई, लेकिन मुझे एक स्पेलिंग तो आ रहा ही नहीं था जिसका नाम था पम्पकिन।
0: पम्पकिन हाँ। ओके।
1: मेरे लिए काफी डिफिकल्ट वर्ड था।
0: मैं अभी पूछना चाहता हूँ आपको, अब पता है वो?
1: हाँ, अब
0: पता क्या है, स्पेलिंग बताइए।
1: ऑफ कोर्स हमने 5 बार कर चुके वो टेस्ट।
0: ओके वेल डन। आपको स्पेलिंग पता है अभी पम्पकिन की?
1: पता है,
0: पता है।
1: उसने तो मुझे सिखाई है।
0: ओके तो जुनैरा, आप जब पहली बार आपने जब सरप्राइज टेस्ट दिया, आपको पता था कि उस दिन होने वाला, या आपको कभी होता नहीं टीचर टीचर की कोई फेवरेट स्टूडेंट होती है और टीचर उसे बता देती है कि कल मैं टेस्ट लूंगी?
1: टीचर मुझे बहुत मारती थी।
0: क्या बात कर रही हैं? क्यों?
1: वो सब बच्चों को मारती थी, हम लोग की जो क्लास टीचर थी।
0: सरप्राइज टेस्ट की बात हो रही है लेकिन मरियम सरप्राइज हो गई, क्यों आपको नहीं लगता थी?
1: मुझे नहीं लगता टीचर ने मुझे कभी मारी है। वो
0: सुनहरा आपके साथ पढ़ती थी, कभी पढ़ी है?
1: मुझे जो है ना KG 2 में पढ़ी, लेकिन सेकंड स्टैंडर्ड का इतना अच्छे से याद नहीं है।
0: अच्छा, क्या रीजन है? आप लोगों को क्या लगता है, आप दोनों में से सबसे ज्यादा शरारती कौन है और क्यों मार पड़ी?
1: मुझे जो है ना,
0: हाँ, शर्म आ रही बताते हो?
1: नहीं, वो जो है ना, कभी मैं कुछ मैं एक स्कूल के टाइम पे या ऐसे फॉर्मल टाइम पे एक बहुत सीधी सादी बच्ची हूँ, बहुत शरीफ बच्ची हूँ।
0: अच्छा।
1: हाँ। कभी लेकिन अगर मेरे अच्छे दोस्त जो मेरे जैसे हैं, और हम लोग जो है ना स्कूल में जाते तो एकदम शरीफ लोग रहते, बस में आते तो फिर पूरा बस हिल जाता है।
0: सारी हरकतें बस में होती है।
1: हाँ।
0: तो जुनैरा सीधी है या नहीं?
1: बहुत सीधी है।
0: बहुत सीधी है,
1: कुछ ज्यादा ही सीधी है।
0: जुनैरा तुम्हें लगता तुम सीधी हो?
1: ठीक ठाक।
0: ठीक ठाक
1: देखे,
0: ठीक ठाक है। ओके, वैसे जब जुनैरा यहाँ पर बैठी है ना तो मुझे जुनैरा लग भी रही है एकदम, उसकी कुर्सी जरा भी नहीं हिल रही, लेकिन मरियम की लगातार कुर्सी दाएं से बाएं बाएं से दाएं उतर रही है लगातार। ओके, अपने सवाल पे आते हैं दोस्तों, और आज का सवाल है कि क्या ज्यादा डरावना है, सरप्राइज टेस्ट भूल जाना या फेल कर जाना? सही तरीका ये है कि सरप्राइज टेस्ट फेल कर जाना ये ज्यादा डरावना है, या फिर अपना मोबाइल भूल जाना ये ज्यादा डरावना है। तो अब हम जरा सवाल पे आते हैं, आज का एक सवाल ये है, तो आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होना है मरियम और जुनैरा, ठीक है? विच मेक्स यू स्वेट मोर, द साउंड ऑफ डिंग डिंग नोटिफिकेशन मिसिंग फ्रॉम योर फोन और योर टीचर सेइंग टेक आउट अ शीट ऑफ पेपर फॉर अ टेस्ट?
1: टेकिंग आउट अ शीट ऑफ पेपर फॉर द टेस्ट।
0: और आपको?
1: टेकिंग आउट अ शीट ऑफ पेपर फॉर।
0: ये आपने ऑनेस्टी से मुझे जवाब दिया, ये मुझे पसंद आया। आगे एक और सवाल है कि अगर ऐसा हो जाए कि एक ही दिन में आप अपना फोन कहीं भूल जाएं और एक ही दिन में आपको पता चले कि आप टेस्ट सरप्राइज वाला फेल कर गए, नाइटमेयर क्या है इन दोनों में से?
1: मुझे लगता है सरप्राइज टेस्ट फेल करना और बुरा है, मेरे पास तो फोन है भी नहीं एनी विच वेज।
0: अच्छा, आपके लिए तो नॉर्मल है फिर कि सरप्राइज टेस्ट, हां तो वो सरप्राइज टेस्ट फेल करके ये मेरे लिए डरावना है, आपके लिए क्या डरावना है सुनहरा?
1: मेरे लिए ज्यादा डरावना तो कहीं मोबाइल भूल जाना, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट लाइक मुझे मालूम है उसके ग्रेड्स मुझे कुछ लाइक रिपोर्ट कार्ड में तो इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो सरप्राइज टेस्ट है।
0: हाँ, ये भी तो एक पॉइंट है बाबा।
1: तो अगर सरप्राइज टेस्ट फेल कर दिया तो हम लोग को मालूम है हाँ ये सरप्राइज था, कुछ हाँ। कुछ नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रिपरेशन करके आएंगे।
0: हाँ।
1: बट अगर हम लोग ने फोन घर पे भूल गए तो बस टेंशन हो गई कि अरे कहीं वो खराब तो नहीं हो गया टूट नहीं गया होगा।
0: और इस पे आपका क्या कहना है?
1: फोन भूलना इतना भी बुरा नहीं है, बिकॉज तुम जो है ना वैसे जब फोन भूलते तो वो एकदम अटैचमेंट ऐसा आ जाता है कि जैसे हम फोन के बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन इतना बड़ा दुनिया है फोन के बिना, ऐसे मजे लो अपना। लेकिन सरप्राइज टेस्ट फेल करने ग्रेस ड्रॉप हो जाते हैं और डिसअप्रूवल आता है, गिल्ट आता है, स्ट्रेस होता है, तो वो जो है ना माइंड के बीच में ऐसे लिंगर होता है बाद में कि मैंने ऐसे क्यों किया। अगर थोड़ा सा भी कुछ करी होती तो अगर थोड़े से और आए मार्क आते तो फिर क्या होता था।
0: सही, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जब आप फोन में रहते हैं ना तो आपको लगता है फोन ही दुनिया है, लेकिन जब फोन छूट जाता है तब आपको एहसास होता है कि यार बाकी लोग भी तो हैं, मेरे माँ बाप भी अच्छे, भाई भी अच्छा एंटरटेनर है, टीवी भी देखा जा सकता है या बाकी काम किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सर्वाइवल पर्सपेक्टिव क्या है इसका। जुनैरा आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसा हुआ कि फोन भूल गए तो सर्वाइवल पे कुछ इफेक्ट आता है क्या असल में?
1: हाँ आता तो है, क्योंकि बहुत सारे लोग जीपीएस पे डिपेंड करते हैं।
0: आई वाह, अरे हाँ यार, ये जितने भी बाहर सुनने वाले हैं कई ऐसे जो कार चला रहे हैं और बगैर आप मैप के तो चल ही नहीं सकते, बिल्कुल सही कहा।
1: तो जीपीएस नहीं होगा तो हम लोग अपने रास्ते को समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग कहाँ आ गए।
0: हाँ।
1: और हम लोग इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर पाएंगे।
0: हाँ।
1: कि अगर हम लोग कोई ऐसी सुनसान सी जगह पे पहुंच गए और हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक बंदा भी हम लोग को नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक बस खाली रोड है या पेड़ है या कुछ भी हो।
0: हाँ।
1: तो फोन तो चाहिए रहता है कि इमरजेंसी कॉल करने के लिए, कि हम लोग मम्मी पापा को कॉल कर लें कि समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पहुँच गई, या पुलिस को कॉल करने के लिए कि यहाँ पर कुछ कार एक्सीडेंट हो गया। तो अगर हाँ एक्सीडेंट भी हो गया तब भी हम लोग अकेले अगर हुए तो फोन के बिना कैसे समझ आएगा हम लोग को कुछ करना, अगर हम लोग को कार के फिक्सिंग के बारे में कुछ नहीं आता।
0: हाँ हाँ, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन अगर आपको ये साथ देना हो मरियम, ये लेकिन आपके लिए अगेंस्ट का यू नो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम में फेल हो गई, सरप्राइज टेस्ट में फेल हो गई, एग्जाम नहीं सरप्राइज टेस्ट में फेल हो गई, तो आपको क्या लगता है कि इसके जो नुकसान है वो तो है लेकिन फिर भी फायदे क्या हैं?
1: उसके फायदे है कि लाइक वी गेट मोर मोटिवेटेड टू स्टडी हार्डर ऑन दैट सब्जेक्ट, और सो कॉन्फिडेंस आने का, जैसे मैं एस कर सकती हूँ उसको बाद में अगर मैंने सही स्टडी की तो,
0: ट्राई कर सकते हैं और अच्छा पढ़ने का।
1: हाँ, और जुनैरा के पॉइंट्स तो एकदम सही है कि पीपल कांट लिव विदाउट अ फोन, स्पेशली एडल्ट्स।
0: हाँ, देखो दोनों कितने भी मुख्तलिफ हो, दोनों ने टॉपिक कितना भी अलग चुना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ देते हुए लेकिन ये होना भी चाहिए ऑब्वियसली, और बगैर मोबाइल के भी लाइफ जो है अधूरी सी लगती है। लेकिन अगर टेस्ट आपके सामने हो, आप फेल कर जाएं, तो चार लोगों के सामने, दुनिया के सामने, फ्रेंड्स के सामने, क्या ही यू नो बुरा फील होता है। जैसे कि मरियम को फील हुआ था सेकंड क्लास में, राइट? सेकंड क्लास में मरियम मिली ही ऐसी थी सुनहरा से कि मरियम ने सरप्राइज टेस्ट फेल किया एक्चुअल में, और उसके बाद जुनैरा 10 on 10 था इनका।
1: हाँ।
0: जो स्कोर था, और उसके अलावा जुनैरा को सिखाने के लिए मैम ने कहा मरियम सीखेंगे जुनैरा से। ये भी एक पॉइंट जो आपको बताया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक FM 107 पे, और वापस आएंगे हम, मजीद बातचीत करेंगे और अलग अलग पर्सपेक्टिव देखेंगे कि क्या ये फोन भूल जाना ज्यादा डरावना है या फिर सरप्राइज टेस्ट में फेल हो जाना ज्यादा डरावना है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक FM 107 पे, दिल से।

0: ओके तो दोस्तों एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का एफएम 107 पे और ये शो है द डिबेटेबल टेबल लगातार चल रहा है। और आज का जो सवाल है वो एक्चुअली में हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेस कर चुका है, जैसे मोबाइल भूल जाना। कई बार तो मैं भी ऑफिस कतर में मोबाइल भूल कर ऑफिस आ गया हूँ और बड़ा ही अजीब लगता है। ऐसा लगता है तन्हाई जो है मेरे को एकदम से घेर लिया है चारों तरफ से। मेरे आसपास लोग होते हैं लेकिन गले जो है तन्हाई ही लगा होता है मेरे। खैर अगले सवाल पे आते हैं और सवाल वैसे हम करेंगे इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने जैसे खाने पीने की बात करी मरियम और सुनहरा, आपके अपने शहर की बात करी, कतर के बारे में बात करना चाहता हूँ। कतर की सबसे स्पेशल चीज क्या है जो सुनहरा को बहुत ज्यादा पसंद है?
1: कतर की स्पेशल चीज मुझे ये पसंद है कि कतर कितना डेवलप हुआ है सालों में।
0: हाँ
1: पहले तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था लेकिन अब देखेंगे तो हर जहाँ जाओ हर तरफ लोग खुशी से जा रहे हैं, हर तरफ लाइटें लगी हुई हैं, हर तरफ सिक्योरिटी है। तो कतर ऐसा छोटी सी कंट्री है लेकिन इतना सुंदर उसको बना दिया गया है कि मुझे बहुत पसंद है कतर अब।
0: ओके मरियम आपके लिए लेकिन डिफरेंट सवाल है, कोई एक ऐसी चीज जब आपको कतर छोड़ना पड़े कहीं और मुल्क में जाकर बसना हो, चाहे वो क्या कहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ हो या फिर आपको अच्छी जगह नौकरी मिल जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो एक ऐसी चीज जो कतर से ले जाना आपको बड़ा पसंद है या आपने साथ ले जाना चाहोगे आप, कोई भी चीज कुछ भी वट एवर, मतलब कतर की रोड भी हो सकती है, कतर की खूबसूरती में आप कुछ कह सकती है, कतर का स्टेडियम है, एनीथिंग।
2: तो मुझे लगता है कि सेफ्टी एंड क्लीनलीनेस और जो खूबसूरती है के सब जगह एकदम सेफ एंड सिक्योर है और हाँ। वो मुझे बहुत पसंद आता है। कोई भी अगर कंट्री में जाऊंगी ना हाँ। मुझे वो सब चीजें चाहिए, एक ऐसे लेवल ऑफ कंफर्ट आती है वो सब चीजें कि जो क्राइम रेट्स है ना इधर हाँ। एकदम ट्रेमेंडसली कम है।
0: करेक्ट ओके
2: सो ऐसे पीस ऑफ माइंड भी आता है कि जैसे कोई तुम्हारा कुछ चोरी नहीं करने वाला है, कोई तुम्हारा किडनेप नहीं करने वाला है
0: हाँ।
2: और वो ऐसे एक बहुत अच्छा फील करता हाँ। है
0: सेफ फील होता है बिल्कुल। जुनैरा सेम क्वेश्चन फॉर यू, अगर आपको कहीं कभी जाना हो और ऐसा लगे कि नहीं मैं कभी कतर से इस चीज को भूलना नहीं चाहूंगी, उसको साथ ले जाना चाहूंगी, तो वो क्या होगा जुनैरा?
1: ये मेरा खुद का आंसर है, कतर की जो मुझे लाइक स्ट्रेट कैट्स दिखती हैं
0: हाँ।
1: वो बहुत फ्रेंडली होती हैं, बहुत क्यूट होती हैं
0: हाँ।
1: इंडिया में या कोई भी मुल्क में मुझे कतर की कैट्स ले जाना लाइक मैं चाहूंगी कि कतर
0: की कैट्स, यहाँ की जो कैट्स आपको दिखती हैं स्ट्रीट कैट्स
1: हाँ, और कतर की जो बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स होती हैं, कतर एक म्यूजियम बहुत ही सुंदर जगह है, उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी बड़ी, तो वो भी मैं चाहूंगी कि वो मैं अपने साथ ले जाऊं।
0: हाँ ओके तो दोस्तों देखिए ये कतर की तो खूबसूरती है ही ऐसी कि आप कतर की सेफ्टी और खूबसूरती को अपने साथ हमेशा ताउम्र रखना चाहते हैं। मेरे साथ एक चीज है जो हाल ही में मैंने नोटिस करी है, हालांकि ये बहुत पहले नोटिस करी लेकिन मैंने अपने अंदर नोटिस करी है, वो ये है कि जब बारिश होती है ना तो कतर बहुत खूबसूरत लगता है। बारिश के बाद जो रोड गीली होती है और रेड लाइट पे आप जब रुकते हैं वो जमीन पे जब उसकी रोशनी पड़ती है वो खूबसूरत लगती है, भारी बारिश होती है तो जो पेड़ से पत्तियां गिरती हैं वो खूबसूरत लगती हैं, जो बादल हैं आसमान देखने में मजा आता है, जो साफ बिल्डिंगें हो जाती हैं वो और ज्यादा देखने में मजा आता है, और कॉर्निश का जो नज़ारा होता है वो होता है कतर का लाजवाब। हम सब इंतजार कर रहे हैं खूबसूरत बारिश का और उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के बाद या कहें इस डिबेटेबल टेबल के साथ बारिश जो है वो होगी या इसके बाद होगी। लेकिन अब ये शो हमारा इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले हम दोनों को 30-30 सेकंड देंगे मरियम और जुनैरा, जहां पर आप अपने पॉइंट्स पर लेकर या कहें अपने टॉपिक पर कुछ पॉइंट्स या कुछ बातें कहेंगी, और ये फाइनल 30 सेकंड होंगे। कटघरे में ये सवाल होंगे और आप दोनों लॉयर होंगी इस टॉपिक की, है ना, जहां पर आप अपने अपने टॉपिक पे कुछ थोड़ा 30 सेकंड के लिए बोलेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट है ये, और जज जो हमारे बाहर बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या ज्यादा स्केरी है, सरप्राइज टेस्ट फेल कर जाना या फिर फोन घर पे भूल जाना। एफएम 107 पे सबसे पहले जो मैं मौका दे रहा हूं वो दे रहा हूं जुनैरा को, 30 सेकंड है आपके लिए, अगर आप घर पे फोन भूल जाएं तो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आपका क्या है?
1: घर पे फोन भूल जाएंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी रास्ते में, अगर हम लोग कहीं खो गए तो GPS हम लोग को चाहिए रहेगा बट GPS नहीं मिलेगा
0: हाँ।
1: और आजकल के बहुत सारे जो लोग हैं उनको ट्रेडिशनल मैप यूज करना नहीं आता है, तो हम लोग GPS पे बहुत रिलाई करते हैं, या अगर हम लोग कहीं हो हम लोग लाइक हम लोग के पास कुछ खाना ना हो तो हम लोग ऑर्डर भी नहीं कर पाएंगे अगर भूख लगी तो, और बहुत सारे लोग खाना पैक करके भी नहीं ले जाते हैं, बस छोटे मोटे स्नैक्स ले जाते हैं कि ट्रिप पर एंजॉय कर पाए। और अगर फोन भूल गए हम लोग को टेस्ट के लिए पढ़ाई करनी हो तो अगर हम कुछ लोग एआई के बिना नहीं पढ़ाई कर सकते हैं
0: हाँ.
1: क्योंकि उनको एआई से ऐसे दोस्ती का लाइक फील होता है कनेक्शन हो जाता है कि वो एआई उनको समझा देता है इतने आराम से और बहुत प्यार से और बहुत सारे फोन आजकल बहुत सारे लोग आजकल अपने फोन के बिना नहीं रह पाते हैं
0: करेक्ट
1: तो उनको परेशानी होगी वो पूरा दिन टेंस रहेंगे वो पूरा दिन उनका वेस्ट में चला जाएगा कि उनको एंजाइटी हो रही है कि अरे मैं फोन के बिना अब कैसे रहूं अब कुछ क्या करूं
0: हाँ।
1: वैसे भी दुनिया इतनी अच्छी तो है फोन के बिना लेकिन हाँ। जो लोग अपने फोन से इतना अटैच है
0: हाँ।
1: वो नहीं समझ पाएंगे वो बस टेंशन में रहेंगे
0: यार जब जुनैरा ने कहा ना कि कुछ लोग नहीं रह पाएंगे उसमें कुछ लोग में फजील भी अपने बगैर फोन के रह नहीं सकता ऐसा लगता है कि जरूरत है वो आज की लेकिन स्टेटमेंट के लिए हम मरियम की तरफ बढ़ेंगे अगर क्या लगता है आप सरप्राइज टेस्ट फेल हो गई तो क्या होगा ज्यादा स्केरी है क्लोजिंग स्टेटमेंट
2: हाँ वो जो है ना वो ऐसे माइंड के पीछे ऐसे रहता है कि जैसे हमने फेल किया रिमेंबर टू योर होल लाइफ फोन भूलना इतनी बड़ी बात नहीं है कि घर पे आके तो मिल जाती है ना इवन
0: हाँ.
2: तो पेमेंट जीपीएस और वो सब का प्रॉब्लम है बट पहले भी तो अगर तुम कैश भी लेके जाएंगे तो भी काम चल सकता है जैसे तो डायरेक्शन से पूछ सकते हैं पर सरप्राइज टेस्ट जो है ना एक ही बार हो सकता है वही टॉपिक पे तो वो फेल करना मतलब वो पूरा टॉपिक फेल करना एंड टॉपिक फेल करना इज लाइक यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कि यू कांट लाइक मास्टर इट इवन दो यू लिसन टू इट इन लेक्चर्स एंड वो ऐसे एक स्ट्रेस गिल्ट और वैसे सब अजीब अजीब सब फील करता है कि यू डोंट फील कंफर्टेबल आफ्टर फेलिंग तो जो पीयर प्रेशर है ना वो भी आ जाता है टॉपर है और तुमने फेल कर दिया तो सब लोग तुम्हारे वो घूर के देखते रहते हैं फिर क्लास में ऐसे वो ऐसे फील होता है कि हम तुम्हारे हम दूसरे लोगों से नीचे है और ऐसा प्रेशर फील करता है एकदम
0: आई वाह ओके तो दोस्तों इसी के साथ ये आज का जो शो है द डिबेटेबल टेबल का टॉपिक जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन सा पार्ट लेना चाहेंगे कौन से टॉपिक पर आप साथ देना चाहेंगे जुनैरा का साथ देना चाहेंगे या मरियम का साथ आप हमें बता सकते हैं नंबर है 6662217 लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई एक सही जवाब भी यू नो मुझे मिल पाया क्योंकि मुझे एक तरफ लगता है कि बिल्कुल सही बात है मरियम की कि आपकी इमेज जो है क्लास में आपके पेरेंट्स की जो यू नो थॉट्स हैं आपको लेकर कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करेगा एक्सपेक्टेशन जो है वो उन पर हम खरे नहीं उतरते हैं उसके अलावा सरप्राइज टेस्ट फेल करने का एक सबसे बड़ा जो नुकसान है टीचर की नज़र में हमारी जो इज्जत है वो कम हो जाती है लेकिन एट द सेम टाइम जब जुनैरा ने ये कहा कि जीपीएस खाना ऑर्डर ना कर पाना बगैर ट्रेडिशनल मैप इस्तेमाल करना नहीं आता विच इज ट्रू उसके अलावा हम कहीं जाते हैं हमें इमरजेंसी कॉल की जरूरत पड़ती है ये सारी जो चीजें हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जायज हैं और ये इसी के साथ मुझे लगता है कि इस शो को इख्तिताम देना पड़ेगा लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं ये आखिरी सवाल करूंगा और फिर ये आपके ऊपर भी मैं छोड़ दूंगा दोस्तों जो हमें बाहर सुन रहे हैं और मरियम और जुनैरा के जो जवाब होंगे इस पे मैं कोई भी अपना पॉइंट नहीं बोलने वाला वो ये है कि वुड यू रेदर स्पेंड वन फुल डे विदाउट योर फोन और फेस अ फेल्ड टेस्ट रिपोर्ट कार्ड
2: आईड रेदर फॉरगेट माय फोन एट होम
0: ओके एंड यू
1: मी टू
0: सेम
1: Yeah.
0: Okay. हाँ नहीं पास तो होना सबको यू नो अच्छा लगता है और फोन भूल जाओ वो ठीक है वो बर्दाश्त है लेकिन फेल नहीं होना चाहिए चार के सामने बेइज्जती नहीं चाहिए अपने को इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत ये शो लाता हूँ मैं अपने इख्तिताम को अगले शो में आपसे करेंगे मुलाकात जिसका टॉपिक होगा मुख्तलिफ और कटघरे में होंगे दो स्टूडेंट्स सुनते रहे FM 107 दिल से देसी
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: तुम कर शेक अप आंखों में फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अप दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Smart money. Hello and welcome to our segment called Smart Money. Main hoon aapki dost, aapki host Nasia. और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो हमारे पैसों को मैनेज करने का तरीका तेजी से बदल रही है, यानी आज का टॉपिक है मोबाइल वॉलेट्स। दोस्तों, एक वक्त था जब घर से निकलते वक्त सबसे पहले हम अपना वॉलेट चेक करते थे, कैश है कि नहीं, डेबिट कार्ड साथ है कि नहीं। लेकिन आजकल बहुत से लोगों के लिए उनका स्मार्टफोन ही वॉलेट बन चुका है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मोबाइल वॉलेट होता क्या है। देखिए, मोबाइल वॉलेट एक डिजिटल एप्लीकेशन होती है जो आपको अपने स्मार्टफोन के जरिए पैसे भेजने, रिसीव करने, बिल्स पे करने, ऑनलाइन शॉपिंग करने और कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सहूलत देती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये आपकी ट्रेडिशनल वॉलेट का डिजिटल वर्जन है। आजकल मोबाइल वॉलेट्स की पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि ये फास्ट है, कन्वीनियंट है और यूजर फ्रेंडली है। सोचिए, आप ग्रोसरी स्टोर में हैं, रेस्टोरेंट में बिल पे करना है या किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफर करने हैं, कैश ढूंढना या एटीएम जाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ मोबाइल खोला और ट्रांजेक्शन कम्प्लीट। यही वजह है कि डिजिटल पेमेंट्स दुनिया भर में रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। मोबाइल वॉलेट्स का एक बड़ा फायदा है कन्वीनियंस। आप 24 आवर्स किसी भी वक्त ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ना बैंक की लाइन और ना ही कैश कैरी करने का टेंशन। खास तौर पे इमरजेंसी सिचुएशंस में तो ये बहुत यूजफुल साबित होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है स्पीड। आज की इस बिजी लाइफस्टाइल में लोग फास्ट सॉल्यूशंस चाहते हैं। मोबाइल वॉलेट के जरिए पेमेंट सिर्फ चंद सेकंड्स में कंप्लीट हो सकते हैं। और तीसरा फायदा है रिकॉर्ड कीपिंग। अक्सर हम याद नहीं रख पाते कि पैसे खर्च कहाँ हुए। मोबाइल वॉलेट एप्स ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सेव करती है जिसे आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। ये बजटिंग और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट में भी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ कन्वीनियंस होती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। मोबाइल वॉलेट्स यूज करते वक्त सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और सबसे पहले अपने फोन को पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन से सिक्योर रखिए।

0: अगर फोन लॉक ना हो और किसी गलत शख्स के हाथ लग जाए तो फाइनेंशियल रिस्क पैदा हो सकता है। दूसरी बात, सिर्फ ऑफिशियल और ट्रस्टेड मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशंस ही यूज कीजिए। अननोन लिंक्स या फिर फेक एप्स डाउनलोड करने से बचिए। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर फेक एप्लीकेशंस के जरिए यूजर्स की इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। और तीसरी अहम बात, अपना OTP, पिन और पासवर्ड कभी भी किसी भी सूरत में किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे कोई खुद को बैंक रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना बताए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, मोबाइल वॉलेट सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं है। आजकल कई वॉलेट रिवॉर्ड्स, कैशबैक ऑफर, बिल रिमाइंडर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड और बजटिंग टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। इससे लोग अपने डेली फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। स्मार्ट मनी का आज का हमारा जो पावरफुल टेक अवे है वो ये कि मोबाइल वॉलेट आपके पैसों को आपके मोबाइल तक ही लाता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। दोस्तों, आज का हमारा पावरफुल लेसन ये है कि मोबाइल वॉलेट आपके पैसों को आपके मोबाइल तक ही लाता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है। अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। और बाकी सारी अपडेट्स के लिए हमें सुनते रहें। फिलहाल मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को यानी स्मार्ट मनी से इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamualaikum. आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट. मैं हूं आपकी आरजे महावश. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की. यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है. आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें. कल हमने कतरी चावल के खानों का तारुफ हासिल किया था. आज हम एक ऐसे खाने की कहानी जानेंगे जो कतर के घरों, शादियों और जश्नों में खास मकाम रखता है. मजबूज, जिसे मजबूज भी कहा जाता है. चावल और गोश्त मुर्गी या मछली से तैयार किया जाने वाला खुशबूदार खाना है. कतर की वजारत सकाफत के मुताबिक ये रोजमर्रा के खानों के साथ साथ छुट्टियों, खास मौके और शादियों में भी तैयार किया जाता है. इस डिश की जान इसका मसाला है. हल्दी, इलायची, दालचीनी, जीरा और लौंग जैसे मसाले चावल और गोश्त में धीरे धीरे अपना जायका उतारते हैं. सबसे खास जो होता है वो इसका सूखा हुआ काला नींबू है. यह हल्का खट्टा और पूर खुशबू जायका पेश करता है, जिसे गर्ल्स के खानों की खास अलामत समझा जाता है. मजबूस बनाने में सब्र की जरूरत होती है. गोश्त को पहले मसालों और शोरबे के साथ पकाया जाता है ताकि वो नरम हो जाए. फिर चावल इसी खुशबूदार शोरबे में पकते हैं. इस तरह चावल का हर दाना गोश्त, मसालों और लुव में या

0: यानी खट्टे नींबू का जायका अपने अंदर जज कर लेता है। इस डिश की खूबसूरती यह है कि इसके कई अंदाज हैं। किसी घर में लैम्प मजबूस मशहूर होता है, किसी के घर में चिकन, जबकि कतर के साहिली आबादियों में मछली वाला मजबूस भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। कुछ मशहूर किस्मों में अलबदवी, अलखबसा, अलबैदा यानी वाइट खबसा भी शामिल है। मजबूस सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि मिल बैठने का एक तरीका भी है। अक्सर इसे एक बड़ी थाली में पेश किया जाता है और दस्तरखान के दरमियान में रख दिया जाता है। घर वाले या मेहमान इसके गिर्द बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं और वक्त साथ गुजारते हैं। खतरी कल्चर में मेहमान के लिए ज्यादा खाना तैयार करना इज्जत और करम की निशानी समझा जाता है, इसलिए मजबूस को फरागी से पेश किया जाता है। बड़ी थाली सिर्फ ज्यादा खाने की अलामत नहीं होती बल्कि ये पैगाम देती है कि जगह और मोहब्बत सबके लिए है। कहा जाता है कि इस खाने की कहानी कतर की समंदरी और तिजारती तारीख से भी जुड़ी हुई है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मसाले तिजारत के जरिए इस इलाके तक पहुंचे। यहाँ के लोगों ने इन मसालों को अपने मकामी गोश्त, मछली और चावल के साथ मिलाकर एक ऐसा जायका पैदा किया जो वक्त के साथ कतरी पहचान का हिस्सा बन गया। हर घर का मजबूस थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। किसी के घर में लोमी की खटास ज्यादा होती है, कोई जाफरान की खुशबू को नुमाया करता है और कोई गरम मसालों को हल्का रखता है। ये फर्क इस बात का सबूत है कि रिवायती खाना जिंदा रहता है क्योंकि लोग उसे अपनी पसंद और अपनी यादों के साथ आगे लेकर चलते हैं। आज भी मजबूस कतर में रेस्टोरेंट्स, घरों और कल्चरल इवेंट्स में नजर आता है। नई नस्ल इसे बनाना भी सीख रही है और नए अंदाज में पेश भी कर रही है, लेकिन इसकी बुनियादी रूह यानी साझा करना और मेहमान का एहतराम करना बदलती नहीं। तो अगली बार जब आप मजबूस देखें तो सिर्फ रंग बिरंगे चावल और नरम गोश्त ना देखें। इसमें कतर के बाजारों की मसालों वाली खुशबू, समंदर से मिला रिश्ता, घर के बुजुर्गों की महारत और मेहमान के लिए दिल की वसत भी शामिल करें। आज के कल्चर मोमेंट का खुलासा ये है कि मजबूस कतर का एक पसंदीदा खाना ही नहीं बल्कि एक ऐसी रिवायत है जो खानों को रिश्तों, यादों और मेहमान नवाजी से जोड़ देती है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।

पाकिस्तान के एक ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर जिन्होंने अपनी तेज तरीन बॉलिंग और एग्रेसिव स्टाइल से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई। वासिम अकरम की बात नहीं कर रहा हूँ, ना इमरान खान की बात कर रहा हूँ, ना सरफराज नवाज के बारे में बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट के साथ, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। तो आपने कुछ गेस किया, चलिए मैं ही बता देता हूँ, बात हो रही है सिकंदर वक्त के बारे में। सिकंदर वक्त का पूरा नाम सिकंदर वक्त जान है। वो 29 अगस्त 1957 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के उन बॉलर्स में होता है जो 1970s के आखिर और 1980s के दौर में नेशनल टीम का हिस्सा बने। सिकंदर वक्त राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर थे और उनकी बॉलिंग में पेस के साथ स्विंग भी देखने को मिलती थी। सिकंदर ने पाकिस्तान के लिए 26 टेस्ट मैचेस खेले और इन मैचेस में उन्होंने 66 विकेट हासिल किए। उनका टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 4 विकेट्स फॉर 32 रन्स रही। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 27 ओडिया यानी वन डे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले और ओडीआई क्रिकेट में 22 विकेट्स अपने नाम किए। दोस्तों, उनका इंटरनेशनल करियर एक ऐसे वक्त में था जब पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स की एक ऐसी मजबूत ट्रेडिशन डेवलप हो रही थी। इमरान खान, सरफराज नवाज और बाद में वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे बॉलर्स ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग आइडेंटिटी को दुनिया भर में मशहूर किया। सिकंदर भी इसी जनरेशन का हिस्सा थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अहम मैचेस में बॉलिंग अटैक को सपोर्ट किया। अगर उनकी जर्नी के बारे में बात करूं तो शुरुआत होती है 1982 का इंग्लैंड टूर से। क्रिकेट में उनका डेब्यू तो पहले ही हो गया था। इनफैक्ट 1979 का जो इंडिया का दौरा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो उसमें सिकंदर वक्त वाज वन ऑफ द मेन बॉलर्स। उनका जर्नी का एक खास पहलू उनका 1982 का इंग्लैंड टूर था। पाकिस्तान की टीम उस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही थी और सिकंदर वक्त ने भी बॉलिंग अटैक में अपना किरदार बाखूबी निभाया। उनकी एबिलिटी थी कि वो बल्लेबाज को पेस और मूवमेंट के जरिए दबाव में ला सकते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करो तो वहां पर भी सिकंदर वक्त ने अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। उनका डोमेस्टिक एक्सपीरियंस बाद में क्रिकेट एनालिसिस और कमेंट्री में भी काम आया। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सिकंदर वक्त ने क्रिकेट से अपना रिश्ता खत्म नहीं किया। वो टेलीविजन पर क्रिकेट एनालिस्ट और कमेंटेटर के तौर पर नजर आए और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अपनी राय देते रहे। यानी उनका एक्सपीरियंस खास तौर पर पाकिस्तान के तेज तरीन जो बॉलर्स थे, फास्ट बॉलर्स और नेशनल टीम की परफॉर्मेंसेस पर उनका एक बड़ा अहम रोल रहा है टू डेवलप इट एज एन एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट कमेंटेटर। सिकंदर वक्त का करियर हमें दोस्तों ये बताता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं, हाँ, ही नेवर प्लेड दैट बिग इनफ लाइक वसीम अकरम और वकार यूनुस, बट अगर उनकी जो प्रोफिशिएंसी की बात करूँ, उनकी जो कैपेबिलिटी एबिलिटी एज अ फास्ट बॉलर, दैट वाज रियली आउटस्टैंडिंग। और इंडिया में तो काफ़ी वो सक्सेसफुल रहे 1979 सीरीज में। तो दोस्तों, क्रिकेट में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं बल्कि एक खिलाड़ी का अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन भी अहम होता है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक ऐसे मुश्किल और कॉम्पिटिटिव दौर में फास्ट बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाली और नेशनल टीम को अपनी सर्विसेज दी, जहां से ये हम आसानी से कह सकते हैं कि वाज वन ऑफ द टॉप स्टार्स इन द पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप 1970s के आखिर और 1980s के कुछ इन द बिगिनिंग। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिकंदर वक्त की, पाकिस्तान के उन फास्ट मीडियम बॉलर्स में से एक जिन्होंने अपने दौर में नेशनल टीम की बॉलिंग को मजबूत बनाने में अपना हिस्सा डाला। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और दिलचस्प स्पोर्ट्स पर्सन के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी
2: क्रिकेट हो
3: एंड ही इज हुक दैट अवे दैट्स फोर रन
2: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM
4: क्योंकि यहां होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स की
2: दोस्तों रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग जिंदगियों और मालो दौलत के लिए एक सीरियस खतरा है और एक संगीन ट्रैफिक वायलेशन भी है और इसके लिए सख्त सजाएं दी जाती हैं जिनमें कैद और गाड़ी की जब्त शामिल है विदारत दाखला अपने इरादों का वाजे तौर पर इजहार करती है कि वो ट्रैफिक कवानीन को मजीद मुसलसल तौर पर नाफिज करेगी ताकि कम्युनिटी की सिक्योरिटी और खुशहाली को महफूज रखा जा सके रेकलेस और लापरवाह ड्राइविंग न सिर्फ जिंदगियों को खतरे में डालती है बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बनती है ऐसे रवैये सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि समाजी और कौमी अमन और इत्मीनान को भी नुकसान पहुँचाते हैं FM 107 इस बात की मुसलसल ताकीद करता है ताकि हम सब इससे सीखें और ऐसे रवैये इख्तियार ना करें FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
1: फुटबॉल का असली रंग असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन इट्स अ गोल शो जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन
5: हाइलाइट्स कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा डोंट मिस इट इट्स अ गोल शो With Muhammad Amin every Sunday and Thursday at 1 p.m. live on FM 107 Dil Se Desi.
6: आप सुन रहे हैं FM 107
7: FM 107
1: Dil Se Desi.

0: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत खुशामदीद साथियों, आप सुन रहे हैं जनरेशन टॉक ऑन एफएम 107 कतर। और भाई मैं हूँ आपकी होस्ट सफा। साथियों, जनरेशन टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मुख्तलिफ जनरेशन के एक्सपीरियंसेस, सोच और ओपिनियंस एक ही कन्वर्सेशन में एक साथ मिलते हैं। देखिए, यहाँ हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारे एम्बिशंस हैं, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, रिलेशनशिप्स, करियर, वैल्यूज और फ्यूचर। क्योंकि हर जनरेशन की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं और सक्सेस को देखने का अपना ही एक अलग अंदाज होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सक्सेस का मतलब वक्त के साथ बदल गया है? देखिए भाई, एक जनरेशन के लिए अच्छी जॉब, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबल लाइफ सक्सेस हो सकती थी, जबकि आज की यंगर जनरेशन पैशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप और वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकती है। तो भाई आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि द चेंजिंग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अक्रॉस जनरेशंस। और साथियों, अगर आप भी अपने ओपिनियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, और चाहे तो हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो किया जा सकता है, जिसका हैंडल है FM107 कतर। इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक बहुत ही हमारे अच्छे और प्यारी सी गेस्ट से, और उनसे हम अपना बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक के लिए सुनते रहें FM107 दिल से देसी। वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं FM107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा, और भाई हमारे शो का नाम है जनरेशन टॉक। चलिए भाई शुरू करते हैं एक ऐसी कन्वर्सेशन जो शायद आपको अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। और भाई आज इस मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है अरीज यूसुफ। देखिए, अरीज जो है ना वो टेक्निकल इंजीनियर के प्रोफेशन से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ है, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ उनका एक और पैशन है, पता है क्या? टीचिंग, दूसरों को इल्म बांटना। अरीज ने मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को टीच किया है, और जहाँ उनका एक्सपीरियंस सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि उन्होंने 4 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के स्टूडेंट्स तक का जो है उन्होंने उनको पढ़ाया है, उनका साथ दिया है। आज वो एक प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर अपना टीचिंग का जो करियर है, जो जर्नी है, उसको कंटिन्यू कर रही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अरीज माशाल्लाह से 5 सिबलिंग्स में सबसे बड़ी हैं, और उनकी यंगेस्ट सिबलिंग जो है वो सिर्फ 11 साल की हैं। भाई इस वजह से भी मैं कहूँगी कि उन्हें डिफरेंट एज ग्रुप्स की थिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस और पर्सपेक्टिव को क्लोजली ऑब्जर्व करने का मौका भी मिला है।

0: मैं अरीज को जितना जानती हूँ भाई, तो भाई उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ने उन्हें उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पहली बात तो ये, और इतनी अच्छी हैं कि उन्हें पाकिस्तान की तरफ से जापान में डेलीगेट बनकर रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया था, और आज वो हमारे साथ ये एक्सप्लोर करने के लिए आई हैं कि सक्सेस का मतलब डिफरेंट जेनरेशंस के लिए डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, अरीज को वेलकम करते हैं। अरीज, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
0: पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि अरीज, माशाल्लाह से मुझे वैसे तो पता है कि आप बहुत पोलाइटली बात करती हैं, लेकिन आपकी आवाज़ ना मुझे बहुत कम आ रही है, तो आपको थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा।
1: चलिए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स सो वंडरफुल टू हैव यू एट दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा जी अरीज, मैं आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ जनरेशन टॉक में।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: और क्योंकि आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेरे साथ शेयर की थी, मेरी थोड़ी सी अरीज से ऑफ एयर भी बात हो चुकी है, तो इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी डिफरेंट किस्म की बात मुझसे शेयर की थी, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन में आई, तो मुझसे रहा ना गया कि मैं जो है अरीज को कहूँ कि आप ऑन एयर आए और हमारे साथ ये बात अलग लेवल पे करें। अरीज का मानना है कि डिफरेंट जनरेशन में बर्नआउट की डेफिनेशन भी डिफरेंट हो सकती है। तो भाई, अच्छी कन्वर्सेशन में हम सक्सेस के साथ साथ बर्नआउट प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और वर्क लाइफ बैलेंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। और अरीज, सबसे पहले तो भाई आपकी तरफ गेंद उछाला जा रहा है, सवाल ये किया जा रहा है कि आपके नज़दीक सक्सेस का असली मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर अचीवमेंट, पर्सनल हैप्पीनेस या अपनी जिंदगी पर कंट्रोल?
1: मेरी नज़र में हर किसी का इस पे अलग पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से जो है वो ये पर्सपेक्टिव फॉर्म होता है, और मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में ये चेंज हुआ है। जैसे इनिशियली मेरी नज़र में था कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है, मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे एक अपने करियर पाथ परसू करना है, अपनी फील्ड में एक जॉब करनी है और उसी में रिसर्च करनी है, अच्छा। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी बदल के, अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस करें, तो उसमें मुझे हो गया कि नहीं, मुझे एक फिक्स टाइमिंग अपनी उसमें कैद नहीं होना। आई वांट टू बी एबल टू चूज कि मैं किन आवर्स में जो है वो खुद ऑपरेट करती हूँ, और उससे मुझे कंबाइन करना है अपना पैशन, ताकि मुझे ये फील ना हो कि आई क्या मुसीबत है कमिंग टू द थिंग विद बर्न आउट। जब आप ऐसा कुछ करें तो जब आपका पैशन नहीं है तो फिर यू फील बर्न आउट बिकॉज यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम, जिसमें आप ऐसा महसूस करने लगते हैं, थकन होने लगती है, यही वजह है इसके। तो मेरे लिए पर्सनली एक शॉर्ट उसमें कहा जाए तो है सेल्फ कंटेंटमेंट, जो इनर पीस होता है,
0: इनर पीस
1: वो मेरी नजर में सक्सेस है।
0: ओके। अच्छा, दूसरा सवाल ये आपसे कि आपने डिफरेंट एज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ठीक है, आप क्या कहेंगी कि ये जो यंग बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा कि इनको लेकर अगर मैं बात करूं, तो क्या मेजर चेंज आपने ऑब्जर्व किया कि इनके लिए सक्सेस का मतलब या इन्हें समझ में नहीं आ रहा, या बस इख्तलाफ रखना है इन्होंने सक्सेस के तरीके से या सक्सेस को लेकर, तो ये कुछ मुख्तलिफ है बाकी जनरेशन से?
1: मेरी नज़र में आजकल बेचारी रीसेंट जो नई जनरेशन है उनको बहुत ज्यादा जो है वो गलत समझा जाता है।
0: अच्छा,
1: उनको समझा जाता है जैसे कि उनको समझ नहीं है और भटक गए हैं ऐसा कुछ, लेकिन हमें ऐसा महसूस इसलिए होता है क्योंकि उनकी वही बात है, डेफिनेशन अलग है हमसे, हम उन लोगों में से हैं, या हमारे जो पिछली जनरेशन है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, उनकी जनरेशन में ऐसी सोच है कि भाई आपके सक्सेस का मतलब है कि भाई वही आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, एक फैमिली है, आप एक जगह है, आपका घर चल रहा है, बस यही है।
0: सही।
1: लेकिन आजकल की जनरेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ को, जैसा कि आपने कहा,
0: प्रायोरिटी देते हैं,
1: बैलेंस को प्रायोरिटी देते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर देम, कि ऐसा नहीं है कि वो करियर ओरिएंटेड नहीं है या उनके पैशन नहीं है, लेकिन उनके लिए ये बहुत स्ट्रिक्ट रेड लाइन है कि भाई हमें जो है वो ये इन चीजों को प्रायोरिटी देनी है, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने पैशन को फॉलो करने का, और अपने वक्त पे

0: अपना कंट्रोल होने का, जैसा कि आपने कहा अपनी लाइफ में अपना करने का, ये सब चीजें वो देखते हैं और उनकी नजर में है. और मैं इस चीज से हैरान होती हूँ कि उनकी ये जो डेफिनेशन है सक्सेस की, ये बहुत जल्दी चेंज हो गई. मतलब मैंने देखा कि बहुत कम एज के जो बच्चे होते हैं उनसे अगर कम एज में मेच्योर, जैसे मेरी उनसे बात हो रही थी, कभी किसी नए स्टूडेंट से होती है, कभी जो जिन स्टूडेंट से मेरा चल रहा होता है उनसे बीच बीच में कॉन्वर्सेशन होती रहती है, तो उनसे आप पूछें तो आपको क्या बनना है, तो बहुत आपको मुख्तलिफ जवाब मिलेगा. हमारी तरह डॉक्टर इंजीनियर पे नहीं रुक जाएंगे.
1: सही.
0: तो ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है जनरेशन में. और मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको समझ नहीं है, मैं ये कहूंगी उनकी समझ मुख्तलिफ है.
1: सही. अच्छा, मेरा आपके साथ एक पर्सनल कनेक्शन भी है मेरा इनके साथ. और ये बात तो मैं मानती हूँ कि अरीज जो है ना वो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि मामला ये है कि जनरेशन गैप होता ही होता है बच्चों में और जो है ना माँ बाप में. तो अम्मा अब्बा कभी कभी चाहते भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे होते. और भाई आपको जो मैंने जैसा मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको एज अ डेलीगेट भी चूज़ किया गया था, तो ये बात तो मैं मानती हूँ कि हाँ, अरीज जो है ना वो 10/10 हैं, जो नई जनरेशन है उनके लिए समझा लेती हैं बात. अच्छा अरीज, मुझे एक बात बताइएगा कि ओल्डर जनरेशन के लिए सिक्योर जॉब सक्सेस की निशानी थी एक टाइम पर. ये था हमारे अम्मा अब्बा के लिए भी, ये था कि हाँ भाई ये फलाना फलाना जॉब है, इतना इतना कमा लेते हैं तो जिंदगी बहाल हो गई. जबकि आज की यंगस्टर्स पैशन और फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. भाई आपके ख्याल में ये जो एक फ्लिप आया है, एक बिल्कुल ही रोटेशन चेंज हो गई है ना, तो आपको क्या लगता है ये कभी क्या ये कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है या ये कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज है, ये क्या क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में?
0: मेरी नज़र में इसका जो है ना मुख्तसर सा जवाब ये होगा कि पहले जो है वो इंसान मशीन की तरह चल रहे थे, और अब इस नई सोच और नए पर्सपेक्टिव की वजह से ऐसा नहीं होगा. इंसान इंसान की तरह होंगे,
1: सही,
0: मशीनों की तरह नहीं.
1: सही.
0: तो ये बिल्कुल मेरी नज़र में जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव चेंज है. और क्योंकि मैंने पर्सनली खुद इस चेंज को एक्सपीरियंस किया है, जैसे मेरे अपने करीबी जो है वो बहुत सारे फैमिली के और वैसे भी लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, स्पेशली फीमेल्स जिनको मैं देखती हूँ कि वो अपनी जॉब भी फिर घर भी और इन सब चीजों में वो इतनी एग्जॉस्टेड हो रही थी बिकॉज देयर स्प्रेडिंग देमसेल्व सो थिन. मतलब ये भी कर लू जल्दी जल्दी कर लू, ये भी होने के मध्य में, ये भी होने के मध्य में, तो इस वजह से जो है वो इस जनरेशन को वो फेस नहीं करना पड़ेगा.
1: सही.
0: क्योंकि अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं.
1: सही सही सही. अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि हर जगह आप यू स्प्रेड योरसेल्फ थिन, तो हम इसे एक किस्म का बर्नआउट ही कहते हैं. लेकिन डिफरेंट जनरेशन में बर्नआउट की डेफिनेशन डिफरेंट थी. आपके एक्सपीरियंस में एक ओल्डर पर्सन या एक ओल्डर जनरेशन का जो इंसान होता है, आपको क्या लगता है कि इस जनरेशन में क्या बर्नआउट खत्म हो गया है? और अगर इस जनरेशन में बर्नआउट है भी, ऐसा हो नहीं सकता कि बर्नआउट ना हो उनके पास, आपको कुछ लगता है कि ये बर्नआउट को कुछ डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं? क्या कहते हैं?
0: यही है बात, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ कि डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं. इसकी मेरे पास एक मिसाल कि जैसे हमारी जो ग्रैंड मदर्स होती हैं, नानियां, हमारी दादियां,
1: सही, सही.
0: उनका ये होता है कि उनको है कि उनको ये प्रूव करना होता है कि भाई हमने तो इतना सा खाया. एग्जैक्टली, कि उनको ये शो करना होता है, प्रूव करना होता है कि हमारी जो
1: बेसिक
0: की नीड्स होती है ना, वो भी हमें करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस काम ही करते रहते हैं, जिसके उनको दिखाने की जरूरत महसूस होती है. तो उनका जो बर्नआउट है ना, वो मेरी नजर में बहुत ज्यादा फिजिकल था.
1: सही सही.
0: क्योंकि वो सही ये चीजें प्रूव करने के लिए जो है वो सही खाते पीते और आराम फरमाना नहीं करते थे.
1: लेकिन आराम तो वो था ना, आराम तो ये था कि लेजी ने, जैसे आजकल की जनरेशन को ताना पड़ता है कि भाई ये तो लेजी है, ये इनके पास जो है ना.
0: आपने सही बात की है.
1: तो हमारे जनरेशन में जो है वो, या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में सबसे बेहतरीन इंसान वो था जो फिजिकल वर्कआउट में नजर आए, लुक बिजी नजर आओ लेकिन नजर आओ.
0: बिल्कुल, बैठा होना दिखे भाई, ज्यादा आराम करता होना दिखे, बड़ा लेजी है.
1: अच्छा, ये
0: लेकिन आज के जनरेशन में ऐसा नहीं है.
1: आज की जनरेशन दिमाग से कुछ अलग हटके काम करती, बहुत अलग से थे वो.
0: बर्नआउट है जो आजकल की जनरेशन है, लेकिन इनका फिजिकल नहीं है वो,
1: इनका मेंटल बर्नआउट है.
0: एग्जैक्टली, मेंटल.

0: बनाठे, ये लोग स्ट्रेस को बहुत अलग नजर से देखते हैं, जो मेरी नजर में अच्छी वो है।
1: कहीं इसी वजह से तो ऐसा नहीं कि ये खामोश रहते हैं?
0: जी
1: सही सही सही। तो सामीन, मैं चाहूंगी कि हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लें। सुनते रहिए FM 107 पर जेनरेशन टॉक विद सफा।
2: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स। जनरेशन टॉक्स
1: आजकल की जनरेशन का एक और इशू है ना, कि ये ज्यादा इनके बारे में, ये भी एक, आप मानती हैं इस बात को, इनके बारे में एक ये भी राय दी जाती है, एक ओपिनियन दिया जाता है कि ये बड़े रूखे सूखे से हैं, इनको ना तमीज़ नहीं है, बस सलाम किया और निकल गए, अपने कमरों में जाकर बैठे रहते हैं, ना बाहर निकलते हैं, ना किसी से बातचीत करते हैं, अगर इनसे बातचीत करनी में तो इनके इंटरनेट बंद करो, तो फिर जाकर जो ना ये कमरों में से बाहर निकल कर आएंगे।
0: अब देखें, ये इंटरनेट की बात तो आपने अलग की ना, ये अलग टॉपिक है, बिल्कुल
1: अलग टॉपिक है।
0: वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि खामोश खामोश हैं या हर किसी से घुलते मिलते नहीं है, तो मेरी नजर में उसकी वजह ये है कि ये इनकी बाउंड्रीज है, क्योंकि वही बात हमने जैसे डिस्कस किया कि ये अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, तो उसमें सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं आता, उससे भी पहले जो है वो आती है बाउंड्रीज, उन बाउंड्रीज की वजह से, यस, और उन बाउंड्रीज की वजह से हर किसी से घुलते मिलते नहीं है, सिलेक्टिव लोग होते हैं। और जैसा आपने पहले कहा ना कि आपकी नजर में मैं समझा लेती हूँ, उसकी मैंने ये ऑब्जर्वेशन की कि पेरेंट्स जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की बहुत कम करते हैं।
1: Listening power चाहिए, you need ears.
0: Exactly. जब बच्चे को फील होगा ना कि भाई सामने वाला बंदा नहीं सुनाई जा रहा, मेरी सुन रहे हैं भाई, मेरी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी भी समझेंगे, रेसिप्रोकेट करते हैं फीलिंग।
1: सही सही सही सही। अच्छा भाई, ये बताएं कि क्या आज की जनरेशन एक्चुअली ज्यादा एम्बिशियस है, या एम्बिशन के ना इनके डिफरेंट तरीके निकल कर आ रहे हैं, किसी और ही तरीके से एक्सप्रेस करते हैं ये चीजों को? अक्सर औकात तो इनके एम्बिशियस इतने एम्बिशियस होते हैं और एम्बिशन इतने अलग होते हैं कि पेरेंट्स को तो समझ में नहीं आ रहा होता।
0: बात यह है कि एम्बिशंस अलग भी हो सकते हैं और उनका जो है मैनिफेस्टेशन भी अलग हो सकती है, लेकिन गलत नहीं होते ना एम्बिशन, एम्बिशन तो एम्बिशन होते हैं, उनमें गलत सही की बात अलग है। तो जो पेरेंट्स समझते हैं कि भाई ये अलग है एम्बिशन, तो बेशक अलग है लेकिन गलत तो नहीं है। तो ये बात है कि उसकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है, जैसे अगर कोई भी एम्बिशन है किसी का भी, तो वो हमारी तरह या हमसे पिछली जनरेशन की तरह बस वो या तो साइड में कहीं हॉबी में रह गया, हाँ, या वो भी नहीं, हाँ, क्योंकि भाई क्या करें, अब तो बड़े हो गए, अब तो एडल्ट हो गए, अब तो जिम्मेदारियां आ गई, तो उनको पूरा करने में एम्बिशन गया कहीं कोने में, या कभी भूल भी जाते हैं लोग, इतना आगे बढ़ जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों में और अपनी इस सक्सेस की डेफिनेशन में। इन लोग की सक्सेस की डेफिनेशन शुरू ही एम्बिशन से होती है।
1: सही। अच्छा, ये इस चीज पे आप अग्री करती हैं? मैंने आजकल की जनरेशन में ये टॉक बहुत इन देखी है कि ये कहते हैं कि सक्सेस के लिए ना कोई एज नहीं होती। हमारी जनरेशन में एक प्रॉब्लम ये था कि देयर वाज अ लिमिटेड एज, ये कहते हैं नहीं, हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर, ये एक्चुअली उस चीज को लिव करते हैं। क्या आपने ये चीज नोटिस की है?
0: मैंने बिल्कुल नोटिस किया। असल में बात यह है कि ये इस चीज से बहुत, क्या कहते हैं, दे पुट अप अ फाइट फॉर इट, ये लड़ते हैं, लड़ जाते हैं इस बात पे कि जी आपकी जिंदगी में ना हर चीज को, हर लेवल को, हर मंजिल को पहुंचने के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए होता था कि भाई हर चीज डिफाइंड है, इस एज से इस एज तक बस यहाँ पढ़ ले, इस एज से इस एज तक यहाँ पढ़ ले, इस एज में ग्रेजुएशन कर ले, इस एज में जॉब कर ले, लड़कियों के लिए इस एज में शादी कर ले, लेकिन इनके लिए नहीं है, इनको भी हमें एज वेज ना बताओ, हमें पता है जब
1: हमें करना है,
0: जब सही होगा हम करना है करना है, अभी करना है बाद में करना, हम कर लेंगे, एज ना लगाओ, उस पे लिमिट ना लगाई जाए।
1: सही। अच्छा, ये चीज आपको सही लगती है या नहीं लगती? मुझे सही लगती है, पता नहीं अब लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, लेकिन आपको क्या लगता है, ये चीज सही है कि नहीं?
0: नहीं लगती,
1: आपको सही नहीं लगती?
0: नहीं लगती, मतलब कि मैं वजाहत करना चाहूंगी कि मुझे जो ये स्पेसिफिक एज डिसाइड की हुई है ना कि इस एज तक ये हो जाना चाहिए, इस एज तक ये हो जाना चाहिए, ये चीज मुझे सही नहीं लगती।
1: हाँ, ये चीज तो मुझे भी सही नहीं लगती। हाँ। मैं दूसरे उससे जेंजीज के बारे में बात कर रही हूँ कि वो कहते हैं ना किसी, डोंट काउंट थिंग्स इन नंबर्स, नंबर्स बैंक अकाउंट में ही अच्छे लगते हैं। नहीं अच्छे लगते
0: हैं। मैं अग्री बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से, क्योंकि देखें अब इसमें हमारा ये एस्पेक्ट भी तो आ जाता है ना, देर ये कदर भी कुछ होती है, हर चीज का वक्त इंसान तो नहीं तय करते,
1: सही
0: यूनिवर्स में कदर में ये सब चीजें आती हैं, जिसका सही वक्त होता होता है। इसकी असल बात ये कि इनका जो डिस्प्यूट है हमारे साथ जो, वो इसी बात पे है कि भाई आपको किसने दिया है ये इख्तियार कि आप लगा दे भाई 25 साल की उम्र तक ये करो, 30 साल की उम्र तक ये हो जाना चाहिए, 40 में ये हो जाना चाहिए, वो नहीं है हम कोई लगाने वाले, तो वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और हमारी पिछली
1: जनरेशन
0: नहीं करती।
1: सही सही सही। अच्छा चले आपकी तरफ आते हैं, जनरेशन के बारे में तो मैं बात कर ली, आप खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, लेकिन टीचिंग को आपने अपना पैशन के तौर पे परस्यू किया है, क्या आपकी जर्नी ये प्रूव करती है कि भाई डिग्री और करियर का रास्ता हमेशा एक ही होना जरूरी नहीं होता? ये बताएं कि ये कैसे हुआ, ये क्या था?
0: ये काफी लंबी तवील कहानी है, आपको मुख्तसर करती हूँ। वो ये है कि मेरे असल में फादर जो हैं वो इंजीनियर हैं,
1: सही,
0: और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो उनको जो मैंने बचपन से देखा है बीइंग द एल्डर डॉटर, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था, और फिर उनके साथ भी मेरा थोड़ा लगना हुआ जब उन्होंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने उनको बहुत जो है ना इंकरेज किया, तो इस वजह से हम चले गए इस करियर में,
1: सही,
0: हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग। अब जब पढ़ने गए इंजीनियरिंग तो वहाँ मेरे अपने कुछ प्रोफेसर ने मुझसे बात कही थी कि तुम जो है ना टीचिंग में जो है ना
1: कम्युनिकेशन अच्छा है बच्ची का,
0: यस बिकॉज यू वुड बी अ गुड टीचर, ये मेरे अपने प्रोफेसर ने कहा।
1: उस्ताद कैसे होते हैं, कैसे बच्चे को परख लेते हैं, ओए होए।
0: एग्जैक्टली, तो अब उन्होंने जब मुझसे कहा तब मुझे तो नहीं भाई, मुझे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है वगैरह, फिर वही बात है भाई आप प्लान बनाते हैं लेकिन
1: जिंदगी के अपने
0: बदलते हैं। एग्जैक्टली, तो प्लान तो था भाई PhD करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाना है, लेकिन आपका प्लान अलग होता है, होता कुछ और है, तो यही हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद जो है वो काफी अरसा मैं कशमकश में रही कि क्या करूं, मास्टर्स के लिए जाया जाए
1: या फिर
0: जॉब की जाए, क्या किया जाए वगैरह वगैरह, और कुछ अरसे ऑब्जर्वेशन करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि फैक्ट इज कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करना, और फिर मेरे अंदर वो असल में मेरी जो कहते हैं ना मेरी जो जनरेशन है वो बेचारी किसी जनरेशन में नहीं आती, वो बिल्कुल 90s के एंड के और 2000 के शुरू के किसी कहीं कहीं के नहीं बेचारे, मिक्स प्लेट है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि उस वक्त आके मुझे एहसास हुआ कि नहीं मुझे जो है वो अपना टाइम अपनी मर्जी से चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए जॉब का, तो उसकी वजह से। और फिर टीचिंग में मैं पैशनेट थी क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो तब भी मैं ट्यूशन पढ़ाती थी।
1: ओके गुड।
0: तो ट्यूशन में काफी अर्से से पढ़ाती हूँ, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब वहाँ भी पढ़ाती थी इंटर की बच्चियों को वगैरह।
1: और यकीन जाने इट इज अ टास्क विच नॉट एवरीबॉडी कैन परस्यू, और किसी किसी को सूट करता है। मजे की बात ये कि आपका तो मैंने खुद देखा हुआ है कि भाई आपके तो माशाल्लाह से बच्चों की ग्रेडिंग भी इतनी, एक होता है ग्रेडिंग के पीछे भागना, अरीज का मसला कुछ और है, अरीज ग्रेडिंग के पीछे नहीं भागती, अरीज बच्चे की समझ के पीछे भाग रही होती है कि बच्चे को समझ में आ जाए।
0: मैं आपकी ऑब्जर्वेशन पे हैरान हूँ, ये बिल्कुल आप जो है ना बजा फरमाया, ऐसा है कि
1: एक उस्ताद वो होता है एक उस्ताद वो होता है जो कहता है अच्छा मैं 18-10 बच्चों को पढ़ा लूंगा, जेब में मेरी माल आ जाएगा, मैं रखूंगा और ये जा वो जा, मुझे क्या जिस बच्चे ने किया किया नहीं किया नहीं किया। अरीज क्या करेंगी, हर बच्चे को अपना ही एक टाइम देती हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं, डबल ट्रिपल ट्रिपल मेहनत, ओवर वर्क करती हैं खुद, और कहती हैं बस किसी तरह से बच्चे को समझ में आ जाए, बस किसी तरह से। और मुझे इस बात के पर आपकी बहुत इट्स अ वेरी रेयर थिंग, क्योंकि आज के ज़माने में ना एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया गया है, वो ये जो आप चीज़ करती हैं ना ये मैंने कहीं अल्कीमियाई के दौर के जो मैं वर्गे खोलती हूँ तो पढ़ती हूँ कि उस्ताद उस जमाने में ऐसे हुआ करते थे, तो वो चीज़ मुझे आपके अंदर नज़र आती है।
0: देखिए इसका रीज़न ये है कि मेरी जो अपनी एजुकेशन रही है ना उसमें हर दौर में कहते ना हायर एजुकेशन हो गई आपकी फिर आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, तो हर टाइम में एक कोई ना कोई एक टीचर ऐसे रहे हैं मेरे।
1: सही, इसे कहते हैं जौहरी को हीरे की पहचान होती है। अच्छा भाई, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आप इतना क्लोजली बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, कल का दौर ये है कि भाई आप खाना भी ऑर्डर करोगे ना, टेबल पर आया है आपकी खाना, हम तो ये थे, हमें हमारा एक दिमाग था कि भाई अपनी नेमतों को आप डाउन टू अर्थ रहो और अपनी नेमतों को आप छुपा के रखो ताकि किसी की नजर ना लगे, किसी के पास हो नहीं हो हमें नहीं पता ना, तो हम लोग कुछ और दिमाग से रेज थे। इस जनरेशन का मसला ये कि ये खाने बाद में जाएंगे, रिपोर्ट पहले डालेंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई हम फलानी जगह जा रहे हैं फलाना खाना खाने।
0: भाई ये तो खुशी शेयर हो रही है ना, लेकिन बात यह है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मेरी नजर में ये जो सोशल मीडिया में कंपैरिजन है ना, ये बिल्कुल है, और इसकी वजह से एक नया किस्म का खौफ है जो शायद हम लोगों को नहीं था। मैं ही नहीं कहूंगी कि हमारी जनरेशन में कंपैरिजन नहीं था, बिल्कुल था, बस फर्क ये था कि हमारा कंपैरिजन जो है वो हमारे खानदान के लोगों तक महदूद था, या शायद कि हमारे कुछ दोस्तों में, लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया में भाई जिसका सोशल मीडिया अकाउंट है उससे आपका कंपैरिजन है,
1: सब शाहरुख खान बनने के चक्कर में
0: है, ऐसा है। लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, और वो ये कि सोशल मीडिया की वजह से मैंने ऑब्जर्व किया है कि आजकल की जनरेशन में बहुत ज्यादा जो उस साइड पर है इंटरनेट की, क्योंकि इंटरनेट की बहुत सारी साइड
1: सही, सही, सही, सही,
0: तो जो उस साइड पर है उनमें सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, वो इससे ओवरकम भी कर रहे हैं, आ रही है मतलब इट्स नॉट ऑल बैड।
1: सही। अच्छा अरीज, अब हमारे पास टाइम भी बहुत कम रह गया है, जाने का टाइम भी हो गया है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी अगर आपको अपनी यंगर सेल्फ को या ये जो जनरेशन है इसको कोई करियर के बारे में एडवाइस देनी हो या लाइफ के बारे में कोई एडवाइस देनी हो आज के हालात के मुताबिक, तो भाई क्या एडवाइस देंगी?
0: सबसे पहली बात जो मैंने तजुर्बे से सीखी है कि कितने नंबर आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कौन सा डिवीजन आया इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपके पास स्किल है या नहीं। अगर आपके पास स्किल है नोबडी केयर कि आपके ग्रेड्स क्या थे, और अगर आप टॉपर हैं लेकिन आपको काम नहीं आता, क्योंकि दुनिया तो काम पे चलती है, प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया काम पे चलती है, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आपकी फर्स्ट डिवीजन और वो नंबर जिनके पीछे आप भाग रहे थे, इतना स्ट्रेस ले रहे थे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो करियर से रिलेटेड तो ये बात है, लाइफ से रिलेटेड सिर्फ ये बात है कि हैप्पीनेस एंड सेल्फ कंटेंटमेंट, ये जो दो चीजें हैं ना,
1: सही,
0: ये बहुत अंदर का मामला है आपके खुद के,
1: ये खुद का,
0: बाहर से नहीं मिलती,
1: ये आपको खुद को
0: अंदर से कल्टीवेट करनी पड़ती है, अपने अंदर बनानी पड़ती है। तो फिर उसके ये अगर आपके नजरिया हो स्पेशली इनर पीस को लेकर, तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ सही होता है।
1: तो भाई आज की कन्वर्सेशन ने हमें एक बात तो बहुत इम्पोर्टेंट समझा दी है कि सक्सेस की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती, हर जनरेशन अपने वक्त अपने एक्सपीरियंसेस अपने चैलेंजेस और प्रायोरिटीज के मुताबिक ही सक्सेस को डिफाइन करती है, कभी एक स्टेबल जॉब और कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी थी, और आज पैशन फ्लेक्सिबिलिटी वो जो इनर पीस की बात हम कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप पर्सनल फ्रीडम और वर्क लाइफ बैलेंस भी उतने ही इम्पोर्टेंस रखती है जितनी किसी जमाने में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी रखती थी। लेकिन शायद शायद असल सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि हम कितना कुछ अचीव कर लेते हैं, बल्कि ये भी है कि जो कुछ हम अचीव कर रहे हैं क्या उस जर्नी में हम खुद को कहीं खो तो नहीं रहे। जैसा कि अरीज ने कहा कि भाई इनर पीस तभी आती है जब आप अपने आप से जुड़े रहते हो। तो भाई अरीज ने बर्नआउट के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस शेयर की वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। हो सकता है कि एक जनरेशन के लिए बर्नआउट का मतलब लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो, जबकि दूसरी जनरेशन के लिए कंट्रास्ट ऐसा हो कि भाई प्रेशर एक्सपेक्टेशंस कंपैरिजन ऑलवेज बी प्रोडक्टिव रहने की वो फीलिंग जो होती है ना, और वो जो दिमागी काम होता है वो भी बर्नआउट में आ सकता है। तो शायद जनरेशंस के दरमियान डिफरेंस को समझने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेट करें, पूछें कौन सही है कौन गलत है, ये नहीं पूछें, बल्कि ये पूछें कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर क्या सीख सकते हैं। परीज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर शो जिसका नाम है जनरेशन टॉक, हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने पर्सपेक्टिव्स हमारे साथ शेयर किए। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू.
0: सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
1: तो भाई साथियों, आप भी जरा सोचिए, जितने तमाम सामीन ने हमें सुना है, आप भी जरा सोचिए, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? पैसा, पोजीशन, पैशन, फ्रीडम या सुकून?

0: इसी नोट के साथ भाई मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे जनरेशन टॉक ऑन FM 107। अपनी राय हमें जरूर बताइएगा 666-221-07 पर, और चाहें तो हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है @FM107 Qatar। अगली मुलाकात तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दूसरी जेनरेशंस को समझने की कोशिश कीजिए, और याद रखिए सक्सेस की रेस में सबसे जरूरी बात यह है कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अपने आप से दूर ना हो। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। थैंक यू अरीज, थैंक यू सो मच। अब मैं वापस से उस कॉलर को कॉल करूं जिसने जिसकी रिकॉर्डिंग
1: बिचारी
0: की
1: रिकॉर्डिंग हो गई। चले भाई।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।
0: हेलो,
4: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट।
0: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा, डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें, छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
6: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
7: आप सुन रहे हैं FM 107।
8: FM 107।
9: दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 presents Tech Update.
2: Assalamualaikum, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए, मैं हर बार आपको वेबसाइट टूल्स के बारे में बताते रहता हूँ और इस वजह से मेरी भी जानकारी बढ़ती रहती है, नॉलेज में इजाफा होता रहता है, वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप भी कुछ अगर ढूंढते हैं, कुछ इत्तफाकन आपके सामने आ जाता है तो क्यों ना आप मुझे बता दें, मैं भी इस मामले में मदद चाहूंगा। मेरे लिए भी फायदा है, आपके लिए फायदा है। बट एनीवे, लेट्स कंटिन्यू विद द अपडेट। सो तीन वेबसाइट्स मैं आपको आज देने वाला हूँ, तीनों बेहद बेहद बेहद काम की हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर वन ऑन द लिस्ट, इस वेबसाइट का नाम है poe.com, poe.com poe.com। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने मौजूद होंगे 400 AI टूल्स, 400 एंड कमाल की बात यह है कि इस पे बहुत सारे AI टूल्स ऐसे जिनके बारे में ना मुझे पता था और आई एम प्रीटी श्योर बाकी जनता को भी नहीं पता होगा, और वो वाले टूल्स ऐसे हैं जो बाकी बड़े बड़े AI टूल्स जो पैसे मांगते हैं उनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, और या तो सस्ते हैं या बिल्कुल फ्री हैं। ये आपके काम आएगी वेबसाइट, सच्ची बता रहा हूँ। अगर आप बैठे हैं सोच रहे हैं कौन सा टूल किस AI पे जाऊं, इसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्या करूं, तो यहाँ पे आप जाइए। एवरी टूल हैज अ डिस्क्रिप्शन और हर टूल के बारे में आपको पता भी लगेगा एंड यू कैन चूज आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। सो poe.com, इस पे जाइएगा, मामला हो जाएगा आसान। बढ़ते हैं आगे। अगली वेबसाइट का नाम है perchance.org, PER, पर chance, CHANCE, perchance.org। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ये बड़ी कमाल की वेबसाइट है, ये आपको काफी कुछ देगी, जैसे कि आपको मदद करेगी इमेज क्रिएशन में, नंबर वन चीज, क्योंकि अनलिमिटेड इमेज क्रिएशन जब आपको मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कोई और वेबसाइट इतना अच्छे से दे पाएगी आपको। क्वालिटी 100% की जगह 98% अगर आपको चलती है, जो कि चलेगी आप ब्रिटिश हो, तो ये आपके लिए बेहद कमाल की वेबसाइट है और ये जनरेट भी थोड़ा जल्दी कर देती है। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए, आई थिंक इट विल सूट अ लॉट ऑफ पीपल जिनका काम रहता है इमेज जनरेशन का, तो आपकी बहुत काम आ सकती है। perchance.org, जरूर जरूर जरूर जरूर ट्राई करें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगली जो वेबसाइट है इसका नाम, इसका जो नाम है वो इसका काम है, बेसिकली नाम नोट कर लीजिएगा, promptcowboy.ai, prompt, PROMPT, बिना स्पेस ये, cowboy, COWBOY.ai, promptcowboy.ai। यहां पे आप जाइएगा, ये क्या करेगा, आपको प्रॉम्प्ट लिखने में मदद करेगा। आधी दुनिया को ऐसा लगता है कि प्रॉम्प्ट लिखना तो बेहद आसान है, इसमें क्या है, मैं लिख दूंगा रिमूव माय बियर्ड, नहीं ऐसा नहीं होता ना, तो क्योंकि यू हैव टू राइट इन अ सर्टेन वे। आपका प्रॉम्प्ट जितना प्रिसाइज होगा, जितना स्पेसिफिकली आप किसी चीज को बताएंगे, उतना आपका फायदा है। कई मरतबा दिमाग में होता बहुत कुछ है पर वो उतर नहीं पाता प्रॉम्प्ट्स में, बट ये जो वेबसाइट है ये आपकी मदद करेगी। फॉर एग्जांपल, इसको आपने कहा कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा कुछ सोच रहा हूं मैं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे मैं प्रॉम्प्ट में डालूं, तो ये आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे ऐसे आएगा और ये लॉजी प्रॉम्प्ट, तो आपको प्रॉम्प्ट भी बना के दे देगा, एन एडवांस्ड वर्जन देगा जो आपके बहुत काम आएगा। ब्यूटीफुली डन एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वेबसाइट। ओके, अब बढ़ते हैं जरा एक बहुत जरूरी खबर की तरफ। खबर जो है वो गेमिंग की दुनिया से है। अब रिलीज हुआ है जब से कंट्रोल रेजोनेंट, पब्लिक में हलचल मच चुकी है और इस गेम ने बहुत तो के सर घुमा दिए। एक्चुअली यार, कुछ लोग कह रहे हैं अरे ये लोग तो क्या बना दिया इन्होंने, ऐसा सोचा भी नहीं था, कुछ लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, पर मैक्सिमम लोग तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि और भी बहुत सारे गेम्स हम डेवलप कर रहे हैं साथ साथ, जो इंडी गेम्स भी हैं उन डेवलपर्स को भी हम चांस देंगे, जो एक दो लोग मिलके बना रहे हैं, सिंगल हैंडेडली लोग तैयार कर रहे हैं ब्यूटीफुली डन, तो उनको भी चांस दिया जाएगा। गेमिंग इंडस्ट्री की एक और बड़ी खबर है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था प्लेस्टेशन की तरफ से, वैसी एक्सबॉक्स की तरफ से है। एक्सबॉक्स ने जब से हिडेओ कोजिमा को, मतलब गेमिंग इंडस्ट्री के क्रिस्टोफर नोलन को हायर किया है, हलचल मची हुई है। उनका एक गेम ओडी, जो प्राइमरीली वन ऑफ द बिगेस्ट हॉरर फ्लिक्स माना जा रहा है, गेम माना जा रहा है, आने वाला है. उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ डेवलपमेंट में है. एक सरप्राइज जो लोग बता नहीं रहे, सरप्राइज करके टीज कर रहे हैं. लेट्स सी क्या ये सही टाइम है एक्सबॉक्स ले लेने का. खर्चा कराओगे. दीज वर द अपडेट्स. मिलते हैं अगली वाली में. दिल से देसी
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें ना सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं। हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें। अगर आपको क्रॉसिंग का वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और सेफली रोड क्रॉस करें। ट्रैफिक रूल्स का तायुन करना सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आप रोड पार कर रहे हो, अपने सफर को इंतहाई एहतियात और आराम के साथ पूरा करें। कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें और रोड पर हर वक्त एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, कभी ज़िंदगी में हालात हमारे मुताबिक नहीं होते। किसी काम का नतीजा मालूम नहीं, किसी सफ़र पर निकलना है, किसी नए मरहले का आगाज़ है, किसी जवाब का इंतज़ार है, दिल में सवाल होता है कि आगे क्या होगा। ऐसे में इंसान दो रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार कर सकता है। एक रास्ता है हर चीज़ से बुरा मतलब निकालना, सुबह ये हो गया, आज का दिन अच्छा नहीं होगा, रास्ते में ये चीज़ नज़र आ गई, शायद कोई मुसीबत आने वाली है। और दूसरा रास्ता है असबाब इख्तियार करना, अल्लाह पर भरोसा करना और दिल में खैर की उम्मीद रखना कि मेरा रब खैर पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही मुसबत रवैया पसंद था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी फाल पसंद थी और आप बदशगुनी को नापसंद फरमाते थे। अब यहाँ दो रवैये हमारे सामने हैं, अल्फअल हसन अच्छी फाल खैर की उम्मीद और अत्तियारा यानी बदशगुनी। एक दिल को अल्लाह की तरफ उम्मीद के साथ आगे बढ़ाता है और दूसरा इंसान को बेबुनियाद खौफ और वहम में कैद कर देता है। अब नेक फाल क्या है? नेक फाल का मतलब ये नहीं कि इंसान हर इत्तेफाक को मुस्तकबिल की यकीनी खबर समझने लगे। मसलन किसी काम के लिए निकलते हुए कोई अच्छा लफ्ज़ सुन लिया तो उसे अच्छा लगा, दिल में उम्मीद पैदा हुई, अल्लाह से खैर की तवक्को बढ़ी, ये अच्छी फाल है। लेकिन वो ये अकीदा नहीं बनाता कि ये लफ्ज़ सुन लिया है अब लाजमन यही होगा। बात ऐसी नहीं, मुस्तकबिल तो अल्लाह के हाथ में है। कोई लफ्ज़ मुस्तकबिल नहीं बनाता, कोई नाम तकदीर नहीं बदलता, कोई इत्तेफाक गैब की यकीनी खबर नहीं देता। अच्छी फाल सिर्फ दिल में खैर की उम्मीद पैदा करती है और दिल को अल्लाह से जोड़ती है। अब बदशगुनी क्या करती है? बदशगुनी उसके बरक्स है। इंसान ऐसी चीज़ों से नताइज निकालने लगता है जिन्हें अल्लाह ने नताइज का सबब ही नहीं बनाया। कोई ख़ास परिंदा देखा तो कहने लगा कुछ बुरा होगा, किसी ख़ास आवाज़ को सुना तो कहने लगा कि सफ़र ठीक नहीं होगा, किसी ख़ास दिन को मनहूस समझ लिया, किसी आदत को बदकिस्मती से जोड़ दिया, किसी शख्स के आने को नुकसान की अलामत समझ दिया। फिर उन्हीं वहमों की बुनियाद पर इंसान अपने फैसले बदलने लगता है। असबाब इख्तियार करें, दिल अल्लाह से जोड़ें और नतीजा उसी के हवाले कर दें। अजीज सामिन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लफ्ज़ पसंद था

0: क्योंकि कभी एक खूबसूरत लफ्ज थके हुए दिल में उम्मीद पैदा कर देता है। और आजकल बच्चों की तरबियत में भी इस सुन्नत की बड़ी जरूरत है कि अगर बच्चा हर छोटी चीज के बारे में सुनता रहे कि मनहूस है, ऐसा हुआ तो बुरा होगा, उस दिन ये काम नहीं करना, उस चीज से बदकिस्मती आती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन वहमों का शिकार हो सकता है। उसे इसके बजाय सिखाइए कि खैर व शर अल्लाह के हाथ में है, दुआ करो, एहतियात करो, सही असबाब इख्तियार करो। मोमिन वहम के साए में नहीं जीता, वो तवक्कुल के साए में जीता है। इसी तरह नाकामी को बदशगुनी न बनाइए, कभी एक बुरा तजुर्बा भी इंसान की पूरी सोच बदल देता है। एक कारोबार नाकाम हुआ तो कहने लगे कि कारोबार मेरे लिए नहीं, एक इम्तिहान में नाकामी हुई तो कहते कि मेरी किस्मत ही खराब है, एक रिश्ता कामयाब न हुआ तो ये कह बैठे कि मेरे नसीब में खुशी नहीं। याद रखिए कि एक वाकया है, ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं। मोमिन मुश्किल को देखता है मगर मुश्किल से अपनी पूरी तकदीर का फैसला नहीं करता। अल्लाह ताला हमें वो अहम बदशगुनी और बेबुनियाद खौफ से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपर व सुन्नत के आज के इस हल्के से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कल हमने कतरी चावल के खानों का तारुफ हासिल किया था। आज हम एक ऐसे खाने की कहानी जानेंगे जो कतर के घरों, शादियों और जश्नों में खास मकाम रखता है। मजबूज, जिसे मजबूज भी कहा जाता है, चावल और गोश्त मुर्गी या मछली से तैयार किया जाने वाला खुशबूदार खाना है। कतर की वजारत सकाफत के मुताबिक ये रोजमर्रा के खानों के साथ साथ छुट्टियों, खास मौके और शादियों में भी तैयार किया जाता है। इस डिश की जान इसका मसाला है। हल्दी, इलायची, दालचीनी, जीरा और लौंग जैसे मसाले चावल और गोश्त में धीरे धीरे अपना जायका उतारते हैं। सबसे खास जो होता है वो इसका सूखा हुआ काला नींबू है, कि हल्का खट्टा और पूर खुशबू जायका पेश करता है, जिसे गर्ल्स के खानों की खास अलामत समझा जाता है। मजबूज बनाने में सब्र की जरूरत होती है। गोश्त को पहले मसालों और शोरबे के साथ पकाया जाता है ताकि वो नरम हो जाए। फिर चावल इसी खुशबूदार शोरबे में पकते हैं। इस तरह चावल का हर दाना गोश्त, मसालों और लूव में यानी खट्टे नींबू का जायका अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इस डिश की खूबसूरती है कि इसके कई अंदाज हैं। किसी घर में लैम्प मजबूस मशहूर होता है, किसी के घर में चिकन, जबकि कतर के साहिली आबादियों में मछली वाला मजबूस भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। कुछ मशहूर किस्मों में अलबदवी, अलखबसा, अलबैदा यानी वाइट खबसा भी शामिल है। मजबूस सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि मिल बैठने का एक तरीका भी है। अक्सर इसे एक बड़ी थाली में पेश किया जाता है और दस्तरखान के दरमियान में रख दिया जाता है। घर वाले या मेहमान इसके गिर्द बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं और वक्त साथ गुजारते हैं। कतरी कल्चर में मेहमान के लिए ज्यादा खाना तैयार करना इज्जत और करम की निशानी समझा जाता है, इसलिए मजबूस को फरागी से पेश किया जाता है। बड़ी थाली सिर्फ ज्यादा खाने की अलामत नहीं होती बल्कि ये पैगाम देती है कि जगह और मोहब्बत सबके लिए है। कहा जाता है कि इस खाने की कहानी कतर की समंदरी और तिजारती तारीख से भी जुड़ी हुई है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मसाले तिजारत के जरिए इस इलाके तक पहुंचे। यहाँ के लोगों ने इन मसालों को अपने मकामी गोश्त, मछली और चावल के साथ मिलाकर एक ऐसा जायका पैदा किया जो वक्त के साथ कतरी पहचान का हिस्सा बन गया। हर घर का मजबूस थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। किसी के घर में लोमी की खटास ज्यादा होती है, कोई जाफरान की खुशबू को नुमाया करता है और कोई गरम मसालों को हल्का रखता है। ये फर्क इस बात का सबूत है कि रिवायती खाना जिंदा रहता है क्योंकि लोग उसे अपनी पसंद और अपनी यादों के साथ आगे लेकर चलते हैं। आज भी मजबूस कतर में रेस्टोरेंट्स, घरों और कल्चरल इवेंट्स में नजर आता है। नई नस्ल इसे बनाना भी सीख रही है और नए अंदाज में पेश भी कर रही है, लेकिन इसकी बुनियादी रूह यानी साझा करना और मेहमान का एहतराम करना बदलती नहीं। तो अगली बार जब आप मजबूस देखें तो सिर्फ रंग बिरंगे चावल और नरम गोश्त ना देखें, इसमें कतर के बाजारों की मसालों वाली खुशबू, समंदर से मिला रिश्ता, घर के बुजुर्गों की महारत और मेहमान के लिए दिल की वसत भी शामिल करें। आज के कल्चर मोमेंट का खुलासा ये है कि मजबूस कतर का एक पसंदीदा खाना ही नहीं बल्कि एक ऐसी रिवायत है जो खानों को रिश्तों, यादों और मेहमान नवाजी से जोड़ देती है। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी मैटर्स.
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. आज हम बात करेंगे कि रेगुलर जो हेल्थ चेक के बारे में, कि ये जुमला हम अक्सर सुनते हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है और मैं जो है वो चेकअप क्यों करवाऊँ. ये बात समझना ज़रूरी है कि बाज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू में वाज़े जो अलामतें हैं वो नहीं देते और सिम्टम्स भी नहीं होते, इसलिए बाज़ अफराद के लिए अप्रोप्रियट स्क्रीनिंग और जो रूटीन हेल्थ चेक्स हैं वो अहम हो सकते हैं. अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो हेल्थ चेकअप है उसका मतलब क्या है. ये नहीं है कि जो ब्लड टेस्ट हैं तो वो सिर्फ वही हेल्थ चेकअप है. इसमें डॉक्टर आपकी लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री और जो हेल्थ हिस्ट्री है और रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात हो सकती है और ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं. मसलन आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका वेट क्या है, ओवरऑल हेल्थ कैसी है. कुछ अफराद में कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल नहीं होते, और इसी तरह जो वैक्सीनेशन स्टेटस है वो क्या है. आंखों और दांतों की हेल्थ भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो क्या है. और उम्र क्या है आपकी, आपकी जो जिन्स है, मेल है फीमेल है, क्या है. इंडिविजुअल रिस्क के मुताबिक जो दूसरी रिकमेंडेड स्क्रीनिंग है वो क्या है. ये तमाम हर फर्द का अलग अलग हो सकता है और होता है, इसलिए जो हेल्थ चेकअप है हर शख्स के लिए एक जैसा नहीं है. ये बात बहुत अहम है कि एक शख्स के लिए एक टेस्ट बनाया जाता है. ये बात बहुत अहम है कि हर शख्स के लिए जो टेस्ट बताया जाता है या जब बताया जाता है तो वो करवा लिया भी जाता है. ज़रूरी नहीं कि वही टेस्ट जो है वो किसी और के लिए हो. हेल्थ केयर के मुताबिक जो इंडिविजुअल रिस्क है और फैमिली हिस्ट्री है उसका फैसला उम्र, आपके जो मेल हैं फीमेल हैं उसकी स्क्रीनिंग के साथ साथ करना बेहतर है. इसी तरह में फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपके ख़ानदान में डायबिटीज़ आम है या फिर हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या दिल के कोई अमराज हैं या फिर कुछ मखसूस खुदा नहास्ता जो कैंसर से वो मौजूद हैं. अपनी फैमिली जो हेल्थ हिस्ट्री है जानना डॉक्टर के लिए यूज़फुल जो इंफॉर्मेशन हैं वो हो सकती हैं और आपको बिल्कुल सही तौर पर उन्हें बताना है. अगर आपको मालूम नहीं तो फिर आप अपने घर से पूछकर जो फैमिली हिस्ट्री है बेसिक उसे लिख लीजिए और वो डॉक्टर के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है. अब ये कि वैक्सीनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपनी वैक्सीनेशन हिस्ट्री भी चेक कीजिए. बच्चों के लिए वैक्सीन का जो स्केड्यूल है बहुत अहम है, लेकिन एडल्ट्स को भी बाज़ हालात में वैक्सीनेशन की ज़रूरत हो सकती है. और अगर आप ट्रैवल करते हैं तो हेल्थ केयर सेटिंग में काम करते हैं या कोई मखसूस हेल्थ कंडीशंस हैं तो आपको फिर जो वैक्सीन है उसकी ज़रूरत जो है मुख्तलिफ हो सकती है. इसी तरह डेंटल और जो आई हेल्थ है वो भी बहुत अहम है. अगर आपको दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट के पास क्या आप जाते हैं. क्या आपकी नज़र जो है ख़राब है तो क्या आप अपना जो आई एग्जामिनेशन है वो करवाते हैं. इसी तरह से अपनी उम्र और ज़रूरत के मुताबिक प्रोफेशनल एडवाइस जो है वो हमें ज़रूर लेनी है. और अगर आप जो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप मेडिसिन जो है वो रिव्यू ज़रूर करवाइए और चेक रखिए कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं या नहीं. और अपनी तरफ से ही अपनी जो मेडिसिन है उसे बंद ना कीजिए और ना ही उसकी जो डोज है वो चेंज कीजिए. और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो महसूस हो तो फिर आप डॉक्टर से बात कीजिए. एक और अच्छी जो हैबिट है वो ये है कि अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स को सिर्फ फाइल में रख कर ना भूलिए और अगर कोई टेस्ट एबनॉर्मल आया है तो आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, पूछिए कि उसका मतलब क्या है, क्या मुझे दोबारा टेस्ट की ज़रूरत है, क्या हम लाइफस्टाइल में कोई चेंज जो है वो हमें करनी है. ये सवाल पूछना आपका हक है. ये काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ ये कह लें कि आई फील फाइन. सेहत में महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन बस हेल्थ कंडीशन शुरू में खामोश रह सकती हैं. इसलिए आप एक डायरी बना लीजिए और उसमें लिखिए कि मेरा आखिरी जो हेल्थ चेक कब हुआ, ब्लड प्रेशर आखिरी बार कब चेक हुआ, कोई वैक्सीनेशन ड्यू है या नहीं. और इसी तरह से अगर किसी का जो सवाल का जवाब मालूम नहीं है तो भी आप पैनिक ना कीजिए, क्योंकि अपनी सेहत के बारे में जानना भी अपनी सेहत का ख्याल रखने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है. और यही है योर हेल्थ मैटर्स। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीने कराम, आज की दुआ अहले ईमान की वो पुर असर दुआ है जो उन्होंने अपने घरों को सुकून, अपने औलाद को नेकी और अपनी जात को परहेजगारी में नमूना बनाने के लिए मांगी। दुआ यूं है, रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। हब लना मिन अज़्वाजिना, यानी ऐसी बीवियां जो सुकून कल्ब की बायस हों और औलाद जो आंखों की ठंडक हो। हब लना, हमें अता फरमा, यानी ये तेरी खास बख्शिश है। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, हमें परहेजगारों का रहनुमा बना, यानी हम खुद भी मुत्तकी हों और दूसरों को भी नेकी की राह दिखाने वाले हों। सामीन, इस दुआ के कई सबक हैं। पहली बात तो यह है कि घर ही असल सुकून की जगह है। नेक बीवी और साले औलाद इंसान की आंखों की ठंडक और दिल की राहत हैं। इसी तरह इस दुआ में इस बात की तरफ भी इशारा है कि दीनी क़ियादत की तलब जायज़ है, लेकिन यह तलब शोहरत या दुनिया के लिए नहीं बल्कि तकवा और दीनदारी के लिए होनी चाहिए। और इस तरह असल कामयाबी घरेलू सुकून और दीनी सरबुलंदी का इम्तिजाज है। एक मोमिन चाहता है कि घर का माहौल भी नेक हो और उम्मत के लिए वो एक रहनुमा भी बने। कई लोग तो उसके बरक्स नजर आते हैं, वो अपने आप को दूसरों का पेशवा ठहराते हैं लेकिन उनका घर का माहौल बहुत बुरा होता है। तो इस दुआ के अहतमाम की बेहद जरूरत है। ये दुआ हर मोमिन के घराने के लिए लाजिम है ताकि खानदान नेकी और तकवा पर इस्तवार रहे। आइए हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ें। रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
3: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें। छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से।
4: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद RJ फजील, संडे टू थर्सडे 6 PM to 7 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: दोस्तों, गाड़ी की रूफटॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिक प्लेसेस में पेट्स के लिए कुछ लॉज रखे हैं, जैसे डॉग्स को अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है और परमिटेड एरियाज में भी लीश्ड होना जरूरी है। इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें, क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रिसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है।